एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी भदरवा से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ महीने की 12 तारीख व मुताबिक 2 जून 2026 ईस्वी। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 7:56 और 32 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की मजलिस का आगाज होता है।

यह है आकाशवाणी का भदरवा स्टेशन 101 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में यानी 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर उर्दू खबरनामा आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रिले का इंतजार कीजिए।

0: हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
4: Both sides underscored the
5: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
3: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों

0: तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2-3 branches also।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पंवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउंग क्लाइंग सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। इंडिया एंड यूएस हैव फाइनलाइज्ड मोस्ट एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, सेज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। उत्तराखंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन्ड टू टूरिस्ट्स। 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in men's under 18 Asia Cup. Myanmar President Ooh Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defense, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said, Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
9: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
8: The Foreign Secretary said that both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, health, education, energy, and critical technologies like artificial intelligence. The Myanmarese leader, accompanied by a high-level delegation, will travel to Mumbai today for business and industry interactions and site visits. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said, India and the United States have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement, and negotiations are now focused on a few minor issues, commerce and full stops. We have a report.
10: Commerce Minister Piyush Goyal said that the team from United States is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement BTA. The talks will take place in New Delhi from today and it will last till Thursday. India's chief negotiator is Darpan Jain, additional secretary in the Department of Commerce, while the US team is led by its chief negotiator Brendan Lynch. On 3rd of February, both sides announced the framework for the first phase of the BTA. The two sides have proposed to finalize the details of the interim agreement and take forward the negotiations under the broader BTA on multiple areas such as market access, non-tariff measures, customs and trade facilitation and investment promotion. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
8: BJP National President Nitin Naveen held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi yesterday. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details, highlighting discussions on the Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with advancement taking place across every sector. Mr. Patra said, today, the Bharatiya Janata Party and the NDA have been given the opportunity to

0: एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। 2026 के एशियाई खेलों से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी के भदरवा स्टेशन से 101 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। समय 8:45 हो चुके हैं और आज है मंगलवार की सुबह, तो आइए सुनते हैं भक्ति मौसिकी। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये राम भजन।

समय ने ये थे अनूप जलोटा और उनके साथी। अभी आप समाप्त कर रहे थे भक्ति मौसिकी। हम आकाशवाणी भदरवा से बोल रहे हैं FM 101 MHz पर। समय न अपेश है रोजगार खबरनामा। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एक इतला के मुताबिक ख्वाहिशमंद मर्द व खवातीन उम्मीदवारों से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंटिस्ट बी, एटमॉस्फेरिक साइंस साइंटिस्ट बी, जनरल मेट्रोलॉजी और साइंटिस्ट बी इंस्ट्रूमेंटेशन की असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामियों की कुल तादाद 46 है, जिसमें साइंटिस्ट बी, एटमॉस्फेरिक साइंस की असामियों के लिए, जनरल और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 3-3 असामियां और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक असामी दरकार है। साइंटिस्ट बी जनरल मेट्रोलॉजी की असामियों के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 12 असामियां, EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 11 असामियां, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 5 असामियां, OBC और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक एक असामी दरकार है, जबकि साइंटिस्ट बी इंस्ट्रूमेंटेशन की असामियों के लिए जनरल और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 3-3 असामियां, OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 2 असामियां और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक असामी मखसूस रखी गई है। तालीमी काबिलियत में एटमॉस्फेरिक साइंस साइंटिस्ट बी की असामियों के लिए उम्मीदवार के पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी इन एटमॉस्फेरिक साइंस का होना लाजमी है। साइंटिस्ट बी मेट्रोलॉजी साइंस के असामियों के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री इन साइंस फिजिक्स मैथमेटिक्स का होना लाजमी है, जबकि साइंटिस्ट बी इंस्ट्रूमेंटेशन की असामियों के लिए उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी या बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग विद मेट्रोलॉजी का होना ज़रूरी है। उम्र की हद में जनरल और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 35 साल, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 40 साल, OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 38 साल, PWBD कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 45 साल और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए UPSC के जाब्ते के मुताबिक उम्र की हद में छूट रखी गई है। उम्मीदवार को दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करवानी होंगी। दरख्वास्त की फीस जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को ₹25 अदा करनी होगी, जबकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWBD और फीमेल उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्त की फीस माफ रखी गई है। दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 12 जून 2026 मुकर्रर है। मजीद जानकारी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट है http://upsc.nic.in। समईन वेबसाइट एक बार फिर से नोट कर लीजिए, http://upsc.nic.in। समईन ये था रोजगार खबरनामा। अपेश है हमारे अब से रात 10 बजे तक रिले व नशर किए जाने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से थोड़ी देर में यानी 9:15 पर भारतीय सेना शौर्य गीत कैलाश खैर और साथियों की आवाजों में हम आपको सुनवाएंगे। उसके फौरन बाद यानी 9:20 पर डोगरी में खबरें आकाशवाणी जम्मू से रिले की जाएंगी।

9:30 पर कश्मीरी मौसीकी आप समाप्त करेंगे हमारे स्टूडियो से। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विविध भारती सर्विस मुंबई से मुख्तलिफ प्रोग्राम रिले किए जाएंगे।

शाम 5 बजे भद्रवाही मौसिकी और 5:30 पर किसान वाणी प्रोग्राम आप समाप्त करेंगे हमारे स्टूडियो से।

शाम 6 बजे हिंदी में खबरें और 6:05 पर अंग्रेजी में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 6:10 पर प्रोग्राम हाइलाइट्स आपको एक बार फिर से बता दिए जाएंगे। शाम 6:15 पर डोगरी में समाचार और समीक्षा आकाशवाणी जम्मू से हम रिले करेंगे।

शाम 7:10 पर सरकार के कार्यकाल के 12 साल मुकम्मल होने पर एनएसडी की खसूसी सीरीज पर प्रोग्राम रिले किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से। 7:45 पर कश्मीरी में और उसके फौरन बाद उर्दू में खबरें और रात 8 बजे वादी की आवाज़ प्रोग्राम आकाशवाणी श्रीनगर से रिले किया जाएगा।

0: गद्दी मौसी की हम आपको सुनवाएंगे रात 8:30 पर, 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू खबरनामा आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। समय आज रात 9:30 पर आप समाप्त करेंगे उर्दू मुशायरा। ये था खुलासा हमारे आज रिले पर नशर किए जाने वाले प्रोग्रामों का। हम आकाशवाणी भदरवा से बोल रहे हैं FM 101 MHz पर। समय आइए अब सुनते हैं भारतीय सेना शौर्य गीत कैलाश खैर और साथियों की आवाजों में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर

अभी आप कैलाश खेर और साथियों की आवाज़ों में, कैलाश खेर की मौसिकी में कैलाश खेर का ही लिखा ये भारतीय सेना शौर्य गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी भदरवा से बोल रहे हैं, FM 101 MHz पर। समय 9:20 होने वाले हैं। अब हम आकाशवाणी जम्मू से डोगरी में खबरें रिले करेंगे, रिले का इंतज़ार कीजिए।

0: ए आकाशवाणी जम्मू ऐ बडलै खबरें च तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबरें कन्नै मैं अभिलाषा शर्मा। मरदमशुमारी 2027 तैहत आपू अपना ब्यौरा दर्ज कराने आले सेल्फ इन्यूमरेशन च जम्मू कश्मीर सब्भनें केंद्र शासित प्रदेशें चा अग्गे 6,67,000 लोकें अपनी जानकारी दर्ज कराई लैती ऐ। मुक्खमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें श्रीनगर दे सर्किट हाउस चर्च लेन च ठहरने आले बहादुरियाश ब्लाक दा उद्घाटन कीता। ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा होरें आखेआ जे चुनौतियें दे बावजूद सरकार सैलसफा दे खेतर च नमें मौके उपलब्ध करा'रदी ऐ। रजौरी जिले च छप्पे दे आतंकवादियें दा पता लाने लेई आपरेशन शेरुवली अजें बी जारी। फौज दे टाप कमांडरें कब्जा रेखा कन्नै लगदे अगेत्रे इलाकें दा दौरा लाइयै हालात दा जायजा लैता ते सरकार नै जम्मू कश्मीर च ओला गी दित्ते गेदे मोटर गड्डियें दे एग्रीगेटर लाइसेंस गी रद्द करी दित्ता ऐ। हुन खबरें दी तफसील कन्नै जगमोहन शर्मा।
1: शुक्रिया अभिलाषा। मरदमशुमारी 2027 तैहत कल शुरू होई दी घर घर जाइयै घरें मकानें दी गिनतरी करने दी प्रक्रिया कोला पैह्ले लगभग 15 दिनें तोड़ी चले दे आनलाइन आपो अपनी जानकारी दर्ज कराने आले अभियान तैहत सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल राएं रिकार्ड 6,67,000 लोकें अपनी जानकारी दर्ज कीती ऐ। आकाशवाणी दे जम्मू संवाददाता ने दस्सेआ जे इस बारे जानकारी सांझे करदे होई जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे प्रधान मुक्ख जनगणना अधिकारी ते जनगणना प्रक्रिया दे निदेशक अमित शर्मा होरें दस्सेआ कि 2027 दी मरदमशुमारी तैहत सेल्फ इन्यूमरेशन च बधी चढ़ियै हिस्सा लैने आले केंद्र शासित प्रदेशें च जम्मू कश्मीर सब्भनें शा अग्गे ऐ, जिसलै जे होरनें राज्यें गी बी जेकर मलाया जा तां जम्मू कश्मीर 8वें नंबर पर ऐ। राजौरी दे जिला विकास कमिशनर अभिषेक शर्मा होरें कल डाक बंगला राजौरी थमां 2027 आली मरदमशुमारी तैहत घरें मकानें दी गिनतरी आली प्रक्रिया गी औपचारिक तौरा पर शुरुआत कराई, जेदे तैहत सरबंधित अमला घर घर जाइयै एह गिनतरी ते ब्यौरा किट्ठा करा'रदा ऐ। उनें इस मौके इक जागरूकता रैली गी बी झंडी दस्सियै रवाना कीता, जेदे च लोकें गी इस राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया च बधी चढ़ियै हिस्सा लैने लेई प्रेरित किया जाता है। इस मौके बोलते हुए डीसी होरें जानकारी दी जे 17 मई कोला लेइयै 31 मई 2026 तक चलाए गए ऑनलाइन आपूं अपनी जानकारी दर्ज कराने वाली सेल्फ इन्यूमरेशन प्रक्रिया तहत जिले च 62,000 लोकें अपनी जानकारी दर्ज की है, जड़ी च एक दिल बधाने वाली सारत है कि लोग इस प्रक्रिया की लेइए किन्ने मते उत्साहित न। पत्रकारें कने गल करदे हुए अभिषेक शर्मा होरें आख्या,
2: मैं सभी भारतवासियों को और जम्मू कश्मीर वासियों को बधाई देता हूं कि जो सेंसस का फिजिकल प्रणाली है वो शुरू की गई है 1 जून से लेके। अब ये प्रक्रिया जो है आगे बढ़ गई है, जिसमें हमारा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस, जिसमें सभी हमारे एन्यूमरेटर्स घर घर विजिट करेंगे, वार्ड वाइज विजिट करेंगे, वहां का जो घरों का गणना है वो उसको शुरू करेंगे। 2026-27 का जो ये सेंसस होगा, इसमें पूरी तरीके से ये प्रक्रिया डिजिटाइज्ड है, डिजिटल सेंसस है, फर्स्ट डिजिटल सेंसस है।
1: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें कल श्रीनगर दे चर्च लेन इलाके च सर्किट हाउस च ठहरने लेई कीते गेदे बाद्दू निर्माण दा उद्घाटन कीता, जेह्दे नै उत्थे आने आली विशेष हस्तियें ते लोकें लेई बेहतर खातर तवज्जो ते ठहरने दी व्यवस्था होई सकोग। केपैक्स बजट तैहत 7,81,34,000 रपे दी लागत कन्नै इस परियोजना गी PWD मैहकमे आसेआ तोड़ चाढ़िया गेआ। इनें नमियें सुविधाएं च इक बेसमेंट ते उप्पर 3 मंजिला इमारत शामल ऐ। इस इमारता च रौह्ने लेई 18 कमरे जिंदे चा 3 सुइट ते जरूरी सब्भनें सुविधाएं कन्नै लैस होर दुए कमरे शामल न। इस इमारत च इक बारी च 13 लोकें गी लेई जाने दी क्षमता आली ओटिस लिफ्ट भी लाई गेदी ऐ। उद्घाटन मौके उत्थे मौजूद उप मुक्खमंत्री सुरिंदर चौधरी होरें आखिया,
3: कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और मैक्सिमम लोगों की कोशिश रहती है कि हमें गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिले, तो उनको फैसिलिटेट करने के ये पहले जो हमारे जो पुरानी सर्किट हाउस की बिल्डिंग है उसके एडिशन में नया बिल्डिंग इनॉग्रेशन की है। तो लिहाजा कोई 8 करोड़ के लगभग का पूरा प्रोजेक्ट था जो कम्प्लीट हुआ है और इसका फायदा आप भी उठाएं, हम भी उठाएं, सारे मिलजुल के इसका लुत्फ उठाएं।
4: और उमर अब्दुल्ला साहब की जब क्यादत है, आप देखें कितने रिफॉर्म्स इस 1.5 साल में आए हैं।
1: ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा होरें सैलसफा सैक्टर च सरकार आसेआ उपलब्ध करवाए जा'रदे बेशुमार मौकें गी उजागर करदे होई कल आखेआ जे बड़े मते कठन भूगोलिक ते मौसमी हालात सरबंधी चुनौतियें दा सामना करने दे बावजूद भी जम्मू कश्मीर निवेश, उद्यमशीलता ते रोजगार लेई इक शानदार थाहर दे रूपै च उभरियै सामने आया ऐ। जम्मू कश्मीर बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 च प्रतिभागियें गी संबोधित करदे होई उनें आखेआ जे सरकार बपार, स्टार्टअप्स ते मकामी उद्यमें लेई इक माफक म्हौल तैयार करियै जम्मू कश्मीर सैलसफा आधारित आर्थिक विकास के एक जीवन

0: वंत केंद्र च तब्दील करने लेई वचनबद्ध ऐ। उनें आखेआ जे इस इलाके गी म्हेशां थमां गै मौसमी हालात ते होर दुईएं चुनौतिएं दा सामना करना पेआ ऐ, पर सरकार विकास दे एजेंडे गी अगड़े बधाने थमां कदें बी पिच्छे नेईं हटी ऐ।
1: जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, हमारा सबसे अहम रोल होने वाला है 27-28 इंक्लूडिंग 26, क्योंकि गिरकर खड़े होने में जो ताकत लगती है, 12 महीने पहले जो माहौल हमारे दुश्मन मुल्कों ने बनाया, लेकिन आप देख सकते हो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब और हमारे मुल्क के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के आशीर्वाद से आज हम वी आर बैक टू द बिजनेस। थैंक्स फॉर द ट्रेन जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की, वो एक बहुत बड़ी पहल थी, और मुझे लगता है जो कोऑर्डिनेशन होगी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, एनीथिंग इज पॉसिबल।
2: एह् खबरां साढ़ी वैबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। एह्दे अलावा तुस एह् खबरां आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन ते DTH पर भी सुनी सकदे ओ।
0: एह् खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू परा सुना'रदे ओ। बाकी दियें खबरें कन्नै अभिलाषा शर्मा।
3: जम्मू कश्मीर दे रजौरी जिले च आतंकवादियें दा पता लाने लेई सुरक्षाबलें आसेआ शेरुवली नां कन्नै चलाए जा'रदे बड्डे पैमाने पर सांझा तपाशी अभियान कल 10वें रोज बी जारी रेहा। आतंकवादियें दे ठिकाने दा पता लाने लेई ते कन्नै जंगलें आह्ले इलाकें च सुरक्षा गी मजबूत करने लेई सख्त जतन कीते जा'रदे न। फौज आसेआ होरनें सुरक्षा एजेंसिएं कन्नै रलियै एह् अभियान चलाया जा'रदा ऐ। जारी इस अभियान दौरान व्हाइट नाइट कोर दे GOC लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा होरें एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन दे GOC हुंदे कन्नै कल कब्जा रेखा कन्नै लगदे अगेतरे इलाकें दा दौरा लाया ते मौजूदा सुरक्षा हालात ते कार्रवाईएं सरबंधी तैयारियें दा जायजा लैता। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट मैह्कमे ने ओला गी दित्ते गेदे मोटर गड्डियें दे एग्रीगेटर लाइसेंस गी एह हवाला दिंदे होई रद्द कर दित्ता ऐ जे ओह जम्मू च अपने शाखा दफ्तर गी चालू करने च नाकाम रही ऐ ते बार बार नोटिस दित्ते जाने दे बावजूद भी लाइसेंस सरबंधी शर्तें दा पालन नेईं करा करदी ऐ। लाइसेंस रद्द होने कन्नै ओला हुन जम्मू कश्मीर च मोटर गड्डियें दे एग्रीगेटर दे तौरा पर कम्म करने लेई अधिकृत नेईं होग, जिसलै तक्कर ओह लागू नियमें ते कायदे मुताबक नमीं इजाजत हासल नेईं करी लैंदी। जम्मू कश्मीर दे ट्रांसपोर्ट कमिशनर विशेष पाल महाजन हुंदे आसेआ जारी इक हुक्मै मुजब ओला गी दित्ता गेदा लाइसेंस मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2023 दे प्रावधानें तैह्त फौरी प्रभाव कन्नै रद्द करी दित्ता गेआ ऐ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे आसेआ हाल च गै मन की बात कार्यक्रम दौरान अंबें दे उत्पादकें दा योगदान उजागर कीते जाने दे बाद उधमपुर जिले च अंबें दी खेती गी लेइयै लोकें च बड़ा मता उत्साह दिक्खने गी लब्बा'रदा ऐ। उधमपुर जिले दे प्हाड़ी इलाकें च स्थित मजालता इलाका दशहरी अंबें दी खेती लेई इक मशहूर थाह्र दे रूपै च उभरियै सामने आया ऐ। इस इलाके दी माफक आबोहवा ते करसानें दी लगन कन्नै एह अंब हून छड़ा जिले च गै नेईं सगुआं होरनें हिस्सें च बी अपनी गुणवत्ता लेई मशहूर होआ करदे न। म्यारी दशहरी अंबे लेई जाने जाने आले मजालता इलाके दे करसानें दा आखना ऐ जे प्रधानमंत्री हुंदे आसेआ सराहना कीते जाने दे बाद फलें दी खेती करने लेई उंदा उत्साह होर भी बधी गेदा ऐ। आकाशवाणी समाचार कन्नै अपने विचार सांझे करदे होई किश मकामी करसानें दा आखना ऐ।
4: मेरा नाम रतन चंद, मेरी इस टाइम 80 साल उम्र है। मैंने जब ये आम का काम शुरू किया तो उस टाइम मेरी उम्र 54 साल। जो नौजवान लड़के हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है, कोई साधन नहीं मिलता है, तो उसमें तवज्जो दो। जो जिम्मेदार है वो आपका धन्यवाद करेंगे और भी ज्यादा तवज्जो देंगे इस काम।
5: मेरा नाम युद्धवीर है। हमने जो प्लांटेशन है, हमारे फादर साहब ने 2013 से ये प्लांटेशन शुरू की थी और लगभग ये उन्हीं की योगदान है, उन्होंने ये काम बढ़ चढ़ करके किया। हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी जब प्रधानमंत्री प्रशंसा करे तो हमारे दिल में और खुशी होती है, तो हम चाहते हैं कि बढ़ चढ़ करके इसका और अच्छा मेंटेनेंस करें, इससे इजाफा करें।
3: मौसम विभाग ने पेशगोई की है जो जम्मू कश्मीर च 3 जून तकर मौसम आमतौर पर खुश्क बने दा रोग, 4 ते 5 जून गी नेकें थारें पर परतियै बरखा, गर्ज चमक ते तेज ब्हाऊ दे चलने दी संभावना है। मैह्कमे ने 6 थमां 8 जून तकर आमतौर पर मौसम खुश्क रौहने दा अंदाजा लाया है।
0: ते अखीरै च खास खास खबरां इक बारी परतिए। मरदमशुमारी 2027 तैह्त आपो अपना ब्यौरा दर्ज कराने आले सेल्फ इन्यूमरेशन च जम्मू कश्मीर सब्भनें केंद्र शासित प्रदेशें च अग्गे ऐ। 6,67,000 लोकें अपनी जानकारी दर्ज करी लैती ऐ। मुक्खमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें श्रीनगर दे सरकट हाउस चर्च लेन च ठहरने आले बाद्दू रिहायशी ब्लाक दा उद्घाटन कीता। ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा होरें आखेआ जे चुनौतियें दे बावजूद भी सरकार सैलसफा दे क्षेत्र च नमें मौके उपलब्ध करवा करदी ऐ। राजौरी जिले छप्पे दे आतंकवादियों का पता लाने लिए ऑपरेशन शेरुवाली अजें भी जारी है ते सरकार ने जम्मू कश्मीर च ओला गी दित्ते गेदे मोटर गड्डियों के एग्रीगेटर लाइसेंस की रद्द कर दिता है। एदे कन्ने गै खबरें दा ए बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: 101 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं आप हमें आकाशवाणी के भदरवा स्टेशन से। समय 9:30 हो चुके हैं, तो आइए अब होते हैं लुत्फंदोज कश्मीरी मौसिकी से। सबसे पहले आइए सुनते हैं गुलाम हसन सूफी का गाया ये कलाम।

समय अभी आपने एजाज अहमद की आवाज़ में सागर सहराई का कलाम सुना। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं अल्लाह रखा को वफा भदरवाही के इस कलाम में।

समयना भी आप सुन रहे थे कश्मीरी मौसीकी। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी के भदरवा मरकज से 101 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। अगले प्रोग्राम हम विविध भारती सर्विस मुंबई से रिले करेंगे, जिन्हें आप सुन सकेंगे शाम 5 बजे तक। समय न रिले का इंतजार कीजिए।

0: भक्ति की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खूखे।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: जाओ जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
3: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा, बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
3: ठीक है,
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
3: हाँ जी,
0: तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
3: सही है,
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
3: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है। ठीक है, दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशंस में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है, वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
0: अच्छा,
3: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही,

0: तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही, ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू। वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है।
1: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
0: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे। उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना, वो पेरेंट्स
1: जी
0: का काम है।
1: जी
0: ठीक है, इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहाँ जाएंगे? पेट
1: पेट
0: में।
1: में।
0: पेट में जाएंगे तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज में बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरियाज हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
1: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं, तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?
0: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए।
1: जी
0: उसके पहले, मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले, मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है, ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर
1: रास्ता
0: मसाज,
1: निकालेगा।
0: हाँ मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे। और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूं कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गॉज होता है, गॉज पीस, कॉटन की तरह, जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं, जो बांधी जाती है, गॉज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गॉज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गॉज पीस को पानी में डुबा के गीले गॉज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से,
1: छोटे बच्चों के लिए
0: छोटे
1: ये भी
0: बच्चों के लिए
1: तरीका है।
0: एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चों के लिए, जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0 to 3 ईयर्स, मतलब बचपन पैदा होने से लेके 3 साल तक, एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करे, खा ले, तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो।
1: बिल्कुल।
0: उसकी जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है? क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है। वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ अभी मुद्दा निकला ही है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे।
1: ये हम सभी के मामले में करें,
0: हाँ हाँ हाँ
1: चाहे बच्चे हो
0: बच्चे
1: चाहे
0: हो, बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है। ठीक है, वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटेलिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
1: टेढ़े मेढ़े ना हो जाए,
0: टेढ़े मेढ़े घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले, तब तक हम लोग चेंज नहीं करते। बट ऐसा नहीं होता है, माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में, कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए, तो आपने ब्रश

0: चेंज करना है, तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजीली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूं वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड,
1: चॉकलेट,
0: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूं। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी, सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर दोनों हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा। लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
1: ओके,
0: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही है
1: तो हमको कहीं बाहर
0: क्रेविंग नहीं होता है, बाहर इजिली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये गाना हमने सुना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की,
1: हाँ जी,
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है, नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है इनामल की।
0: हाँ।
1: डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक।
0: उसके
1: ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है,
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
0: ओके।
1: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते
0: लेकिन
1: हैं।
0: नस तक
1: अभी तक पहुंचा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है, तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है,
0: जिसकी हमने चर्चा की।
1: एग्जैक्टली,
0: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
1: हाँ जी, उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं, मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं, अभी वो नस सड़ गई है।
0: हाँ।
1: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको डेंटल एब्सेस बोलते हैं।
0: ये बहुत खतरनाक है।
1: यस, फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है, और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है।
0: अच्छा।
1: पर असलियत ऐसी नहीं है। असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर होता है,
0: होता है। हाँ।
1: हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तब जाके वो खड़ी रह पाती है।
0: सेम बात
1: यहां पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहां पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं करी, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है, ये बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहां से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं। हाँ, उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है। मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है। तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं,
0: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
1: एग्जैक्टली, नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते
0: हाँ
1: बैठे हो।
0: जी
1: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है। नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो वो सिक्रेशन कम होता है, तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं, वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता है। इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं, तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं। इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है,
0: हाँ, बिल्कुल। और सुबह उठते ही ब्रश
1: ब्रश
0: करना
1: करना
0: बहुत
1: जरूरी
0: जरूरी
1: होता
0: है।
1: है।
0: डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए हैं। हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब
1: सही,
0: आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को मजे
1: अखरोट
0: से,
1: जैसे।
0: अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही।
1: हाँ जी,
0: आज के बच्चों में तो वो, उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
1: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा
0: जैसे पहले के बुजुर्गों का है।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते हैं खाने में, बेसिक है। मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग, मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स, ये बना है ये खाना पड़ेगा,
0: बिल्कुल
1: ये रूल होता था घर का, आज ऐसे होता है। मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए।
0: ये तो खाना ही पड़ेगा।
1: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
0: हाँ, उनके मुताबिक बन रहा है।
1: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। भी इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है, या फिर बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की बच्ची को लेकर आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए, कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है,
0: ओहो,
1: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे तो। मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
0: बहुत सही है, बहुत सही है।
1: तो ये जो दुलार है ना
0: ये बहुत
1: इस,
0: नुकसानदेह है।
1: हाँ मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद
1: अच्छा,
0: हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
1: श्योरली। तो अभी किशोरदा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो,
0: क्या बात है, महबूबा
1: क्योंकि
0: फिल्म का
1: दांतों में
0: गाना।
1: दर्द होता है तो नैनों से तो सावन
0: हाँ
1: बरसना
0: हाँ
1: ही है।
0: हाँ सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है, तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनाल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है।
0: यस,
1: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
0: यस,
1: इसके लिए रूट कैनाल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
0: जी
1: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहां पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं, सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको, तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं।
0: अरे,
1: एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने,
0: अरे बाप रे,
1: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया, और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
0: ओहो,
1: और ये होता है सस्ते के चक्कर में जब लोग भागते हैं, सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा।
0: बिल्कुल,
1: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं शरीर के मामले में कि जहां पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
0: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है।
1: एग्जैक्टली,
0: तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है।
1: एग्जैक्टली, मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊँ,
0: हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ।
1: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 110 टू 130 पास्कल, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं, ये नंबर वाइज।
0: ये बहुत ज्यादा है,
1: बहुत ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है। ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है? जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी। तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए, उसके ऊपर कैप लगाया जाता है।
0: यस,
1: फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल। जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है, या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें 2-3 बार नस के एरिया की सफाई की जाती है। पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरियाज अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए, और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने। फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें, ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइन्फेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना। जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है, जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी 2 या 3 जड़े होती है, वो जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर। और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस, मतलब मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे। तो खाना चबाने का एज सच कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है?
0: बिल्कुल,
1: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा
0: इसके
1: पा
0: बिना
1: रहा हूं।
0: भी चल सकता है,
1: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी 1.5 गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं, बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर में है, 1.5-2 महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था 1.5-2 महीने तक। वहां पे न्यूट्रिशंस की सिर्फ जरूरत थी वो घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशंस पहुंचाए जाते हैं। वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में।
0: अच्छा,
1: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया, तो हड्डी गलना चालू हो जाता है।
0: हाँ।
1: वो

0: गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है, या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रेस्टोर इट्स फंक्शन। खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
1: तो वो
0: तो
1: बैलेंस
0: वो
1: करेगा।
0: बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है। एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
1: इसलिए डॉक्टर के पास जितने जल्दी हो सके, डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
0: सही बात है। और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है 1 मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है, नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज, तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
1: ठीक बात है।
0: इतनी सी बात होती है, पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है, और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास जाते नहीं
1: जाते
0: है।
1: नहीं है। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
0: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता
1: जी
0: हूँ, बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहां पे हम लोग गा लेते हैं।
1: तो हमारे लिए भी गाइए।
0: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ।
1: जी
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: साहब, जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं, ये सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि

0: जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है, परमानेंट दांत बड़े होते हैं, तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के, क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है, और अगर आपके दांतों के अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं, और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है।
1: ओके,
0: उसके लिए बना है, लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है, बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत, या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है, वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
1: फ्लॉस के लिए वो
0: धागा आता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है, अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको, उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं, एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस, यस इट इज द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं, कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है,
1: ओके,
0: जिसको अलाइनर्स बोला जाता है। तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है। और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा
1: जी,
0: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के, फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है, तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये निकालने पहनने वाली चीज है, इसकी सबसे बड़ी खामी भी ये है और अच्छाई भी यही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना, वो भले निकालने पहनने वाली चीज हो लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी होता है, वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है, वैसे भी वो दिखता नहीं है, तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग। पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनर्स से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनर्स से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया, फिर हम लोग अलाइनर्स पे शिफ्ट करेंगे। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट, बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है,
1: ओके,
0: सेम ही आता है, ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो तो वो थोड़ी महंगी जाती है, और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो, स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूं कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अंटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहां पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है वो सारी चीजें क्लीन रहती है, और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है, उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पे और वो हड्डी गल रही है।
1: ओके,
0: तो ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है, पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है,
0: हाँ जी,
1: इसकी बात करते हैं और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे।
0: चलेगा, तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे में। पायरिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की।
1: अच्छा, वो दांतों की बीमारी?
0: दांतों की बीमारी नहीं है।
1: ओहो,
0: ये पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए।
1: ओके,
0: अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे डेढ़ गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है, वो हड्डी जब गलेगी

0: तब
1: तब
0: उसका
1: तो
0: सपोर्ट
1: जाके
0: जाएगा,
1: यस,
0: तब दांत हिलेगा।
1: ये
0: तो
1: लंबा
0: हड्डी
1: मामला है।
0: वो एक दिन में होता नहीं है। पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं, उसके भी चार स्टेजेस है, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर बोलते हैं हम लोग उसमें, टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है, उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं। स्पेशली जहां पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मली लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहां पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है। तो उस परत में जो बैक्टीरियाज जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम, वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं, तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको दो टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस। दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट, वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं वो कहाँ से जा रहे हैं, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है, तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया, तो बहुत सारे केसेस में ग्रेड वन वाली स्टेजेस में तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एक मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं, वो आगे चल के मुंह से बदबू आना।
1: हाँ, ये थोड़ा विजिबल साइन है एक तरह से।
0: ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है,
1: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है।
0: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो, अगर आप उस बारे में अवेयर हो,
1: हाँ,
0: नहीं
1: लोग
0: तो
1: आपसे दूर जाने लगते हैं।
0: हाँ, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना
1: कनेक्शन
0: हो,
1: हो। जी
0: ठीक है। फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से,
1: हाँ जी
0: ब्रश करते वक्त खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के चार दांत गिर गए, बोले शुक्रवार को गिरे हैं, मुझे कल फोन आया, तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
1: कितना नॉर्मल है ना।
0: कितना नॉर्मल है, आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत है
1: बिल्कुल।
0: जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे, ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
1: यस,
0: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो, तो करोड़ों में जाती है, कई
1: बिल्कुल
0: सौ
1: बिल्कुल,
0: करोड़ों में जाती है,
1: यस
0: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है,
1: बिल्कुल।
0: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं। फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
1: वो सारी
0: वो
1: चीजें
0: सारी
1: भी,
0: चीजें आई,
1: तंबाकू,
0: तंबाकू,
1: स्मोकिंग।
0: स्मोकिंग, और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने
1: दांतों की
0: दांतों की, ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुढ़ों की तरह,
1: अरे अरे,
0: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ। और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है,
1: बिल्कुल।
0: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो,
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल।
0: सजेशन मैं यहां दूंगा।
1: इसी
0: हाँ
1: बात पर एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो डेंचर वाली बात करते हैं।
0: सही है, तो हम यहां पे सुनेंगे, यहां पे दांत बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे।
1: वाह, पर हम वफा करना सीखे, क्योंकि आप
0: क्योंकि
1: हमारी केयर
0: आपने
1: करना सीखे। क्या
0: एग्जैक्टली
1: बात है, सुनते हैं।
2: हम

0: डॉक्टर साहब, बहुत एक्सट्रीम केसेस की अब हम बात करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको जरा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए, जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है।
1: हाँ जी, अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रेस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शन क्या क्या है उसके, पहले तो ये बताऊंगा मैं कि वहां पे मुंह में दो ही कड़क स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम लोग सपोर्ट लेके परमानेंट वाला फिक्स दांत दे सकते हैं। एक तो खुद दांत अपने, या फिर हड्डी जिसमें दांत बैठे हुए, जबड़े की हड्डी। तो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे के एक दांत को छोटा किया जाता है, पीछे के एक दांत को छोटा किया जाता है, और तीन
0: लेवल में लाए जाते
1: हैं। एग्जैक्टली, और तीन कैप एक साथ बिठाए जाते हैं, जिस चीज को बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि जो बीच वाला है वो ब्रिज है।
0: करेक्ट,
1: दो दांतों के सपोर्ट पे। ये हो गया एक ऑप्शन। अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे हैं, कौन से तरीके का कैप आपके केस में बेटर रहेगा, या आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं।
0: इसमें दांतों का प्रेशर भी काम करता है।
1: एग्जैक्टली, आपका बाइट फोर्स कितना है,
0: जी,
1: आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, दांतों का अरेंजमेंट कैसा है।
0: यस,
1: क्योंकि जैसे लंबे स्पैन वाले ब्रिज होते हैं, तो अगर आपके अपोजिट साइड के दांत नीचे के जबड़े का कर रहे, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला है, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल रहेगा,
0: yes,
1: वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर। क्योंकि वो फोर्स जहां पे पड़ेगा वहां पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिवअप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी होगी जरूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज ही आपके केस में काम करेगी वो भी जरूरी नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहां पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है। एक स्क्रू जैसी चीज होती है, एक्चुअली उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए वो इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत बिठाने का, क्योंकि इस तरीके में नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट्स 2 दिन में 3 दिन में हम लोग केसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को 2 दिन में फाइनल दांत दे देते हैं।
0: बहुत जल्दी होने लगा ये,
1: बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीजें हैं। अभी इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है
0: बाकायदा,
1: क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है वो बना होता है टाइटेनियम से,
0: और वो महंगी चीज है।
1: टाइटेनियम सोने से भी ज्यादा महंगा आता है, तो वो महंगी चीज है। प्लस उसके टेक्निकल चीजों में अगर मैं जाऊं तो जो कंपनीज उसको बनाती है, तो उसके जो मशीन्स होते हैं, मतलब एक बार चालू कर दी मशीन तो बल्क प्रोडक्शन करेगी तभी वो रुका पाओगे आप, नहीं तो एक या दो सैंपल पीस बना के आप रोक नहीं सकते, वो हजारों में बनाने पड़ते हैं। ये कंपनी की मजबूरी है क्योंकि मशीन्स वैसे है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है उसके पीछे। ऑब्वियसली बात है, वो बाहर भी अपना नफा जोड़ेंगे। तो अगर मैं आपको अंदाजा दूं तो कम से कम 20-25 हजार से लेके 70-80 हजार, 1 लाख रुपए तक का इम्प्लांट होता है एक दांत का।
0: एक दांत का,
1: तो अगर हम लोग पूरे मुंह की बात करें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है, सारे दांत अगर आपको फिक्स में बिठाने हैं। ये हो गए फिक्स दांतों की बात। अभी आते निकालने पहनने वाले दांतों पे, डेंचर्स, या फिर हमने बहुत अपने दादा दादी को वगैरह देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए, वो निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत, तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर आउटडेटेड हो चुकी है। वो चीज वही पुरानी जनरेशन ही पहनना चाहती है जो पहले से पहन रहे हैं, लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक, जैसे हमने दांतों के ऊपर फोर्स की बात की थी, 120 टू 130 न्यूटन सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है, डेंचर में आपको प्रेशर रेस्टोर होता है 5 से 15 का।
0: बहुत कम है,
1: बहुत कम है। वही हम लोग इम्प्लांट के साथ रेस्टोर कर पाते हैं 110 से 115 तक।
0: इक्विवेलेंट है,
1: ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डेंचर पे आप बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हो,
0: पर इम्प्लांट बहुत महंगा
1: होता है। इम्प्लांट बहुत महंगा होता है
0: जी,
1: डेंचर उसके मुकाबले काफी सस्ते होते हैं।
0: तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आज की इस पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि दांत बहुत बेशकीमती हैं, और जैसे कि आपने कहा कि चूंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर, उनकी कदर नहीं करते।
1: एग्जैक्टली,
0: तो रोजमर्रा की स्थिति में इन दांतों को बचाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूं लास्ट में एक वन लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या वन लाइनर देंगे?
1: स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज क्यों, क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, और खुल के
0: बिल्कुल,
1: स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: ये थी जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: विविध भारती रंग तरंग।
0: रंग तरंग के आज के इस कार्यक्रम की पहली पेशकश लीजिए सुनिए।

बरसात की रात इस फिल्म से कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साथियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और रोशन का संगीत।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

प्रोग्राम रंग दरंग में अभी आप सुन रहे थे लकी अली की आवाज में ये गीत उन्हीं के एल्बम से अक्स एल्बम का नाम था, उन्हीं का संगीत और लकी अली द्वारा लिखा गया ये गीत। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम में। दीवाना एल्बम का नाम है। साजिद वाजिद का संगीत, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा।

लकीर फॉरबिडन लाइन्स। इस एल्बम से ये गीत आप वीवा की आवाज में सुन रहे थे। महबूब ने इसे लिखा था और एआर रहमान का संगीत। रंग तरंग में ये अगला गीत लकी अली की आवाज में

गुस्ताख दिल ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से शिल्पा राव की आवाज में अमित त्रिवेदी ने म्यूजिक दिया था और स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा।

कि यूं होता तो क्या होता, जगजीत सिंह को आप सुन रहे थे इस गजल में। इसके साथ ही आज का रंग तरंग यहीं समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुंचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं, अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने

0: आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

रेशमा की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हीरो फिल्म से, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। यादों की महफिल आप सुन रहे हैं विविध भारती से।

0: याद आ रहा है तेरा प्यार, बप्पी लहरी की आवाज में। ये गीत आप डिस्को डांसर फिल्म से सुन रहे थे, अनजान ने इसे लिखा और बप्पी लहरी का संगीतबद्ध ये गीत था। साथ ही आपको पता चल ही गया होगा कि यादों की महफिल में आज वो गीत जो यादों से जुड़े हैं, जहां किसी को याद किया जा रहा है। फिलहाल आपको ये भी याद दिला देते हैं,
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल। लीजिए सुनिए चरस फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है, आनंद बख्शी ने इसे लिखा।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज यादों से संबंधित यादों पर आधारित गीत आपको सुनवाए जा रहे हैं।

0: कुछ दिल ने कहा। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा, निखिल विनय का संगीत। और साथ ही आपको एक और खास बात याद दिला दें,
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: साथ ही आज की ये स्पेशल सखी सहेली को आप फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं, तो जरूर जुड़े हमारे साथ 3 बजे सखी सहेली में।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। इस गीत में पारस मनी फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

किताबें चुन के लिखे हैं लिस्ट में वो मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं वो भी अपने गीतों को चुनकर वहां लिख सकते हैं, उन शब्दों को लिख सकते हैं, अपने संदेश भेज सकते हैं। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें इस प्रोग्राम की, चलिए ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, गुलमोहर की डाल पर जब एक ख्वाब उतरा, फूलों ने धीमे धीमे उसका नाम पुकारा, गुलाब की लाली में कोई राज छिपा था, चमेली की महक में दिल का मौसम बसा था, गेंदा भी बहारों संग आंगन में यूं खिला, जैसे हर रंग को जीवन से नया रिश्ता मिल गया। एक पुरानी तस्वीर में ठहरा है किसी अनकहे प्रेम का जो पहला सवेरा है, एक नर्म सा खत हवा के संग आया था, जिसमें मौसम ने तेरा जिक्र सजाया था, पूजा सी पावन सी तेरी हंसी की रोशनी, जिसमें भर जाती थी मन की हर वीरानी, पलकों की चिलमन में जब नजर गुजरती थी, सपनों की झालर भी धीरे धीरे सवरती थी, यादों का ये सिलसिला आज भी रंग भरता है, गुलमोहर गुलाब और ख्वाबों में रंग ठहरता है। चलिए आपके संदेश भी हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जहां पर रंग रंग और फूलों की बातें हैं।

0: आन मिलो सजना। जी हाँ, ये गीत आप सुन रहे थे इसी फिल्म से। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में, साथ ही आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इसकी डिटेल्स आप मुझे भेज चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये पहला गीत था आज के इस प्रोग्राम का, और कहना पड़ेगा कि काफ़ी सारी डिटेल्स आप हमारे जो श्रोता है हम तक लिख देते हैं, और काफ़ी डिटेल्स में बताया कौन कौन अभिनेता है, अभिनेत्री है इस गीत में, काफ़ी डिटेल्स हमें मिली है। लेकिन साथ ही क्या मैं ये प्रश्न पूछने वाली हूँ? नहीं, मैं कुछ और पूछने वाली हूँ आपसे। फिलहाल आपके प्यारे संदेश आपको सुनवाते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत फूलों की खुशबू, रंगों की छटा और प्रेम की कोमल भावनाओं का सुंदर संगम है। फूलों और यादों से सजी ये इबारत प्रेम की उस पवित्र अनुभूति को व्यक्त करती है जो समय बीत जाने पर भी मन में जीवित रहती है। एक पुरानी तस्वीर, एक नर्म खत और प्रिय की मुस्कान स्मृतियों के ऐसे दीप हैं जो आज भी हृदय को रोशन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए हम इस तरह के गीत लेकर आए हैं ताकि आप उस रोशनी में एक बार फिर से नहा लें। आज कही हुई पढ़ी हुई लाइन यहाँ साझा कर रही हूँ। सर, वसंत के आते ही तुमने कहा था हम साथ साथ पार करेंगे हर जंगल। मैं अब भी खड़ी हूँ उस गुलमोहर के नीचे जहाँ कोयल के कंठ में कांपता है पत्तों का पानी। तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में न जाने कब से गुलाब उदास है। रिमझिम रिमझिम बूंदों में जहर भी है और अमृत भी। आंखें हंसती और दिल रोया तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर लिखा है, ये तो एक नई इबारत बन गई है। हमारे एक साथी कहते हैं कि आज के शब्दों पर गाने सुनने के लिए मैं उत्सुक हूं। गुलमोहर, गुलाब और ख्वाबों के रंगों में खो जाने का मन करता है। इस कार्यक्रम का इंतजार नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, हम आ चुके हैं, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप बने रहें हमारे संग इस प्रोग्राम में। साथ ही हमारे एक और साथी है जो लिखते हैं कि बेहद प्यारी नज्म से चुनिंदा शब्द उन्होंने निकाले हैं गुलमोहर दो दीवाने शहर में। उन्हें ऐसा लगता है कि इन शब्दों से आज के गीत जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से मैच होती है, मेल खाती है या नहीं। साथ ही साथ एक और श्रोता हमें लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, संवेदनशील और पुरानी यादों के रंगों से सजी हुई है इबारत, और समय भले ही बीत गया हो, वो पल अतीत का हिस्सा बन चुके हों, लेकिन यादों का ये सिलसिला आज भी थमा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यारे से खूबसूरत मैसेज के लिए। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि आज के इस गद्यांश को गुलाब, गुलमोहर, चमेली की महक से महकाया है। गुलों की मासूमियत और भरपूर अनगिनत रंगों से उषा की लालिमा की तरह खिलने वाला नाजुक नर्म प्यार का एहसास नए सवेरे की ताजगी भरे ख्वाबों में सजकर जीवन का मेघ धनुष रच रहे हैं। वाह, कितना सुंदर लिखा है आपने। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अरे वाह, शायर है हमारे श्रोता, बिल्कुल कहना पड़ेगा। एक और साथी लिखते हैं कि फूल एक इकाई है, गुलशन एक खिला हुआ बगीचा है, और गुलिस्तान एक बहुत बड़ी फूलों की भूमि या विस्तृत उपवन है। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने बताया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही हम फूलों की बात कर रहे हैं तो एक और ये गीत सुन लीजिए, फिर आते हैं हम अपने प्रश्नों पर।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

जी हाँ, इस नशे को प्यार कहते हैं। प्रेम पुजारी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में, नीरज ने इसे लिखा था, एस डी बर्मन की तर्ज थी। और आपके बहुत से संदेश हम तक पहुंच गए हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज फूल बहारों मिलन की बातें होगी। देश के बहुत सी जगह मानसून का आगमन हो चुका है। चिलचिलाती धूप गर्मी से राहत मिली है। बाग बगीचे और मन का मोर भी नाचने के मूड में है। बहुत से फूल जगह जगह खिलने लगे हैं। बिरह मिलन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और एक और साथी कहते हैं, शुभ दोपहर। आज बहुत दिनों के बाद ये हमसे जुड़ रहे हैं और पहली बार मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, यानी कि मैं अगर सुरीला सफर में हूँ तो ये फर्स्ट टाइम इनका जुड़ाव है इस प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद, स्वागत है आपका। एक और साथी हमारे कहते हैं कि जैसे हर रंग को जीवन से नया रिश्ता मिला, ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में जब भी खुशियां आती है तो जीने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है और हर चीज नई लगने लगती है। एक पुरानी तस्वीर में वो पल ठहरा हुआ है जहां यादों के अनगिनत रंग बिखरे हैं। ये बात याद दिलाती है कि वक्त भले ही गुजर जाए, लेकिन खूबसूरत यादें हमेशा हमारे दिल में और आंखों में ताजा रहती है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि बहुत ही जोरदार गाने से शुरुआत हुई आज के इस प्रोग्राम की और उन्हें अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और साथी हमारे लिखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, ये लाइन हमें रुकने पर मजबूर करती है। एक पुरानी तस्वीर या एक पुराना खत समय को एक जगह रोक देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि भले ही दुनिया आगे बढ़ जाए, हमारे दिल का एक कोना हमेशा उस सबसे खूबसूरत पल में ठहर जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम ठहर जाते हैं और ठहराव भी जरूरी है। कभी थोड़ा रुकना, थमना, ठहरना बहुत जरूरी है और हमें ये अक्सर करना चाहिए अपने साथ हर दिन। एक और साथी लिखते हैं कि वक्त की धूल से धुंधली नहीं होती वो यादें जो दिल के कागज पर मोहब्बत से लिखी जाती है। कोई कितना भी दूर चला जाए, जमाने में गुलमोहर की छांव में कुछ बातें रह जाती है। बिल्कुल, गुलमोहर का जिक्र हुआ है तो इसका गीत हम कैसे भूल सकते हैं। गीत तो फूलों पर है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल। कितने सारे फूल हैं ना जो खुशियां बांटते हैं, आपके चेहरे पर रंग ले आते हैं। तो आप अपने आप को कौन से फूल के साथ रिलेट कर पाते हैं, जुड़ाव महसूस कर पाते हैं, मुझे लिख भेजिए। और कौन सा फूल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ये बहुत जरूरी सवाल है कि क्यों अच्छा लगता है, मुझे जरूर लिखें। साथ ही साथ फूलों को सजाने के अलावा और किस तरह से आप यूज करते हैं, या फिर अगर आपके आसपास फूलों का बाजार है तो उसके बारे में भी मुझे जरूर लिख भेजिए। फिलहाल राहत देने के लिए ये खूबसूरत नगमा।

फिल्म देवता से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, और गुलजार ने इसे लिखा, आरडी बर्मन की तर्ज थी। जी हाँ, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि गुलाब की लाली और खुशबू की तारीफ सुनकर बाकी फूल जल उठे। मोगरा बोला, मेरी खुशबू के दीवाने हैं लोग। तो निशिगंधा ने कहा कि मैं भी क्या कम हूं। गेंदे के फूल ने कहा कि मैं तो दिवाली की शोभा हूं। मतलब एक ही चीज, हर एक चीज का अपना एक समय होता है, लेकिन सभी फूलों की जगह ईश्वर के चरणों में होती है। जी हाँ, क्या खूब कहा है आपने। एक और साथी कहते हैं कि आवाज की दुनिया विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के सभी उद्घोषक और सभी लोग जो भी यहाँ पर काम करते हैं, उन सबकी आवाजें मीठी वाद्य यंत्रों से भी सुरीली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कल रात 2 बजे सूरत गुजरात में आंधी तूफान के साथ पहली बारिश हुई, और आज धूप के कारण गर्मी बहुत है। यही तो मौसम की बात है, मौसम पल पल में बदलता है। हमारे एक श्रोता है जो कि लंदन से इस वक्त हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं ऐप के थ्रू, और उन्हें ये गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। देखते हैं आगे के नगमे आपकी लिस्ट से मैच खाते हैं या नहीं। हमारे एक और साथी है जो लिख रहे हैं कि 15 गीतों की लिखी हुई इबारत में से फूलों पर लिखे हुए मेरे दोनों गीत फेल हो गए हैं, फेल हो गए हैं, और अब देखते हैं और कौन सा मेल खाते हैं। नहीं जी बिल्कुल, आपके दिल और हमारे दिल एकदम जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं गीत मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन मनोरंजन जरूर विविध भारती पर चलता रहेगा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि रोज दोपहर 1 बजे प्रसारित होने वाला सुरीला सफर कार्यक्रम केवल गीतों का संग्रह नहीं है, बल्कि श्रोताओं के दिलों को जोड़ने वाला एक सुंदर सेतु है। वर्षों से विविध भारती ने अपने श्रोताओं के साथ जो आत्मीय रिश्ता बनाया है, उसे यह कार्यक्रम और भी मजबूत कर देता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से श्रोताओं की सहभागिता इस कार्यक्रम को और भी जीवंत बना देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और साथी लिखते हैं कि फूल बिना कुछ कहे प्रेम, सम्मान, शुभकामना और संवेदना व्यक्त कर देते हैं। मंदिरों की पूजा से लेकर विवाह, स्वागत, उत्सव और स्मृति समारोह तक हर जगह फूलों की जरूरत होती है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आप ये जरूर संदेश में लिखिए कि आप किस तरह से इसके अलावा फूलों का उपयोग करते हैं, या फिर सिर्फ सजाने, पूजा भर से या विवाह स्थलों को सजाने, उसके अलावा ये जो फूल हैं जो मुरझा जाते हैं, आप एक बार फूल लेकर आ जाते हैं, किसी को गिफ्ट कर देते हैं या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया, उसके बाद उन फूलों का आप क्या करते हैं, किस तरह से उसे उपयोग में लेकर आते हैं, साझा करते हैं अपने विचार और सुनते हैं कि सब लोग किस तरह से इसे यूज करते हैं। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई एक फूल की बात करना कठिन है, इनका जो रंग होता है, मनमोहक सुगंध होती है, कोमलता होती है, वो हमारे मन को सकारात्मकता से भर देती है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए फूलों की बात चली है तो बताइए, मैं इंतजार कर रही हूँ, फूलों के बाजार का भी इंतजार कर रही हूँ कि आपके एरिया में आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास कौन से फूलों के बाजार लगते हैं, आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं।

फिल्म ना खुदा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे और लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाजों में अभिनेता अभिनेत्री आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, स्वरूप संपत और राज किरण पर फिल्माया गीत। फूलों की बात की कि फूलों को देने के लिए, गिफ्ट देने के अलावा और क्या करते हैं, तो हमारे साथी लिखते हैं कि जब भी उन्हें कोई फूल गिफ्ट करता है, देता है, तो वो अपनी किताबों में छुपा कर रख लेती हैं, फिर सोचती हैं कि इस बार जब भी कोई देगा तो उसे अपने बगीचे में लगा देंगे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि गुलाब के फूलों की हमारे देश में सबसे ज्यादा खेती बाड़ी हमारे अजमेर जिले के पुष्कर में होती है, जो कि तीर्थ स्थल भी है, और फूलों का उपयोग यहाँ पूजा के साथ साथ गुलाब का इत्र और गुलाब का गुलकंद बनाने में भी किया जाता है। हमारे घर के गार्डन में भी गुलाब के पौधे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है ये और बहुत ही ज्ञानवर्धक बात आपने बताई है, हमें ये नहीं पता था। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि सबसे अच्छा फूल तो गोभी का फूल होता है, जब कोई इंप्रेस हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसकी सब्जी बना ली जाए। जी हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पारिजात, हरसिंगार, शिफालिका या प्राजक्ता, ये एक ऐसा फूल है जो बहुत ही सुगंधित होता है और बड़ा पवित्र पुष्प माना जाता है, और आयुर्वेद में भी इसके काफी सारे औषधीय गुण हैं और धार्मिक और पौराणिक महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने काफी डिटेल में इसके बारे में बताया है और महाभारत काल में भी उस वक्त की भी कोई चर्चा की है यहाँ पर, उसका कुछ बताया है, वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम और मैसेजेस पर जाते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वो नागपुर में रहते हैं और नवरात्रि गणेश जी के आगमन के समय हर त्योहार को फूलों की मंडी में जाकर हर प्रकार के फूल खरीद कर लाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि पारिजात पुष्प को देवलोक का पुष्प माना जाता है, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं बहुत ही प्यारी लाइन कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, ये कविता की एक लाइन है जो बचपन में याद की थी और आज भी याद है, और सभी फूल बहुत सुंदर लगते हैं इन्हें। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनके आसपास फूलों का बाजार तो नहीं है, लेकिन वो एक सरकारी शिक्षक हैं और विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बागवानी भी सिखाते हैं, जिसमें फूलों के बारे में बताते हैं और हर दिन माँ सरस्वती की तस्वीर को पुष्प चढ़ाते हैं, प्रार्थना करके अपना काम शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि मिडिल मिस्ट रेड एक अद्भुत फूल है, इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ फूलों में गिना जाता है और ये माना जाता है कि केवल दो ज्ञात पौधे ही बचे हैं, और एक इंग्लैंड में है और दूसरा न्यूजीलैंड में है। और दिलचस्प बात यह है कि ये रेड कलर नाम जरूर है, इसका रेड जरूर नाम है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो गहरे गुलाबी रंग के होते हैं, और साथ ही ये हमें ये सिखाता है कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज वही है जो कम दिखाई देती है लेकिन जिसकी मौजूदगी पूरी प्रकृति को खास बना देती है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने हम तक पहुंचाया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आंगन में महकती मधुमालती उन्हें बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह और तमाम उदासियों को दूर कर देती है। हमारी एक साथी लिखती है कि ये शो सुनकर उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि फूल बागों में नहीं यहां पर कहीं झड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यारे से संदेश के लिए कि जब हम बोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि फूल झड़ते हैं। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, और ये पहली बार हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त स्कॉटलैंड से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए चलते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: जी हाँ दोस्तों, आज दिन में 3 बजे सखी सहेली के साथ जरूर जुड़िएगा। स्पेशल सखी सहेली की वर्षगांठ है और मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी हमारे साथ होंगी। साथ ही आप हमें देख सकते हैं FB लाइव पर। साथ ही आपके जो भी सवाल है हिमानी जी से, वो आप अभी हमारे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं और हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। हमारे सुरीला सफर के कुछ संदेश इंतजार में हैं। फूलों की बातें चल रही थी तो फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, ऐसा लिखा है हमारे साथी ने। मतलब फूलों को कई बार बेरहमी से कुचला और फेंका भी जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। और फूल काफी नाजुक होते हैं, उनके साथ इस तरह से बिल्कुल भी बर्ताव नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। तो फिर उन फूलों को जो हमें गिफ्ट किए जाते हैं या जो मुरझा जाते हैं, उनके साथ ऐसा क्या किया जाए, किस तरह से उन्हें उपयोग में लाया जाए, आप हमें लिख सकते हैं। साथ ही हमारे साथी लिखते हैं एक और कि विभिन्न फूलों की, फूलों में मिली जूही महक, ओके, और रंग बिरंगे फूल जो है वो मन को तरोताजा कर देते हैं और आंखों को भी तरावट देते हैं, बिल्कुल। साथ ही साथ एक साथी लिखते हैं कि कपास का फूल, जिसके आगे संसार के सारे फूल फेल है, कपास के फूलों से रुई और खाद कपड़ा बनता है, जो इंसानों के शरीर ढकने का काम करता है। जी हाँ, वो भी एक तरह का फूल ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन संदेशों के लिए। साथ ही गुलकंद के अलावा और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे उपयोग सामने दिख रहा है आपके संदेशों में। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि और किस तरह से इन फूलों का उपयोग किया जाता है या आप किस तरह से करते हैं, ज़रूर मुझे लिखिए।

फिल्म आप सबने बिल्कुल ठीक लिखी है। सिलसिला फिल्म से ये गीत सुनवाया गया आपको, लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़, उमेश शिव हरी का संगीत था और जावेद अख्तर ने इसे लिखा था। साथी फूलों की बातें पहुंच चुकी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे राज्य ओडिशा में केवड़े की खेती बहुत भारी तादाद में होती है और इसके इत्र बनाने की कई फैक्ट्री है और साथ ही पान मसाले बनाने वाले ज़्यादातर खरीदार होते हैं। और एक और साथी हमारे लिखते हैं कि इस पूरे हफ्ते ये कार्यक्रम नहीं सुन पाई और क्योंकि इनकी बेटी आई हुई थी और बेटी आई हुई है जो कि काफ़ी टाइम इनको व्यस्त रखती है। कोई बात नहीं, स्वागत है आपका आज इस प्रोग्राम में, आप बने रहें, जब तक भी आप बन सकते हैं हमारे साथ। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपराजिता शिवजी को चढ़ाते हैं और अलग अलग प्रकार के फूल उगाए हैं इन्होंने अपनी बगिया में और लाइट आकाशी कलर के भी इनको फूल काफ़ी पसंद है। हमारी एक साथी लिखती है कि ये जब भी किसी को गिफ्ट करती है, फूल भेंट करती है, तो हमेशा उसकी जो डंडियां हैं, उसकी जो स्टेम है, उसे लंबा रखती है ताकि अगला भी उसे यूज़ कर सके, पानी में रखे, हर दूसरे दिन पानी को चेंज करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा तरोताज़ा रह पाए जब तक रह सकते हैं और उसके बाद फिर उसको बाकी कामों में यूज़ कर सके। हमारी एक साथी लिखती हैं कि फूलों की वादियों में वो एक बार गई हैं जब गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ का टूर किया था और वहाँ पे फूल चट्टी बोलकर एक जगह आई थी फूलों की और वो बहुत खूबसूरत फूल लग रहे थे। मोबाइल तब नहीं होते थे इसलिए फोटो नहीं खींच पाई वो। जी हाँ, उसके अलावा ट्यूलिप गार्डन का जिक्र आया है हॉलैंड का, यहाँ पर एक साथी ने लिखा है। हमारी एक साथी लिखते हैं कि ऐसे ऐसे फूल भी खिलते हैं जिनके बारे में अगर आप सुने तो ताजुब करेंगे। कैक्टस के भी फूल खिलते हैं और ये फूल साल में एक बार रात को 12 बजे के करीब खिलते हैं, 1.5-2 घंटे के लिए। और उस पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता भी है कि कैक्टस के फूल तुम दिन में खिले होते। जी हाँ, ये मैंने पहली बार सुना है और आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, सचमुच ताजुब है। इसके अलावा गुलाब के फूल केवल सुंदरता के लिए नहीं होते हैं, साथ ही साथ उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, विटामिन सी भी मौजूद होता है, उसका टोनर भी बनाया जा सकता है और होंठ भी गुलाबी होते हैं उसे पीसकर लगाने से, साथ ही उसकी चाय भी बना सकते हैं, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा है। उसके अलावा गुलाब जल के रूप में भी प्रयोग होता है और भी बहुत सारे फूल हैं जिनका अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस आज मुझ तक पहुंचे। चलिए हम पहुंचते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

फिल्म अपने पराये से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे हम पूरा नहीं सुनवा पाए क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आपके मैसेजेस मुझ तक फूलों के पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं कि कईयों ने यहां पर प्रश्न लिख दिए हैं हिमानी जी के लिए, लेकिन आप फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पर सखी सहेली के नीचे पोस्ट के नीचे आप जरूर अपने प्रश्न रखिए और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के मैसेजेस के लिए। आज का सुरीला सफर यही समाप्त होता है, इजाजत दीजिए। आपने आज का ये सफर तय किया अनुराधा के संग।

नमस्कार दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में सुख दुख धूप छांह की तरह है। समय का पहिया घूमता है तो कभी सुख आता है तो कभी दुख। सुख का समय तो पंख लगाकर उड़ जाता है, लेकिन दुख का समय बेहद लंबा और कष्ट भरा मालूम होता है। लेकिन दोस्तों, जीवन में सुख दुख का चक्र चलता ही रहता है। इसमें घबराने की बजाय धैर्य से काम लेना ही समाधान है। जीवन में दुख का एक बहुत बड़ा लाभ है, ये हमें अपने व्यक्तित्व में अंदर झांकने और उसे मजबूत करने का मौका देता है। दुख हमें अपने सच्चे और झूठे रिश्ते नातों और दोस्तों के असली चेहरे हमारे सामने उजागर कर देता है।

जीवन में जब भी कोई संकट आता है और अधिकांश लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब अपनी सहायता ईश्वर के अलावा हम स्वयं करते हैं। हमारा दृढ़ निश्चय और हमारी सकारात्मकता हमें जीवन के तूफानों में भी भटकने नहीं देती। अंधेरी सुरंग कितनी भी लंबी हो, उसके अंत में प्रकाश की किरण मिलती ही है। रात कितनी ही काली क्यों न हो, जीवन में सुख की सुबह होती ही है।

दुख का समय हमारे जीवन में एक चुनौती की तरह आता है। इस चुनौती को हम अपने संयम, धैर्य और विवेक से बड़ी सहजता से परास्त कर सकते हैं। और जब हम अपनी कर्मठता से, अपने पुरुषार्थ से परिस्थितियों पर विजय पा लेते हैं, तब हमें अपने आप पर गर्व भी होता है और उस पल को हम उत्सव से कम नहीं समझते।

तो दोस्तों, हम जीवन को जितनी सहजता से लेंगे उतना ही हमारा मन शांत रहेगा और हम अपने धैर्य और विवेक से दुखद परिस्थितियों पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर सकेंगे। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
2: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में

0: पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: जी हाँ, जरूर जुड़िए हमारे साथ आज सखी सहेली स्पेशल, यानी कि आज हमारी वर्षगांठ पर मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी से रेडियो सखी ममता सिंह की दिलचस्प बातचीत आप सुनेंगे। हिमानी जी हमारे स्टूडियो में पहुंच चुकी है, हमारे परिसर में पहुंच चुकी है। 3 बजे से वो फेसबुक लाइव भी होंगी और आप उनसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आप लिख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज की सखी सहेली के पोस्ट के नीचे, हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। और ये दिलचस्प बातचीत बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक लाइव भी हम आपको सुनवाएंगे और दिखाएंगे। वक्त है सदाबहार नगमे का,

0: लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुगले आजम फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: जी हाँ साथियों, आज 3 बजे स्पेशल सखी सहेली। जी हाँ, आपके चहेते कार्यक्रम सखी सहेली की वर्षगांठ पर आज मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी हमारे विविध भारती परिसर में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत स्वागत उनका। और आज ये दिलचस्प बातचीत हिमानी शिवपुरी जी के साथ रेडियो सखी ममता सिंह की आप सुनेंगे। साथ ही आपके जो प्रश्न हैं वो आप हमारे फेसबुक पेज पर सखी सहेली के पोस्ट के नीचे लिख सकते हैं, हम उन्हें जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और 3 बजे ये विशेष कार्यक्रम जरूर सुनिए। ये फेसबुक लाइव भी होगा।

3420 फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र ने इसे लिखा था। शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा था, ओपी नैयर का संगीत था। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती से।

और ये है सदाबहार नगमे प्रोग्राम का आखिरी गाना, और थोड़ी ही देर में हमारा सजीव प्रसारण सखी सहेली कार्यक्रम होगा, और हमारी जानी मानी अदाकारा जानी मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी विविध भारती के स्टूडियो में आ चुकी हैं। बस दिल थाम के बैठे रहिए श्रोताओं, चार मिनट बाद हम शुरू करेंगे सखी सहेली, विशेष सखी सहेली।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दोस्तों आज है सखी सहेली की वर्षगांठ। 2003 में शुरू हुआ था ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का सफर इतना सुरीला रहा, इतना लोकप्रिय रहा कि आज भी लोग इसे बहुत प्यार देते हैं। सखी सहेली देश ही नहीं बल्कि दुनिया के श्रोताओं का प्यार मिला है। इस विशेष अवसर पर हमने फिल्म और टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी को जीव प्रसारण में आमंत्रित किया है। हिमानी जी अपनी सहज अभिनय शैली, दमदार संवाद अदायगी के लिए जानी जाती हैं। फिल्म, धारावाहिक और रंगमंच तीनों माध्यमों में हिमानी जी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। तो पूरे विविध भारती परिवार की ओर से हम हिमानी

0: सब माध्यमों का जो पहला माध्यम जिससे मेरा परिचय हुआ या वो हुआ, वो रेडियो सबसे पहला मुझे बचपन की जो यादें हैं इतनी जुड़ी हुई रेडियो से पुरानी। हम लोग पापा हमारे घर में तब तक दूरदर्शन नहीं आया था तो रेडियो पर ही सब निर्भर करते थे, चाहे समाचार हो, देवकी नंदन पांडे जी की आवाज अभी तक कानों में गूंजती है,
1: समाचार वाचक
0: कुंदन लाल सहगल, एक स्लॉट्स होते थे कि पुरानी फिल्मी गाने जिसमें कुंदन लाल सहगल
1: भूले बिसरेगी,
0: भूले बिसरेगी
1: आज भी प्रसारित होता है।
0: हाँ, और वो सुनते थे और भी मजा आता था। बिना का गीत माला कैसे पता लगता था कौन गाना इतना पॉपुलर है
1: जी।
0: और सबसे बड़ी बात हमारे घर में पापा और मेरा भाई और मैं भी, क्योंकि वो लोग देखते थे तो क्रिकेट के एंथुजियास्टिक थे सब के सब, तो मैं आज भी ये मानती हूँ, जबकि आज तो खैर आईपीएल वगैरह इतना है, आज भी मेरा मानना है कि जो रोमांच रेडियो में कमेंट्री सुनने से आता था वो टीवी तो मैच ही नहीं कर सकता। हालांकि मैं खुद टीवी के मीडियम से हूँ, लेकिन इस तरह से ये लोग समा बांधते थे कि मतलब हमको लगता था कि हम वाकई में ग्राउंड में है, क्रिकेट ग्राउंड में। तो इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं रेडियो के साथ, हमारे बचपन का अभिन्नंग था। और बचपन क्या आजकल जब
1: बहुत सारे चैनल्स हैं,
0: बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन रेडियो का भी अभी भी बहुत ही अहम भूमिका है कि हम लोग जब मुंबई में, आपको मुंबई या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्या करते हैं कि रेडियो तो साथ में रहता ही है आपके, गाने बजते रहते हैं। तो आई फील कि जो ट्रैफिक की जो धक्का मुक्की है उससे अगर कोई बचाता है तो वो रेडियो ही बचाता
1: है। क्या बात
0: है,
1: बहुत बढ़िया बात आपने कही। और ये जो क्रिकेट कमेंट्री की बात कही है तो हमें भी याद है कि आंगन के मुंडेर पर एक रेडियो रखा जाता था और गांव के कई लोग, यहाँ तक कि साइकिल से दूर दूर से लोग चल के आते थे कि फला के यहाँ रेडियो है, चलो हम क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं। तो ये याद तो आपने बड़ी तिलिस्मी साझा की है। बताइए कि क्या आपने भी क्रिकेट के चौके छक्के लगाए या सीधे आप देहरादून से दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली आपने? बताइए हमें।
0: नहीं, क्रिकेट में मैं तो ज्यादातर किताबी कीड़ा थी बचपन में, और नाटकों में भाग लेती थी, डिबेट्स करती थी, डांस करती थी। क्रिकेट के चौके छक्के तो मेरा भाई लगाता था, पर चूंकि हम घर में ऐसा माहौल था, और मुझे अभी भी याद है कि क्रिकेट के बारे में जो फैनेटिसिज्म था हमारे टाइम, तो सुनील गावस्कर वगैरह तो भगवान मंदिर में जाके पूजा करते थे, हाय मतलब सुनील गावस्कर सेंचुरी बना दे।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करते थे।
0: जैसे कोई भी भारत पाकिस्तान का या भारत इंग्लैंड का कोई भी मैच हो तो भारत जीत जाए, मतलब प्रे कर रहे हैं और कमेंट्री सुन रहे हैं। तो मतलब क्रिकेट का पैशन उस टाइम भी उतना ही था जितना कि अब है।
1: जी बिल्कुल, एक गाना सुन लें उसके बाद फिर हम और आपकी यादों के गलियारों में चलते हैं और ढेर सारी यादें खंगालेंगे। तो एक गाना बधाई देने वाला गाना है, हम सुनते हैं।
0: जी जी।

0: तो हिमानी जी, ये बधाई हो बधाई गाने में था और हमारे श्रोताओं की ओर से बधाई संदेश के बाढ़ से आई हुई है और हमारे बहुत सारे श्रोता आपके लिए लिख रहे हैं कि हिमानी जी आई हैं, चार चांद लग गया है विविध भारती के स्टूडियो में। और आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि रेडियो से इतना पुराना नाता है, ऐसा लग रहा है कि मायके, जैसे बचपन में हम लोग रेडियो सुनते थे, लगता है कि अपने मायके आ गई हूँ।
0: सही बात है।
1: और ऐसा भी नहीं, मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 बार आ चुकी हूँ, और दिल्ली हो, दिल्ली में भी करें, देहरादून में भी जब भी जाती हूँ तो रेडियो प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि रेडियो से नाता मुझे
0: बड़ा
1: नहीं लगता,
0: गहरा है
1: बहुत गहरा
0: और आपसे भी बड़ा गहरा नाता है हमारे श्रोताओं का। हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपके अभिनय के कायल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिमानी जी अपनी सशक्त अभिनय प्रतिभा, सहज व्यक्तित्व और कला के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। हमने आपको फिल्म हम आपके हैं कौन देखी, उसमें आपको देखा, और भी कई फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं। और इन्होंने सवाल भी किया, हिमानी जी आजकल आप क्या करती हैं और आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो अभी हम ये पूरी आपकी जर्नी के बारे में जब बात करेंगे तो पता चल ही जाएगा हमारे श्रोताओं को। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली बहनों का त्यौहार है आज तो, और इसमें भाई का प्यार भी है तो सखा भी शामिल है। निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को सखाओं का प्यार भी इस प्रोग्राम को मिलता है और हमारे सखा बहुत लंबी तादाद में सुना करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी उलझा सखी सहेली, हे सखी सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो कहलाती हो नित नवेली, किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल, यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम हो सबकी प्यारी न्यारी दुलारी सखी सहेली। बहुत बातें लिखी हैं हमारे श्रोताओं ने, लेकिन अब हिमानी जी आई हैं तो हमारे मन में भी सवाल और बातों का ज्वार सा आया हुआ है। तो चलिए आपको हम उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं कि देहरादून से आपने दिल्ली का सफर कैसे तय किया और गर्मी की छुट्टियां, इस समय गर्मी बहुत तेज है पूरे देश भर में, तो गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताइए, क्या नॉस्टैल्जिया होता है जब आप गर्मी की छुट्टियों में रेडियो सुनते हैं, आइसक्रीम और वो इकड़ दुखड़ का खेल, वो बचपन के संसार में आप गोते लगाइए और साझा कीजिए कुछ यादें।
1: बचपन में तो मुझे याद है कि गर्मी, सिंस मैं देहरादून से हूँ तो देहरादून का मौसम अभी भी वैसे बहुत अच्छा है कि जहाँ 2-3 दिन गर्मी होती है तुरंत बारिश आ जाती है, तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है कि
0: जी।
1: और हम लोग जब गर्मियां होती थी तो स्विमिंग पूल में ही पड़े रहते थे, और पापा हमको, पापा पहाड़ी थे तो हमको देहरादून वैली में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा जमुना तो है ही, हमने जमुना में राफ्टिंग भी करी है, गंगा में भी नहाने जाते थे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, करीब 20-25 मिनट में एक लक्ष्मण झूला, वो होता लक्ष्मण झूला तो ऋषिकेश में लक्ष्मण सिद्ध होता था, और सोंग रिवर होती थी तो हम लोग नदियों में जाके नहाते थे, पापा तो सीधे, हमने स्विमिंग पूल में भी था क्योंकि पापा डून स्कूल में पढ़ाते थे तो वहाँ स्विमिंग पूल था, लेकिन हम लोग नदियों में भी, मतलब प्रकृति से
0: जुड़ाव
1: बहुत जुड़ाव था। और जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो पापा मसूरी ले जा लेते थे और तब हम पैदल चल के, अब तो खैर कार से जाते, पैदल चल के देहरादून से मसूरी जाते थे क्योंकि पहाड़ी रास्तों में बड़ा घुमाव होता है तो बहुत चक्कर आते हैं, मोशन सिकनेस होती
0: है,
1: तो हम लोग प्रेफर करते थे और पापा लेके जाते थे हमको पैदल रास्ते से, बीच में रास्ते में रुकते थे, चाय और पकौड़ी खाते थे,
0: क्या बात
1: फिर
0: है?
1: मसूरी पहुंचते थे, एक बहुत फेमस दुकान थी और बाद में तो खैर जब कार या उससे तभी भी एक वो टोल आता था, टोल टैक्स होता है, वहाँ की पकौड़ियाँ बड़ी प्रसिद्ध है, पहाड़ी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी होती, चाय और पकौड़ी, तो वो खा के हम लोग मसूरी जाते थे। और मसूरी में भी बड़े एडवेंचरस थे, मेरे पापा भी एडवेंचरस थे, भाई भी, और मैं भी लगभग लड़का ही थी, तो हम लोग डगन हिल पैदल चलते थे, और जब हम कैमल्स बैक में भी रहते थे, मसूरी का एक तो माल रोड है और कैमल्स बैक, तो हम ऊपर चढ़ने के, मैं और मेरा भाई ना बहुत शैतान थे, ऊपर
0: अच्छा।
1: चढ़ने के नए नए रास्ते ढूंढते थे इधर से, मतलब एक्सप्लोरर्स थे हम, अपने को सोचते थे कि हम बहुत बड़े एक्सप्लोरर हैं।
0: लग नहीं रही कि आप शैतान थे, बहुत सीधी साधी लग रही है देखने में,
1: बहुत शैतान थे, मतलब हम लोग स्विमिंग पूल में पड़े रहते थे जब देहरादून में होते थे, और मतलब और क्या करते थे, और बच्चों को एक छत से जैसे पेड़ों में, दून स्कूल बहुत ही हरा भरा और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है वहां पर, क्योंकि एक बार वो FRI का भी पार्ट होता था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इतने खूबसूरत पेड़ हैं, तो हम लोग पेड़ों में चढ़े रहते थे बंदरों की तरह, मतलब ज्यादातर मतलब मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि हमारा बचपन इतना अच्छा बीता, और आजकल के बच्चों को देखती हूँ तो इतनी दया आती है कि वो बेचारे
0: मोबाइल
1: फोन
0: में
1: पे, मोबाइल पे, या अपने कमरे में या टीवी में, हम बिल्कुल पहाड़ पहाड़ चढ़ रहे हैं, नदियों में तैर रहे हैं,
0: क्या बात है,
1: बंदरों की तरह पेड़ों में आम, आजकल के बच्चों
0: जामुन
1: ने
0: खाना।
1: आप लोग को मतलब या तो
0: हाँ
1: ठेले पे फ्रूट्स दिखते हैं, या आप सुपर मार्केट या ऐसी जगह जाएं, हमने तो पेड़ से तोड़ के लीची, आम,
0: क्या बात
1: जामुन,
0: है,
1: अमरूद खाए हुए हैं,
0: क्या
1: उसका मजा ही कुछ और था।
0: बिल्कुल। तो हमें लगता है कि आपकी बातें हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो खास तौर से नई पीढ़ी कुछ तो सीखेगी, क्योंकि बंद कमरों में जो उन्हें आनंद मिलता है, बंद कमरों से बाहर निकले तो आज भी वो आनंद ले सकते हैं। आपने एक बात कही कि आप लड़कों की तरह रहती थी और बहुत बिंदास, बेबाकी से जीती थी। तो हमारी बहुत सारी सखियां गांव में रहती हैं, कस्बों में रहती हैं, उनके लिए कुछ कहिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उत्तराखंड से दिल्ली जैसे महानगर में आना, आपके लिए अपने
1: हाँ,
0: माता पिता को समझाना, तो कुछ संदेश दीजिए, बताइए।
1: मैं रंगमंच करती थी, लेकिन क्या था उस टाइम, मतलब 50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप थिएटर को, और आजकल तो इतने सारे लोगों के पास
0: साधन है, माध्यम
1: साधन
0: है।
1: भी है, और दूसरी इतनी सारी वो है, क्या कहते हैं कि ओपनिंग्स है, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे सिर्फ दो ही थे कि जो पढ़ने में होशियार होता था वो साइंस लेता था, और जो थोड़ा सा पैदल था दिमाग में वो आर्ट्स में जाता था। तो मैं होशियार थी तो मैं साइंस,
0: जी
1: और साइंस का ही ISC में वन ऑफ द टॉपर्स थी, मैंने BSc किया, MSc किया, लेकिन रंगमंच करती थी, तो जो मजा रंगमंच में आता था ना, वो साइंस का बड़ा ड्राई था, MSc का मतलब 9 से 5 बजे क्लास और लेबोरेटरी में, और जो शाम को अव्यावसायिक रंगमंच करती थी, शाम को जो थिएटर करती थी उसमें बड़ा मजा आता था। लेकिन आप सोचिए, उस टाइम तो उत्तराखंड भी नहीं बना था, वो यूपी था,
0: उत्तर प्रदेश था,
1: उत्तर
0: बिल्कुल।
1: प्रदेश था, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप रंगमंच में, मैं तो रंगमंच ही देखा, फिल्म तो खैर बहुत बुरा मानते थे, मुझे याद है कि हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल की, मिस्टर मार्टिन, ज्यादातर ब्रिटिशर्स ही थे डून स्कूल में, तो मिसेस मार्टिन मुझसे कहती थी, हिमानी यू शुड गो इन टू फिल्म, तो मैंने कहा नहीं, हमारा नॉर्थ में एक बड़ा वैसा आइडिया था, फिल्म बिल्कुल नहीं, मैं 50-55 साल पहले की बात कर रही
0: अलग ही
1: हूँ,
0: दुनिया थी,
1: हाँ, नहीं
0: बिल्कुल।
1: सोच ही नहीं सकते थे।
0: जी
1: तो खैर, मैं आपको बता रही थी कि थिएटर में रुचि थी, और मैं MSc कर रही थी और एक नाटक कर रही थी मैं, ब्रेक्ट का, थ्री पेनी ऑपेरा, इतने में NSD राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ स्नातक आए, कुछ छात्र आए, तब पता चला कि NSD भी ऐसी एक संस्था है हिंदुस्तान में, उस टाइम NSD थी, अब तो खैर
0: जी
1: काफी सारे स्कूल्स खुल गए, मध्य प्रदेश में खुल गया है, कलकत्ता में
0: पुणे में
1: है,
0: है, और
1: पुणे
0: पुणे
1: में
0: में
1: है, और लखनऊ में भी अब खुल
0: जी
1: गया है भारतेंदु नाट्य अकादमी, तो उस टाइम सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय था, तब पता चला ऐसी एक जगह है जो आपको थिएटर में ट्रेनिंग देती, तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली, तो मैंने तय किया मैं यहाँ जाना चाहती हूँ।
0: क्या बात
1: उसी
0: है।
1: दौरान मेरे, क्योंकि मैंने आपसे
0: हाँ
1: कहा था कि मैं पढ़ने में होशियार थी, तो मुझे MS अब्रॉड करने की स्कॉलरशिप मिली,
0: वाह वाह।
1: तो मैं वीजा का इंटरव्यू देने गई दिल्ली, साथ में चुपके से NSD का भी इंटरव्यू दी,
0: ओहो, किसी को
1: और
0: बताया नहीं आपके
1: किसी
0: घर
1: को
0: में?
1: नहीं बताया घर में, और जब लेटर आया NSD का सिलेक्शन का, तो मैंने घर में बम फोड़ दिया कि भाई मैं तो जा नहीं रही हूँ अमेरिका, मैं तो दिल्ली जा रही
0: हाँ, NSD
1: हूँ
0: करूंगी।
1: NSD में, तो उसमें मतलब पूरा छोटे शहरों में तो हर एक कोई एक दूसरे को जानता है, और मुझे तो खैर मैं सबकी लाडली थी, कि पढ़ने में होशियार थी, डिबेट करती थी, डांस करती थी, प्लेस करती थी, और अभी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, उस टाइम बहुत बड़ी बात थी अमेरिका पढ़ने जा रही है लड़की को स्कॉलरशिप मिली है, तो सब थी कि भटजी, भटजी की नौनी, नौनी पहाड़ी शब्द है लड़की का,
0: बिटिया।
1: बेटी
0: हाँ
1: का,
0: जी,
1: भटजी की नौनी बहुत
0: हाँ
1: होशियार है, अब जैसे लोगों को पता चला भटजी की नौनी तो वहां जा रही है, सबने कह रही है भटजी की नौनी तो पागल हो गई, बताओ इसको समझाओ, मेरे पापा के पास आए कि भटजी आप समझाओ, इसका लड़की का दिमाग खराब हो रहा है, इतना अच्छा इसका करियर, इसको स्कॉलरशिप मिली है, और मेरे सारे रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में, नाटक का पर्यायवाची था नौटंकी,
0: नौटंकी।
1: तो मुझे सब बोल रहे क्या तू नौटंकी करेगी, भांड, या तो भांड कहते थे,
0: बहुत बुरा
1: भांडगिरी
0: माना
1: करेगी,
0: जाता था,
1: बहुत
0: बिल्कुल।
1: बुरा, तो पापा ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा काफी ब्रॉड माइंडेड थे, वो खुद ही अपने आप में लेखक थे, डॉक्टर हरिहर भट्ट शैलेश, वो
0: जी
1: वहाँ के जाने माने साहित्यकार हैं उत्तराखंड के। तो पापा ने समझाने की कोशिश की कि बेटा तू अमेरिका हुआ हो, अगर तुम में वो रहा, मतलब बाद में आके कर लेना है, शौक है ना तुम्हारा। तो मैंने पापा से एक बात कही, पापा देखो हो सकता है 40 साल, अब तो मैं सोचती हूँ बड़ी हंसी आती कि मैंने ऐसी कि मैं 40 साल की हो जाऊंगी, पापा मेरे पास बहुत पैसा रहेगा, लेकिन मेरे दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा वो मैं पूरा नहीं कर पाई। तो मेरे पापा फिर कुछ नहीं बोले, मम्मी वगैरह सब मेरे रिश्तेदार सब खिलाफ, मेरे पापा खुद मुझे NSD लेकर गए,
0: क्या बात है।
1: वहाँ मेरा एडमिशन कराया और वहाँ से मेरा करियर चेंज हो गया। 3 साल की ट्रेनिंग, फिर वहाँ रेपेट्री ज्वाइन करके, रेपेट्री इसलिए ज्वाइन करी कि वापस तो आ नहीं सकती थी, कि अपने पैरों पे खुददारी,
0: जी
1: 250
0: जी
1: की स्कॉलरशिप से, मैंने कहा घर से एक पैसा नहीं मांगाऊं
0: क्या
1: क्योंकि
0: बात
1: सबके
0: है,
1: खिलाफ,
0: उसमें बहुत बड़ी
1: ढाई
0: बात
1: सौ
0: थी।
1: की स्कॉलरशिप मिलती थी, उसके बाद मैंने रेपेट्री ज्वाइन किया, वापस तो नहीं आ सकती थी कि कैसे करें, क्योंकि उस टाइम भी वो था उत्तर प्रदेश ऐसा माहौल नहीं था कि आप अपना आजीविका उससे चला सके थिएटर से। तो मैंने NSD रेपेट्री ज्वाइन किया, 600 रुपये पहले मिलते थे, उसके बाद 1,000, 2,000, 3,000 हाईएस्ट जो होता था ए ग्रेड
0: उसमें
1: आर्टिस्ट,
0: बहुत बड़ी रकम थी।
1: बहुत बड़ी रकम
0: बहुत
1: थी।
0: बड़ी
1: तो
0: रकम
1: उसी
0: थी।
1: में गुजारा करती थी और थिएटर करती थी। तो ऐसे में ये मेरा सफर रहा दिल्ली से,
0: जी,
1: मतलब देहरादून से
0: देहरादून
1: दिल्ली
0: से
1: तक।
0: दिल्ली तक का, और बहुत ही प्रेरणादायी सफर रहा। हमें लगता है हमारी जितनी सखियां सुन रही हैं, जब कई कई बार वो उदास होती हैं और वो परेशान हो जाती हैं, तो उस समय उन्हें इस बात से इंस्पायर होना चाहिए। अब हिमानी जी, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: गाना

0: कोई बात नहीं
1: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और ये है कार्यक्रम सखी सहेली, और हमारे सामने हमारी विशेष सखी विशेष अतिथि हिमानी शिवपुरी जी बैठी हैं और बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं कि गाने की बारी ही नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर हम गाना सुनवाते हैं जिसमें हिमानी जी खुद अभिनय किया है। हिमानी जी ने वैसे उनकी फिल्मों की फेहरिस्त गिनाने चलेंगे तो वक्त कम पड़ेगा, तो पहले हम गाना सुन लेते हैं ये फिल्म हम आपके हैं कौन, और हमारे बहुत सारे ने भी कहा कि हम आपके हैं कौन में हिमानी जी बड़ी अच्छी लग रही हैं। सुनते हैं ये गाना समधन वाला।

0: हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, और चूंकि हिमानी जी की बातें आज बड़ी दिलचस्प लग रही हैं और हिमानी जी आई हैं तो गाने तो हम आपको रोज सुनवाते ही रहते हैं, तो गानों के अंश हम सुनवाते चलेंगे, हिमानी जी से बातें करते रहेंगे और आपकी टिप्पणियां भी बीच बीच में हम शामिल करते रहेंगे, आपके सवाल भी। एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली शब्द सुनते ही एक सुकोमल भावना मन को छूने लगती है। मुझे याद है जब ये कार्यक्रम नया था और मेरे शहर में विविध भारती बहुत साफ नहीं सुनाई देता था। मेरी किचन एक खुले एरिया में थी जहां की खुली खिड़की से सटाने पर थोड़ी साफ आवाज आती थी। मैं 2 बजे किचन से फुर्सत होकर, जो मेरे रेस्ट का टाइम होता था, मैं फिर रेडियो लेकर किचन में पहुंच जाती और वहां प्लेटफॉर्म पर बैठकर सखी सहेली सुनती थी। मेरी सासू माँ मुझे किचन के प्लेटफॉर्म पर इस तरह बैठा देखकर रेडियो सुनते हुए देखती तो कहती, ये अजीब पागलपन है तुमको रेडियो सुनने का। पर आज 20 साल हो गए, मैं आज भी सखी सहेली उतनी ही तन्मयता से सुनती हूँ। हिमानी जी आज इस कार्यक्रम में मंच पर आई है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वे अपनी आंखों से जीवंत अभिनय करती हैं और इसी तरह वे अपने जीवन में सक्रिय रहे। हिमानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, हम बीच बीच में शामिल करते रहेंगे। तो हिमानी जी, अब हम एक बार फिर आपकी जर्नी की ओर चलते हैं। आपने बहुत सारी बातें एनएसडी की साझा की, अपने बचपन की साझा की। हमें बताइए कि आपका जो बचपन का गाँव है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड का जो भटवाड़ी गाँव है,
1: भटवाड़ी, हाँ,
0: वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसके विकास के लिए उस गांव को आपने गोद ले लिया है, एक बड़ी बात है ये, इसके बारे में बताइए ना, क्या है कहानी है?
1: नहीं, मैं आपको बताती हूँ ममता जी, शुरू से ही मेरे मन में ये था, क्योंकि मैं लगभग आप कह सकते हैं पहली महिला थी जिसने
0: अपने गांव से निकली,
1: जिसने मतलब उत्तराखंड से जो निकली फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर रंगमंच में पदार्पण किया। आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, लेकिन उस वक्त मैं पहली थी
0: जी।
1: लेकिन मेरे मन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उस टाइम कारण जी, बीवी कारण जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहती, तो मेरा ये उत्तर था कि मैं अपने क्षेत्र में जाके कुछ काम करना चाहती हूँ
0: जी।
1: तो ये मैं क्या, जब एनएसडी में पढ़ती भी थी, स्टूडेंट थी, तभी भी जब छुट्टियां होती थी तो मैं आती थी, और मैं जो वहाँ के हमारे जो थिएटर के एंथुजियास्टिक लोग थे, काफ़ी सारी संस्थाएं थी, उनके साथ वर्कशॉप लेती थी, जो मैंने सीखा था वो उनको सिखाती थी, और आके नाटक भी करती थी देहरादून, सहारनपुर, बच्चों के साथ थिएटर वर्कशॉप करती थी। मैं हमेशा कुछ काम करती रहती हूँ, मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं अपनी क्षेत्र के लिए कुछ करूं। अभी फिलहाल जब मैं

0: तीन चार साल पहले एक कॉन्क्लेव हुआ था जो प्रवासी उनको कहते हैं जो बाहर रहते हैं उत्तराखंड से, तो उनसे कि आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे उत्तराखंड जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है, मतलब गांव के गांव ऐसे खाली हो गए हैं,
1: निकल जाते हैं लोग शहरों की ओर,
0: क्या करें, और उनको लोगों को आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आजीविका के साधन ही नहीं है, और पहाड़ में रहना बड़ा कठिन जीवन है। अभी भी मैं 3 बार देहरादून गई लेकिन अपने गांव नहीं जा पाई क्योंकि सड़क ही खराब हो चुकी थी। अब सड़क नहीं है तो कैसे जाएंगे, और गांव में सिर्फ मैं अपने जब गांव में गई जो मैंने गोद लिया तो वहां सिर्फ बूढ़े लोग ही ज्यादातर रहते हैं, महिलाएं हैं 30-35 बूढ़ी महिलाएं और 3-4 मतलब आई थिंक 10-15 वृद्ध पुरुष थे, क्योंकि जितने भी जो कमाने वाले जो यंग लोग हैं वो चले गए हैं पैसा कमाने के लिए, और जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की तब वो आते हैं महीने में एक बार गर्मी की छुट्टियों में, तो गांव एकदम खाली, घर खाली पड़े हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं बचपन में जब जाती थी तो खेतियां होती थी, खेत खाली पड़े हुए, कोई है नहीं खेती करने के लिए, और वो है, तो मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए अपने गाँव के लिए, तो मैंने इसलिए गांव अडॉप्ट किया। ये एक सपना है, बहुत जाइगेंटिक टास्क है,
1: बहुत ही ये बड़ा सपना देखा है मानी जी। यहां पर हम आपको रोक रहे हैं और ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती और आज है विशेष सखी सहेली 2 जून सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ और हमने आमंत्रित किया है जानी मानी अदाकारा हिमानी शिवपुरी जी को। हिमानी जी, आप बता रही थी अपने उस गांव के बारे में जो अडॉप्ट किया है आपने, गोद हाँ। लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, तो वो बताइए फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो मैं फिर काफी साल के बाद जब गांव में गई, इस मतलब घूमने के इरादे से नहीं, ये कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैंने सब औरतों से मुलाकात की कि क्या है, तो मैंने उनसे पूछा भाई खेत क्यों खाली है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो एक महिला ने मुझे बताया कि दीदी जी, दीदी बुआ जी ऐसे ही बोलते हैं गांव में ना, कि मतलब मेरे को बुखार हुआ, तो मुझे सीधा देहरादून, 5-6 घंटे लगते हैं देहरादून, पहाड़ी रास्ता है, कभी सड़क सही रहती है नहीं रहती है। आप लोगों ने कुछ इंटरनेट में और उसमें सोशल मीडिया में फोटोज भी देखे होंगे, कोई बीमार पड़ रहा है तो चारपाई में लेकर जा रहे हैं, बल्कि मैंने अभी एक सीरीज भी करी है, वेब सीरीज, उसमें कि चारपाई में जा रहे हैं क्योंकि साधन ही नहीं है कुछ, तो कि मुझे देहरादून आना पड़ा बुखार आने के चक्कर में, तो मुझे बड़ा
0: दुख हुआ होगा फिर आपको।
1: और जान, मैंने कहा खेत क्यों खाली पड़े, और मुझे बचपन की यादें में माल्टे बहुत हुआ करते थे, अब एक तो सीजन चेंज भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब आम के आम लग रहा है, बताओ पहाड़ों में आम लगते ही नहीं थे कभी, पहाड़ में आम लग रहे हैं, माल्टे गायब हो गए, और श्रोते ज्यादातर, हमारे गांव का श्रोता तो शुक्र है चल रहा है, लेकिन काफी सारे श्रोते भी सूख गए हैं, तो और बंदर का है, भालू का, ये सब का मिनेस है, वो सब ये लोग कहते हैं हम कुछ भी उगाते हैं, दीदी जी बुआ जी कुछ भी उगाते हैं सब
0: खा जाते हैं,
1: खा जाते हैं, भालू आते हैं, बंदर आते हैं उखाड़ के, लंगूर आते हैं, चूहे होते हैं, तो क्या हो करे। तो फिर मैंने लोगों से पूछा जो वहाँ पे कृषि जो करते हैं, तो कहते हैं कि इनको बीज दे सकते हैं आप, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गई, तो मैंने ये मुहैया गांव के लोगों को दिलवाए, हल्दी और अदरक, वो उन्होंने उगाया, अच्छी फसल हुई, और एक मैंने कोशिश की कि एम्बुलेंस भी जाए किसी तरह से, तो ताकि बड़े खुश हुए, मतलब उनको लगा कि आसपास के गांव के लोग भी आ गए, कोई अपना बीपी टेस्ट करा रहा है, कोई शुगर टेस्ट करा रहा है, तो धीरे धीरे, और मेरे को यही कहना है ममता जी कि बहुत ये मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया है, और मैं
0: सच में
1: अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरी मदद करें, ताकि पहाड़ के जो गांव हैं जहाँ पे पलायन की इतनी बड़ी समस्या है वो फिर से बस जाए, वहाँ पे आजीविका के साधन हो। और एक मेरा मैंने बात की है सरकार से, वहाँ पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, जिसमें मेरे पापा भी कभी पढ़ते होते, उसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं, और बल्कि जो स्कूल के टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनके बच्चे खुद वहां नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वहां वो साधन ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश मीडियम के अलावा कुछ करता ही नहीं है, वो संस्कृत महाविद्यालय है। तो मेरा एक सपना है कि उस स्कूल को मैं थोड़ा सा बेहतर करूं, जिसमें एक सेंटर भी बने औरतें, क्योंकि औरतें ही बची हैं कि वो कढ़ाई बुनाई और कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे उनको आजीविका मिले, और जैसे कुछ गाँव में हो भी रहा है पहाड़ों में, कुछ औरतें काम कर रही है, तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोग स्वावलंबी बने, उनको नीचे ना उतरना पड़े, पलायन ना करना पड़े, वो घर बैठ के कमा सके, तो ऐसे ये एक लंबा सा सपना है। और
0: ये सचमुच बहुत बड़ा सपना है, और हम विविध भारती परिवार की ओर से इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें, ताकि इतनी सारी लड़कियां खास तौर से जुड़ पाएं, और क्योंकि पहाड़ों पर लड़कियों का जीवन ज्यादा कठिन है, हमने तो ये भी
1: कठिन है सारा काम, लड़कियां और औरतें ही करती हैं, घास काटने से लेके जानवर चुगाने से लेके
0: सब कुछ, हमने तो ये भी सुना है कि वहां पर पुरुष वर्ग, बहुत सारे पुरुष वर्ग गांव छोड़कर शहरों में आजीविका के लिए चले जाते हैं, और महिलाएं अकेली रह जाती हैं घरों में, और जानवर जो आते हैं, भालू बंदर जिसका जिक्र भी किया, शेर तक आते हैं, तो अकेले फाइट करती हैं, लड़ाई करती हैं उनको अपने बचाव के लिए, तो ये पहाड़ों की महिलाओं को हम सलाम करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सलाम तो हम आपको भी कर रहे हैं कि
1: पहाड़ी महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं,
0: जी जी,
1: और जितने भी मैं आपको बताऊं आंदोलन पहाड़ में चले हैं, उनमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का रहा है, चाहे वो चिपको आंदोलन जो हमारे भगुना जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चलाया, शराबबंदी आंदोलन, महिलाओं ने ही उसका आगे बढ़कर सारे पेड़ों से कौन चिपकी थी, महिलाएं चिपकी थी।
0: क्या बात है सचमुच। तो हम
1: हाँ
0: इसी बात पर आज आपके हाथों एक पौधारोपण भी करेंगे अभी इस
1: जरूर
0: प्रोग्राम के बाद, 4 बजे जब हमारा प्रोग्राम सजीव प्रसारण खत्म होगा यहाँ विविध भारती के परिसर में, और उस पौधे का नाम हम सखी सहेली हिमानी पुरी रखेंगे। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी।
1: ये मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है और धन्यवाद। और पेड़ लगाना ये आपने मुझे कहा, मैं बहुत
0: जी
1: खुश हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अगर एक एक पेड़ लगाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये जो
0: जी
1: एनवायरनमेंट, इसके इसमें सुधार होने का, क्योंकि हम ये सोच रहे कि सरकार सरकार ही क्यों करे, सरकार को भी करना चाहिए, जरूर हम टैक्स दे रहे हैं
0: जी,
1: लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है निजी स्तर पर कि हम जो आगे पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए रहने लायक तो रहे।
0: बाप दादे ने जो पेड़ लगाए हैं आम
1: हाँ,
0: जामुन के, बस वही हम खा रहे
1: वही
0: हैं।
1: हम खा रहे हैं, वो भी कट चुके हैं।
0: जी बिल्कुल। तो आज आपने बहुत अच्छा संदेश और बड़ा संदेश दिया है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, हालांकि हमारे लिए आपकी फिल्मों से गाना चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, खामोशी द म्यूजिकल, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन का गाना सुनवा ही दिया, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी, तो यहाँ पर हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना सुनवाते हैं।
1: जी जरूर।
0: बस इससे पर्दे पर हिमानी जी को देखिए और महसूस कीजिए, वैसे तो फेसबुक लाइव में आप देख ही रहे उन्हें।

0: विविध भारती से ये है विशेष सखी सहेली कार्यक्रम और हिमानी जी की अभिनय यात्रा बहुत बड़ी और बहुत समृद्ध है और मुकम्मल है। बहुत सारे श्रोता भी सवाल पूछ रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं हिमानी जी को, हमराही की देवकी भौजाई बहुत मशहूर हुई थी देवकी भौजाई से, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में नाम रखने लगे थे भाभी को भौजाई, देवकी भौजाई, है ना, याद है आपको?
1: जी जी बिल्कुल।
0: और ससुराल सिमर का रज्जो द्विवेदी, मिसेज कौशिक की पांच बहुएं मिसेज लाजवंती और राधा जी, सुलक्षणा, हसरते की सुलक्षणा, जाने कितने किरदार आपने निभाए हैं। तो हमारे श्रोताओं की ओर से सवाल है कि आपको कौन सा वाला किरदार ज्यादा अच्छा लगता है?
1: देखिए, ये तो बहुत ही कठिन सवाल है क्योंकि ये ऐसा है कि क्योंकि मैंने तो 250 से ऊपर फिल्में करी हैं, तो मैं गांधारी का ही एग्जांपल दूंगी क्योंकि आजकल तो पहले तो 10-12 बच्चे होते थे, फिर आजकल तो एक एक भी होता है मुश्किल से दो। तो गांधारी से कोई पूछता कि कौन सा तुम्हें सबसे प्रिय है, ऐसे मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो सब मुझे प्यारे हैं। क्योंकि जैसे माँ को अपने बच्चे, क्योंकि हमारे क्रिएशन होता है, लेकिन जैसे कि आपने अभी जिक्र किया देवकी भौजाई, इसलिए कुछ खास, कुछ किरदार, सारे किरदार बहुत प्यारे हैं, लेकिन कुछ किरदार जैसे कि देवकी भौजाई क्योंकि वो पहला किरदार था। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं जब दिल्ली में थिएटर करती थी ना, तो एनएसडी रेपर्टरी वो गवर्नमेंट जॉब था ना, तो वो नॉर्मल टाइमिंग वो ही होता था 9 to 5, और जब शोज होते थे हमारे प्लेस तब हम शाम को प्ले करके लेट लौटते थे, नहीं तो चार्टर्ड बसेस। अब गरीब जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते थिएटर, पैसा नहीं होता, तो जमुना पार रहते थे मयूर विहार में। आजकल तो मयूर विहार एशियाड के बाद बड़ा पॉश कॉलोनी बन गई है, तो उस टाइम वो थी स्ट्रगलर्स की। तो मैं चार्टर्ड बस से जाके मंडी हाउस आती थी और शाम को जैसे होता था ऑफिस वाले लोग जाते थे, तो जैसे बैठे रहते हैं, अब रोज देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे महिला आ रही है, तो ऐसी जैसे बात हो रही कि आप क्या करती हैं, तो मैं बोलती थी थिएटर करती हूँ। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या करते हैं?
0: देखो,
1: इमेजिनेंट की आदमी की औरत रोज सुबह कुछ तो करती होगी। लेकिन जब मैंने हमराही किया देवकी भौजाई का, तब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ, कि पहले से ही लोग बोलने लगे अरे देवकी भौजाई, क्योंकि हम कैरेक्टर आर्टिस्ट ना, हम लोग कैरेक्टर के नाम से हमको जानने लगते हैं। और जो लोग उस टाइम देखते थे, आज भी कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग, आजकल के यंग लोग ने तो नहीं देखा दूरदर्शन के

0: टाइम पे, पर उन्हें आज भी देवकी भौजाई याद है। और वो मैं एनएसडी से फ्रेश निकली थी तो इतनी मेहनत से वो तैयार किया था कि वो कैसे बात करेगी, कैसे। मैंने थोड़ा सा राजस्थानी पुट डाला था, मुझे तो नहीं पता था, पर मेरे हस्बैंड जयपुर रह चुके थे तो रोज मैं उनको परेशान करती थी अपनी स्क्रिप्ट ले जाके कि इसमें राजस्थानी पुट डालो, क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी कम थी। तो मैंने डायरेक्टर के साथ बात करके, प्रोड्यूसर के साथ, कि जो पढ़े लिखे कम होते तो उनकी जो अपनी रीजनल भाषा है वो आ जाती है, और वो किस तरह से आंखें, खूब मेहनत से तैयार किया। वैसे तो जो भी मैंने रोल किया पूरी मेहनत से किया, लेकिन उससे मुझे पहली बार ख्याति मिली थी ऐसी, अगर कहें तो हम आपके कौन, क्योंकि वो मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी, तो वो भी मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैंने कहा सारे
1: कुछ
0: दिल
1: कुछ
0: वाले
1: होता
0: की
1: है और
0: दिल
1: दिल
0: वा,
1: वाले
0: हाँ कुछ
1: दुल्हनिया
0: कुछ
1: ले
0: होता है कि रिफत
1: जाएंगे।
0: भी, और दिलवाले दुल्हनिया की भी रज्जो बुआ बहुत फेमस है, हीरो नंबर वन की बुआ, और परदेश की बुआ, और बंधन, बहुत सारे किरदार। और
1: उमराव
0: आजकल
1: जान में भी आपने काम
0: उमराव
1: किया,
0: जान में भी
1: उसमें भी
0: काम किया,
1: खास
0: और ये मेरा जो धारावाहिक है, आपने
1: विवाह।
0: सब बोला, वो सुलक्षणा उस टाइम जो मैंने रोल किया था हसरते में, जी तभी आया था, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था उस
1: जी
0: टाइम
1: जी
0: का सुलक्षणा, और ससुराल सिमर का की जो था। और इन दिनों मेरा एक धारावाहिक चला 7 साल, हप्पू की उल्टन पलटन,
1: जी जी
0: उसमें
1: जी वो
0: मेरा
1: बहुत मशहूर
0: किरदार
1: हुआ।
0: कटोरी अम्मा, वो भी बहुत लोगों ने आज तक उसको सराहा है, पसंद किया है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में कि मैंने अलग अलग किस्म के रोल किए, चाहे वो फिल्म थिएटर में तो खैर करे ही हैं, लेकिन फिल्मों में बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच्योर हैं तो आप माँ के रोल करनी, और एक तरह के रोल होते थे। लेकिन मैं बड़ी इस मामले में लकी हूँ कि मैंने माँ का रोल भी किया, तो बंधन में जो मेरी माँ है, और मुझे कुछ कहना है, या मैं प्रेम की दीवानी हूँ, या बीवी नंबर वन की माँ, ये बिल्कुल अलग है। ऐसी बुआ का, आई स्टार्टेड विद बुआ या चाची जान, तो बुआ का कैरेक्टर हीरो नंबर वन में बुआ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम परदेश की बुआ या अपने DDLJ की बुआ। तो इस मामले में मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी भी किया है मैंने, नेगेटिव भी किया है, सीरियस भी किया है।
1: जी, और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें कि श्याम बेनेगल की फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा,
0: सूरज के
1: जो
0: सातवां घोड़ा,
1: कि
0: मम्मो
1: कला मम्मो
0: मम्मो, हाँ
1: कला फिल्म है, इसमें आपने बहुत सशक्त अभिनय किया है, और हमारे श्रोता भी कुछ इसी तरह की बात लिख रहे हैं। और उसके बाद ये कमर्शियल फिल्में, तो वहाँ एक तरफ कला फिल्म, एक तरफ ये कमर्शियल फिल्में, तो कैसा आप कैसे अपने आप को ढाल लेती हैं? हमारे श्रोताओं की ओर से ये सवाल है कि आप जो विविध किरदार निभाती हैं, तो रोने का, हंसने का, फिर नेगेटिव किरदार, ये सब कैसे एक साथ कर लेती हैं, ये बताइए। राज की बात है ये
0: कोई राज की बात नहीं,
1: तो।
0: ये क्या कहते हैं, हम किरदार करते हैं तो क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं ना, उस किरदार में घुस जाते हैं, उसको जीवंत करते हैं। और हर किरदार, जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे आप इतने अलग अलग एक साथ कैसे, क्या हम जिंदगी में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी हमारे मन में गुस्सा भी होता है तो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो ये सब हम में है। और हम ये जिंदगी इतनी बड़ी, मतलब एक थिएटर ही है,
1: जी
0: शेक्सपियर ने भी
1: जी
0: कहा है कि ऑल
1: एक
0: वर्ल्ड
1: रंग
0: इज अ स्टेज,
1: जी रंगमंच है ये
0: रंगमंच
1: दुनिया।
0: है
1: जी
0: जिंदगी। तो आप देखिए सारे किरदार आपको आप आसपास मिलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके वही कर देते हैं। ये
1: बिल्कुल
0: तो जिंदगी सिखाती है।
1: जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक गाना सुने, या
0: जरूर
1: फिर श्रोताओं की कुछ टिप्पणियाँ भी आ रही हैं, हालांकि हमारे श्रोता भी आज कुछ ज़्यादा उत्साही हैं और लगातार बधाइयाँ दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक कलाकार के रूप में सफलता और एक इंसान के रूप में संतोष, इन दोनों में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं? हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है।
0: दोनों तराजू अगर एक साथ बैलेंस हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर दोनों में से चॉइस करने की बात आएगी तो मुझे लगता है इंसानियत ज्यादा बड़ी है, वो सब ज्यादा बड़ी चीज है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक गाना सुनवाते हैं, जिसे जिसकी फरमाइश आपने ही की है, गाइड फिल्म का गाना,
0: जी
1: एक अंश सुनते हैं।

0: गाइड फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया हिमानी जी की चॉइस पर। और हिमानी जी बताइए कि आज की युवा पीढ़ी जो खासकर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अभिनय के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने तो भाई NSD किया और बिल्कुल छलांग लगा दी आपने, लेकिन उन लड़कियों के लिए कहिए जो गाँव में, छोटे शहरों में, कस्बों में रहती हैं, क्या तैयारी करें, कैसे आए?
1: एक तो ये कि मैं कहना चाहूँगी कि जो ये अभिनय की दुनिया है ये इतनी ग्लैमरस नहीं जितनी लगती है। ग्लैमर है ज़रूर, लेकिन आपको प्रिपेयर करना होगा कि इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए और सिंसेरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, जो कि किसी भी प्रोफेशन में करने के लिए होता है, लेकिन इसमें खासकर बहुत। और टाइमिंग्स, घंटे बहुत है। अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो हीरोइन है टॉप पे पहुंच के, दीपिका पादुकोण है, 8 घंटे या 6 घंटे के लिए लड़ रही हैं, उनको उनको काम कम मिल रहा है, या मतलब जो लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं, काफ़ी सारे लंबे आवर्स होते हैं, और खासकर जो नए लोग आते हैं तो उनके तो बहुत लंबे आवर्स होते हैं, संघर्ष बहुत होता है। तो अगर आप में संघर्ष करने का मादा है,
0: लियाकत है,
1: हाँ,
0: और
1: सिंसेरिटी है, सिर्फ ग्लैमर की वजह से मत आइए, क्योंकि ये आसान प्रोफेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आप में अदम्य प्रेम है अभिनय करने का, या आजकल तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, अभिनय कर सकती हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर सकती हैं, कैमरामैन, आजकल औरतें कैमरामैन भी हो रही हैं, साउंड इंजीनियर्स, इतनी सारी विधाएं हैं। तो अगर आपकी एम्बिशन है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो ज़रूर आइए
0: जी।
1: लेकिन अगर आप इजी वे चाहती हैं कि मतलब रातों रात आप स्टार बन जाए, तो सॉरी, फिर तो आपको मतलब कहना तो नहीं चाहिए, या तो फिर कपूर खानदान से होना पड़ेगा या शाहरुख खान के खान होना पड़ेगा
0: जी, बिल्कुल।
1: आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर आप में टैलेंट है और सिंसेरिटी है और आप मेहनत करने को तैयार है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आउटसाइडर्स भी आए हैं, सक्सीड हुए हैं।
0: बिल्कुल। और आपने खुद नाम लिया शाहरुख खान, तो कहीं आप
1: शाहरुख खान भी आउटसाइडर था, अक्षय कुमार जी आउटसाइडर थे,
0: बहुत संघर्ष था इनके जीवन में भी, और कहीं आप सलमान खान की माँ बनती हैं, कहीं कहीं इन बड़े जो हीरो हीरोइन हीरो हैं इनकी भाभी बनती हैं, चाची बनती हैं, इतने बड़े बड़े रोल आपने निभाए हैं। अब हम छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहते हैं, बताइए हमें कि एक महिला के रूप में आपको किस तरह के संघर्ष करने पड़े, किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी?
1: देख, महिला के रूप में मुझे लगता है कोई भी महिला जो घर से बाहर निकलती है तो उसको मर्दों, पुरुषों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कि उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं है, उसमें टैलेंट है, उसमें अकल है, चाहे आप चाहे आपकी फील्ड में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे टीचिंग में हो, तो महिला को डबल प्रूव करना चाहिए। और लोग तो ये समझते हैं कि मतलब मैं जब क्लास में मुझे अच्छे नंबर आते थे, अच्छा बिकॉज यू आर, लोग ये सोचते हैं अच्छा बिकॉज यू आर हिमानी भट्ट, मैं भट्ट थी, मतलब आप लड़की हैं, आप देखने में खूबसूरत है, तो इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिल गए। क्यों, हमारी मेहनत कहाँ गई, हमने क्या पढ़ाई नहीं करी, या हम जो रोल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमको डबली प्रूफ करना चाहिए, करना पड़ता है। और महिला के साथ और साथ में जिम्मेदारी भी आती है कि महिला कि अगर शादी होती है, शादी तो होगी और उसके बच्चे होते हैं, तो महिला माँ बनती है, तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी संभालना पड़ता है, तो एक ये सब
0: दोहरी तेरी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। और एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है बताओ हिमानी शिवपुरी?
1: स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो स्त्री है, शक्ति का रूप है।
0: बिल्कुल। और अपनी शक्ति को तलाशे, और आपकी इस लंबी
1: शक्ति
0: यात्रा
1: है, और किसी भी चीज का सामना कर सकती है, वो सब औरतों ने प्रूव किया है
0: जी। अब गाना सुनवाए एक,
1: जरूर।
0: कौन सा गाना? खामोशी द म्यूजिकल
1: जी।

0: हिमानी जी, बहुत सारे श्रोता कमेंट भेज रहे हैं, तो हम सबके शामिल तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो मिले जुले कमेंट हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भट्ट जी तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में भी थे, अब पता नहीं वो आपके परिवार से थे या कोई और थे, और आपने जिक्र भी किया अपने पिताजी का, तो शायद इसलिए उन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी सादगी, मधुर व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने भारतीय सिनेमा को अनेक यादगार किरदार दिए हैं। विविध भारती पर आपको सुनना अत्यंत सुखद लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने चार चांद लगा दिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हिमानी जी के लिए एक वाक्य याद आ रहा है, मेरी मम्मी बिल्कुल हिमानी जी जैसी ही लगती हैं, तो उनका नाम भी हम लोगों ने हिमानी मम्मी, एक मामी, हिमानी मामी रखा है। तो हिमानी जी को देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए दी हैं। कुछ श्रोताओं ने पूछा है कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्रोताओं का करना चाहती हूँ, और मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, 40 साल से ऊपर हो गया है, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोग का प्यार जो मुझे मिलता है, आज रेडियो के द्वारा मिल रहा है, मैं सड़क पे चलती हूँ, लोग आते हैं और मिलते हैं और मेरी पुराने किरदारों की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं जिन्होंने थिएटर, तो ये आपका प्यार है, प्रोत्साहन है, इसी की वजह से मैं आज ये काम कर रही हूँ।
0: हिमानी जी, आपकी अभिनय यात्रा और आपकी निजी यात्रा इतनी दिलचस्प है, हमें तो लग रहा है कि अब ये बातचीत खत्म ना करें, तो बस अब ये आपसे हम वादा करते हैं, और आप वादा कीजिए कि आप विविध भारती के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आएंगी।
1: जरूर हम जरूर आऊंगी।
0: अब आपने सबके सामने वादा कर दिया, हाँ। तो हमारा वादा पक्का रहा। अब बिल्कुल वक्त नहीं, अब चलने से पहले हम बता दें कि आज के फेसबुक लाइव की कमान जुबैर खान और तनिष्का नाइक ने संभाली, तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक का था, और हमारे उद्घोषक साथी मंदाकिनी जोशी, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान, और हमारी बहुत सारी सखियां सहेलियां जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, कार्यक्रम प्रमुख श्री संतोष जाधव की प्रेरणा और सहयोग से यह प्रसारण सफल हुआ, और हेड ऑफ द इंजीनियरिंग राजेश बेलदार सर, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी सोपान तायडे जी, और साथ में किशोर, किशन, एकता और हमारे विविध भारती की पूरी टीम, हमारी जो सखियां हैं इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आया करती हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपसे अभी थोड़ी देर बाद मुखातिब होंगी, तो विविध भारती के फेसबुक पेज को आप का दामन थामे रखिए। फिलहाल अब हम इजाजत ले रहे हैं, आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माय गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने

0: एक इंडस्ट्री है, वो है क्लासिकल डांस का, जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ, और बहुत सारे इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना। और जब बैलेज में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास 20-20 पेज का, 30-30 पेज का नोटेशन आता था बैले का, तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में, और दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब।
1: बिल्कुल
0: और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में, जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, यूपी की और गढ़वाल की, वहाँ पे बहुत सारे लद्दाख से लोग आते हैं,
1: अच्छा
0: आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। वहाँ हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की हैं वहाँ पे।
1: वाह वाह
0: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरणजी जहूजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी
1: जी
0: और जसपाल मुनि जी, हरि ओम जी और पंडित ज्वाला प्रसाद जी, और बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत आहूजा जी भी, उन पूरा मतलब पंजाब के जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के,
1: जी
0: और जौहर बट्टल जी, बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं, और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा, मैं माफी चाहता हूँ। तो पिताजी का भी अपना एक अलग
1: दर्जा रहा
0: वर्चस्व रहा है दिल्ली
1: जी
0: में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था। आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान, और इतने आर्टिस्ट की, उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है।
1: वाह
0: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया, और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का।
1: अच्छा
0: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के, मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
1: जी जी
0: वो भी बांसुरी वादक हैं और म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं।
1: जी जी
0: सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूजिक में और डिवोशनल म्यूजिक में, और कुछ कुछ गजल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज किया। तो ये इस तरीके का रहा सफर
1: ये सफर इस तरह से चलता
0: जी
1: रहा।
0: दिल्ली में।
1: हमारी बातचीत के इस सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं, तो
0: जरूर
1: आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
1: अच्छा देखिए, आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूं,
0: जी
1: और वो है तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे। ये आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं,
0: जी जी जी
1: है ना?
0: जी जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूं ना,
1: जी
0: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है मेरे
1: क्या बात
0: पिताजी के
1: है,
0: साथ।
1: वाह
0: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पर रियाज कर रहा हूं। आप
1: वाह
0: देख रहे होंगे इस पे ये निशान,
1: जी जी जी जी
0: और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं।
1: हाँ, उंगलियों
0: तो
1: के,
0: ये बहुत पुरानी बांसुरी मेरी।
1: वाह
0: और ये जो थ्रेडिंग है, ये
1: जी
0: देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है।
1: अच्छा
0: तो वैकुंठ वेणु जो है, लॉकडाउन के समय पे पिताजी, मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को, और अपने संगीत को और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज किया, वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं,
1: बिल्कुल
0: जहां से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए और आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहां से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूं, तो मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ,
1: जी
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना है मुझे।
1: क्या बात है,
0: इसके लिए उसका

0: रखा वैकुंठ
1: वेणु
0: और वेणु, क्योंकि मानसरी को वेणु भी बोलते हैं
1: जी जी,
0: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोवर का, तो हमारे हमने यूट्यूब चैनल रिलीज किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जलोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों
1: जी,
0: और श्रेया घोषाल जी से लेके सलीम सुलेमान जी से लेके विशाल शेखर जी से लेके सब सब सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया
1: वाह,
0: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की
1: जी।
0: और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शहनाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है,
1: बिल्कुल
0: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
1: सबको मिले,
0: ये आप चाहेंगे, क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है,
1: बिल्कुल,
0: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए,
1: बिल्कुल।
0: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सकें, अब उसमें पंडित प्रवीण गोरखिंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया, पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया
1: जी,
0: और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया
1: जी,
0: एंड नवीन अन्ना जी ने किया, ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं
1: जी जी,
0: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं, और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे,
1: अच्छा
0: हाँ रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त किया था, और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं
1: जी जी,
0: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं, वो एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं
1: जी जी,
0: और फिर और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफी देवोप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे, फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें,
1: वाह,
0: उन्होंने राग मालकोस बजाया था
1: जी,
0: मेरे भाई ने राग हंसुधनी बजाया था और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे, तो ये हमारा वैकुंठ वेणु का बनाया हुआ बांसुरी है,
1: वाह वाह वाह,
0: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूं।
1: जी जी जी, क्या बात है।
0: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
1: जी,
0: जो मैं आपको सुनाऊंगा,
1: जरूर
0: उनके बारे में भी बताऊंगा
1: जी।

0: दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है, ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले शहर की तरफ आए?
1: जी, मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए
0: जी,
1: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे। दिल्ली के जो नामचिन काम करने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था, तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे। तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले। वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते हैं। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप ज़रूर भेजिए। वहाँ से फिर कड़ी बनी मुंबई की आने की।
0: अच्छा, हाँ, तो इस तरह से
1: एक मुंबई आना हुआ
0: जसपाल मोनी जी।
1: हाँ, इतना आसान जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं
0: जी, जी।
1: बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता
0: जी।
1: बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फॉर फ्रॉम फैमिली साइड। बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो
0: त्याग करना पड़ता,
1: त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
0: जी
1: उस एज में मेरे लिए।
0: बिल्कुल। एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
1: बिल्कुल।
0: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन किन किन फिल्मों में जिनका आप जिक्र करना चाहें आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए।
1: जी, वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया है
0: जी,
1: तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
0: जी जी
1: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो,
0: ओ माय गॉड के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
1: जी जी जी,
0: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी पीसेस हैं
1: जी,
0: जी जी। और
1: ऊंचाई एक पिक्चर आई थी, ऊंचाई
0: जी जी, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की, अमिताभ बच्चन थे।
1: एक मिली पिक्चर आई थी
0: जी,
1: केदारनाथ, नजरअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
0: बाबा
1: मुन्ना भाई एमबीबीएस रिटर्न है,
0: क्या बात है,
1: दबंग 3 है, दृश्यम है,
0: ये तो बहुत लंबी फेरिस है,
1: सरबजीत है, फितूर पिक्चर है, नोटबुक पिक्चर है, गुडबाय है, मनमर्जियां है,
0: वाह वाह,
1: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान,
0: हाँ दोनों पार्ट,
1: हाँ दम लगा के हईशा, जॉली एलएलबी,
0: वाह वाह,
1: बहुत सारी पिक्चर हैं
0: जी, बिल्कुल
1: बहुत सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है,
0: हाँ,
1: और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है
0: जी जी बिल्कुल,
1: बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट सो इट्स माई पार्ट ऑफ जर्नी।

0: एक तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं, तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है, तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: एंजॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज्यादा करता हूं
0: जी,
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज्यादा करता हूं, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं एंजॉय करता हूं
0: जी जी।
1: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं।
0: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती
1: वो, हाँ वो नहीं चलता है वहाँ पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास्ट सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है। करेक्ट, क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
0: बहुत एक्सपेरिमेंटेशन
1: है। और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माय गॉड मूवी,
0: जी बिल्कुल,
1: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम,
0: जी जी,
1: तो वो जो लोकप्रियता है, लोगों तक घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
0: एक और पहलू है आपका और वो है

0: इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं,
1: जी
0: और दिलचस्प बात यह है कि हम विविध भारती में बैठे हैं, जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
1: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के कि
0: जी
1: मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहां हमेशा हूं आपके साथ।
0: हम बिल्कुल बिल्कुल हैं। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है
1: जी,
0: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है?
1: जी पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो एक
0: हीरो का एक बहुत ही शानदार पीस है,
1: वो एक वो पीस है। और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है।
0: वाह।
1: और फिर एक जिसमें मनोहरी दा, जो हमारे इंडस्ट्री, मुंबई इंडस्ट्री के,
0: मेटल फ्लूट बजाया करते थे।
1: मेटल फ्लूट, ओहो नहीं, ये मेटल फ्लूट है सर
0: जी, बिल्कुल,
1: दिस इज सिल्वर प्लेटेड।
0: वाह,
1: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका, चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है।
0: जी जी
1: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम बैम्बू
0: डिफरेंट
1: एकदम
0: है,
1: अलग है।
0: बिल्कुल।
1: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
0: ये भी बजाना होता है,
1: अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ
0: जी।
1: सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं,
0: जी
1: और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं
0: जी।
1: सो ये इसका

0: तो ये
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: ये ओकरेनो है
1: जी जी,
0: ये आप देख रहे होंगे इसका शेप ही कुछ अलग है।
1: हाँ ये तो कुछ अलग ही चीज है।
0: दिस इज ओकेरिनो
1: जी,

0: उसका ऐसा साउंड है।
1: वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड
0: अच्छा,
1: है।
0: ये इसकी खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया था।
1: अच्छा
0: ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन हैं, उनके पास में गया था इटली में। वो
1: जी
0: एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इट वॉज नॉट ओपन जब मैं था वहाँ पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सो आप प्लीज मेरे लिए एक मुझे दीजिए, क्योंकि मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की, एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी, एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से एक ये था।
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर
0: और ये
1: सा।
0: आप देख रहे हैं सर, दिस इज कॉल्ड कजू,
1: जी,
0: ये इसमें हम गाते हैं,
1: हाँ ये कजू तो बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसमें हम गाते हैं, ये तो पता ही आपको।
1: जी,
0: तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गा ही रहा
1: जरूर,
0: हूं।
1: बिल्कुल बहुत जरूरी है।
0: अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है,
1: हाँ
0: रहमान साहब के गाने का है,
1: हाँ हाँ हाँ हाँ

0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है,
1: एक ऐसा खुद से ही जुगलबंदी कर लेता
0: ये एक अलग वाद्य यंत्र हो
1: अब
0: गया।
1: सर, एक मैंने जब मैं फ्लूट, मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना।
0: जी जी जी
1: मैं बहुत घूमा हूं, मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूं, लंदन घूमा हूं, यूरोप घूमा हूं, जैसा मैंने कहा इटली में था, इटली स्पेशली एक जगह, जब मेरा फ्लोरेंस में एक प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने, तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा। सो अच्छा, आप जब अकेले घूमते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का,
0: बिल्कुल,
1: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे, वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस हैं
0: जी,
1: और बहुत अलग अलग चीजें मैंने इंजॉय किए जिंदगी में।
0: क्या बात है।
1: सो अब जैसे ये बांसुरी है एक, तो एक
0: ये तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है,
1: बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है, ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है।
0: कहां से लाए?
1: नॉर्मल जहां से मैं, ये तो मेरे खुद बनाई हुई है।
0: अच्छा अच्छा
1: सो अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी, जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे। तो मैंने बहुत साल पहले एक, मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है इटर्नल विंड्स, तो उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज किया है 2011 में
0: जी।
1: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था क्योंकि रिलीज करने में तो और 2 साल लगे थे
0: जी जी।
1: तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है,
0: बिल्कुल
1: इसका साउंड में सुनाता हूं आपको
0: जरूर।

0: अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज़ कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो वो मैंने किया है। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इन टू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट, दैट इज क्रिएटेड बाई मी।
1: जी
0: अब ये एक है, और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है।

0: ये इसका बाज नहीं है, हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल बाकायदा,
0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाल ही नहीं बजा सकते, उसमें
1: बिल्कुल
0: साउंड जब उठा रहे कोई, उसकी नॉलेज भी तो जरूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें,
1: जी बिल्कुल
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक ये इसका जो स्टाइल है।

0: पूरा साउंड चेंज हो गया,
1: पूरा प्लेइंग चेंज हो गया ना।
0: जी जी जी।
1: अब वैसे ही जो ये जो साउंड है अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है,
0: हाँ क्या बात है,

0: ये स्टाइल है इसका,
1: वाह।
0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने,
1: और ये फिल्म म्यूजिक में बहुत सुनाई दे रही है,
0: बहुत बहुत बजाया मैंने इसको
1: जी, म्यूजिक
0: में, मैंने अपने एल्बम में भी बजाया
1: जी,
0: एल्बम में जो कंपोजिशन था।

0: ये कंपोजिशन उसमें बजाई।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है,
1: बिल्कुल।
0: वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे,
1: बिल्कुल,
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है,
1: ये छोटी वाली
0: आइए
1: जी।

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है।
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना
0: जी,
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए
0: जी,
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा आपको,
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने।
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या?
0: जी,
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बनाना बंद कर देगा मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं अभी तक।
0: जी जी,
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर,
0: हाँ तो रख लेंगे,
1: रख लेंगे, बजाएंगे।
0: वाह,
1: पर अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको, अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
0: क्या प्यारी बात है जी,
1: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले।
0: जी जी,
1: अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा, पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
0: बिल्कुल, एक अलग पहचान।
1: सारे गामा पादा निसा आप सेम बजा रहे। अभी मैं आपको एक चीज, एक दो उदाहरण देता हूं
0: जी।
1: सपोज कीजिए सुबह का राग तोड़ी है
0: जी जी,
1: अब सारे गामा ऐसे भी बजता है थोड़ी, पर सिर्फ सारे ही गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है।
0: वाह,

0: ये भी सारे काम है,
1: जज्बात आ गए,
0: पर इसमें प्यार है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी
1: जी,
0: या अगर बताया जाता है संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है, मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है
1: जी जी,
0: वो नहीं होती है, तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब चार लोग हैं रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा, तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए
1: जी,
0: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
1: यस,
0: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
0: क्या बात है,
1: तो आपके साथ जो महफिल है वो कभी खत्म होती ही नहीं है तो इस महफिल को यहाँ रोकते हुए
0: आपका आपका और
1: अच्छा
0: इस जगह का जादू ऐसा है
1: जी,
0: कि मेरा खुद का मन नहीं करता जाने का, बट क्योंकि समय का भाव वैसा रहता है,
1: मैं समझ सकता
0: आपका
1: हूं
0: भी कार्यक्रम है आगे
1: जी,
0: और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना, सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ
1: जी
0: कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रित किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो जैसा मैंने हमने शुरुआत की, दिस
1: जी
0: इज होम कमिंग बैक फॉर मी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाने,
0: नहीं जाने।
1: एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए
0: तो
1: और
0: मैं
1: एक गाने की फरमाइश कीजिए।
0: हीरो,
1: देखिए फरमाइश भी आ गई,
0: ये तो फरमाइश नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट है।
1: अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश।
0: हाँ हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूं उनको शायद।
1: अच्छा क्या बात है, क्या बात, कॉम्प्लीमेंट आया,
0: कॉम्प्लीमेंट है
1: जी जी जी जी।
0: तो
1: हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की
0: जी,
1: और आपको भी हीरो कह दिया है।
0: मुझे निशब्द कर दिया आपने।
1: जी
0: सो ये हीरो धुन
1: जी,
0: स्पेशली डेडिकेशन टू यू,
1: शुक्रिया,
0: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार।
1: थैंक यू सर। क्या आपको मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: वो है ओ माई गॉड का थीम,
0: कृष्णा थीम,
1: कृष्णा थीम
0: जरूर।
1: सो दिस अगेन वंस अगेन दिस डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं
0: जी
1: हमारे आकाशवाणी के विविध भारती को।
0: बिल्कुल।
1: आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है, ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
0: बिल्कुल, शुक्रिया।
1: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
0: जी।
1: सो बहुत गुणी आदमी हूँ, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग विद सम अनदर फ्लोटिस्ट, एक किसी बांसुरी वादक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो रिकॉर्ड करते करते, रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका, फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना, तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में। तो उन्होंने परेशान हो गए वो, फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया। तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूँ
0: जी।
1: जैसे सपोज हो रहा है ना, ये कंपन जो हो रहा है,
0: बिल्कुल,
1: इसको हम विब्राटो कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब जो उनको विब्राटो जैसा सुनाई दे रहा था, वो साउंड गाने में कैसा दे रहा था मैं बताता हूँ आपको
0: जी।
1: तो विब्राटो इतना दिल से आ रहा था,
0: ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा था।
1: ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो
0: जी।
1: जब उन्होंने सुनाया तो मैं पागल हो गया था।
0: अरे बाप रे।
1: खैर, ओ माय गॉड कृष्णा थीम फॉर
0: जरूर
1: एवरीवन।

0: शानदार, क्या बात है।
1: अच्छा क्या है, दो तीन पीस है
0: जी,
1: कुछ
0: जी।
1: फेमस जिसको लोग बोलते हैं कि मैं, मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकती है
0: जी।
1: कभी कभी इंडस्ट्री में, क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन
0: जी,
1: सिंगर
0: जी,
1: गा
0: जी,
1: जाते
0: जी,
1: हैं।
0: जी।
1: ऐसे कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है,
0: अच्छा अच्छा
1: फिर उसको फाइनल मैंने बजाया, फिर उसको रखा है।
0: जी
1: अब जैसे एक वो है, एक कलर्स चैनल का जो थीम है, तो मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिसके साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था उनके पास आज भी सेशन रखा है, उसमें मेरा नाम है।
0: ओके
1: तो ये एक थीम है। और दूसरा फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है मोमो के धागे वाले का
0: वाह वाह,
1: गाने में
0: बहुत शानदार पीस है ये
1: आपके लिए स्पेशली, मोमो के धागे।

0: क्या बात है, अद्भुत।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया पारसजी विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच,
0: बहुत शुक्रिया।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

हम आकाशवाणी भद्रा से आपसे मुखातिब हैं FM 101 MHz पर। समीन शाम के 5 बज चुके हैं और रोज़ की तरह हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं लेकर भद्रवाही लोकगीत। प्रोग्राम के आगाज़ में समाप्त कीजिए रविदीप शर्मा की आवाज़ में प्रोग्राम का ये पहला भद्रवाही लोकगीत।

सामीन अभी समाप्त कर रहे थे अमित काटल और साथियों को। प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं मोनिका देवी और संगीता देवी की आवाज़ में प्रोग्राम का ये आखिरी नगमा।

सामिन, अभी आप समाप्त कर रहे थे भदरवाही लोकगीत। हम आकाशवाणी भदरवा से आपसे मुखातिब हैं FM 101 MHz पर। सामिन, शाम के 5:30 हुए हैं। आप पेशे खिदमत है किसान भाइयों के लिए प्रोग्राम किसान वाणी।

0: मेलातुम लेकिन ऐसी साथ साथ ही आज जै फूड लांड्रो कारोबार है अभी एक बड़ो सफल कारोबार चली रहा हो है तो आस अपने किसान लाभे ने जो जोनू चातम की फूड लानू भी एक बड़ो फायदेमंद काम है कि चूंकि हैरा कोई जोम ता बड़ी लागत असमा लागे ना जंस रहा गोट्रा फूड वगैरह बोतन तो तन के तो थल बोचे तो तय
1: जी जी
0: आसन उदाहरण मा जंस रहा मतलब क्यारी बनेता अगर तस रूम तता ज्यादा छेले और फिर यारा टाइम मेरी असी तस निद कुद करनी है थोड़ जोरो तस उड़ारे बाड़ बंदी करनी ताकि कोई गोरू पोरू से ने तो तस डाले ना खाए फूडन ना खाए ते अगर अस होरी पासे हैरा इश हुन्ना बदला इमा पर्पल क्रांति से चली रहा रही है कि लवेंडर फूडों से ने तेन बड़ू ज्यादा मशहूर है
1: जी
0: तेन
1: जी
0: लवेंडर बड़े सारे इश किसान लाभे ले रहा और हुन्ना इश बदला इमा बड़ो कारोबार है लवेंडर रो और हैरा हर साल इड़ी मतलब एस पर प्रोग्राम भी बोतन कि इशूजन बदलाए तो लवेंडर मा बड़े छेल
1: जी
0: से लीरा और
1: जी
0: हूं
1: जी
0: ते और लवेंडर लान रो हैरा फायदो हूं ऐसे रो मतलब ऐसे रो अक्टूबर नवंबर मा जा ऐसे रे मतलब तेल जाए ते कड़ो गाते
1: जी जी
0: ते फिर यारा आसेरम ता लवेंडर और तेल 1,000 बार तक बिकते केजी आक लीटर मतलब ते आज तो ज्यादा कीमत बोरी होनी है सेरी ते ऐसी साथ साथ ही है रहा मतलब जंस रेसेरो जाए इतरो इस्तेमाल बोते इस फूड वेरो ऐसेरो परफ्यूमन माय सेरो इस्तेमाल साबनन माय सेरो इस्तेमाल ते मतलब हर ऐसेरो तेल जाए तो हजारन मा मतलब जोर रहा है कि 10 बार जारी है सोर जाए बिकते हजारे मनी 10 बार जारी
1: जी जी
0: ते ऐसेरी बड़ी ज्यादा लागत है होना
1: जी
0: कि इतनी सारी खुशबूदार चीजा जाने इसी परफ्यूम रूम फ्रेशनर वगैरह बेनते तन हर चीज में से रो इस्तेमाल बोते ते इसे किसान लाभे ने लवेंडर लान रो फायदो फायदो है ते ऐसी जाए अक्ता इशो जाए मतलब अगर असन जमीनी मा कोई घाटो छोटो बोते इसे खेती बाड़ी मा ता एना जरा फूडू लाना ना ऐसी इशे तेना घाटे छोटे पूरे बही गातन
1: जी जी
0: अस गोटरे फूडू की गाल करम ता तेन केरी भी बड़ी डिमांड है और लवेंडर ता हुन नंबर वन जिली रहा और ऐसे ही ता डिमांड है डिमांड है ते हरा शशि जी सपने किसान लाभ इन जाने जोनू चातम की एना एज ए कारोबारे फूड करो एक बड़ो फायदेमंद कारोबार है तुस अपने कारोबारे अगर थोड़े कर शुरू करता ना एक ही दूर डारे कर भले भले तुस ऐस अपने मतलब बड़े दूर पजे
1: जी
0: सकते
1: जी
0: ते हरा गल बात तो इसी जारी रहनी है लेकिन अपने प्रोग्राम में मास किंची उन्नत किसान लान से या किंची एक्सपर्टेंसी की उरी गल बात सुनातम और इस शो गल बात सुनान रो मकसद बोते कि ज्यादा कर ज्यादा जानकारी इसे किसान लाभे नन तक पूजे
1: जी जी
0: ते शशि जी हैरा आज भी ऐसी गल बात की उरी है इसे उन्नत किसान ला श्री भारत भूषण जी जना लेर उतरे रहने वाले न और एना फूड कर कारोबार केरी रहा और ते एजा एन से सुनातम एन सी की उरी गल बात लेकिन तस्कर पे लशुन तमक संदेश
1: जी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: कुछ बारे में
7: किसान वैली में अजा सिंह सिंह गलबात की जरा हो रहे लेरो तारा इसे जाने पछाने दे इसे भी केरे फार्मर के लिए जाने पछाने में अवार्ड आफ तो ना भारत भूषण जी प्रोग्राम में तुशो स्वागत है कि क्योंकि उन्हें
6: धन्यवाद
7: उन्हें एरा जूनर में इनो है खास करता है तो इसे लेवेंडर लें बिल्कुल हार्वेस्टिंग टाइम है

0: किसान रहा और या इवन रोजमर्री या और तेल काटने वाले जन पोतिन तन की कास्ट के रहा और तन के लिए तो शो ही मैसेज बिल्कुल अक जरूरी बोलो कि पहली चीज तो सुन कह रहा जानने चाहता है कि क्योंकि पहले तो बारा सीधे जतरा के जरा लवेंडर फूल के टोता थी या रोजमरी उस तरह और तेल नहीं सोची तो गात तू पाने मज में जरा जोर की किच वेस्टन किस पाती तेल भी काटता ना तो इस फेरे तो शो कौन प्रोग्राम है कि फार्मर को सेक्टर ज़्यादा तवज्जो दें कि फूडू तेल का निमा या के फूडू भी तस्सी साथ ही ड्राई किए गए
1: जी जी हरा तेल तो तुशु बहुत बहुत धन्यवाद कि अस तुशे माध्यम से ही अपने किसान तक अगर पूज सकतम न तो इन तरह कोशिश जितनी भी करम तो अस हर किसान तक अगर न पूजम तो लिहाजा जै किसान वाणी है ए हर किसान सुनतन तो इसी गल तैन तक पुजेगा जी तो आऊँ अपने किसान लान का अपनी ए गल रखनी चाहता कि जन तेरा सहरा पहले पहले कौन कहते थे पूरा जितना भी लवेंडर है तसे बस तेल करते थे असें एक ही साल कौन की उम्र मेजर है पूरा फूड़ू शुकई साड़ा तो इस साल अस एन चाहता हम कि अस अद अद जरूर कमाम जन तेरे अद फूड़ू करो अस तेल कड़म और अद फूड़ू अस शुकाम तसे कौन बेगा है कि मार्केट जाए तो मार्केट असन अवेलेबल बेच सकते क्योंकि ज्यादा तेल भी बहुत तां भी मुश्किल पेश सकते और ज़्यादा फूड भी बहुत तां भी मुश्किल पेश सकते तो लिहाजा फिर मैंने जो जोन चाहता कि किस मैं जरा तैना फूड सुकान ते किस जरा तैना तेल कड़न
0: अच्छा तेल कड़ने लिए कि किस ते बैठी असन कर लिगरी भी आन ते किस तत तनपुर भी जीगा तन किस की मुना बाला थोड़ी देर मार्केट पर असर पे हो रहा मगर फिर भी ऐसे हरतम किस दिन तुशी या वरी रोशन लाल और केरी और केरी नर्सरी काम कर रहा हो रही है सर मतलब है कि ऐसी प्लांटेशन भी बेह रहा हो रही तो जरूरी बाकी ठान भी लोग यानी फ्लोरू लोग रहा था क्या ये ना मशीनें तुशी चीज़ ना बैठी ना फंक्शनल है कि अगर दूर कहीं चल रहा बोलता था ना बीड़ी एजेंट
1: बिल्कुल बिल्कुल कि नहीं आसंगा हरा मशीन जाए ना आसंगा हाँ ईडी आक तो मेरी अपनी पर्सनल बाकी डिपार्टमेंटरी चलाई मी कान सहूर भेजे ही बाकी हरा सेनाई भी मशीन लग रही है डलडू है वो रमान होए तो तकरीबन सात अठ असंग होना मशीन आन सारे मैं भी जोन असें तेल करना तो अस तां भी अस रात दिहाड़ी कम के तुम तो दे अस कैंची भी किसान अंदर परेशानी माना साढ़े ने चाहम कि भाई अस दिस अदी से बड़े आराम से कम करम दे रात ही जोलम तस टाइम अस शिफ्ट वाइज कम करतम किश मैं दिसा किश रात ही जी कम करतन जैसे कि किसान के जन फूडन तेने टाइमली जन तेने बेटी का पूजन तेने तेल के दे सकता
0: उन्हें इस साल तक थोड़ी देर महंगाई भी ज्यादा बो रही थे इशू तो शू तकरीबन तेल दे रेट और कौन रेंज रहने वालों और फूड के रेट और कौन रेंज रहने वालों
1: एरा इस साल उम्मीद है कि जन तरीज ठप्पा तो उन्हें पुरानी गल तो भेजिए जन बेन थे अस गए दो ढाई साल इरा जन तेरे बाई ने बाद जै रेट चले रहा रोए इस साल उम्मीद है कि फ्यूड करो भी थोड़ा रेट जाए तो बधने चांस हैं और तेलरे भी
0: अच्छा हूँ असें तुम और चीज़ जानना चाहते हैं कि मज़ मेजर शायद तुसें भी अच्छी चीज़ महसूस कमोर हो कि जिदाड़ी अच्छे रेट पर दस हज़ार लीटर आज कर से और पाँच साल दस रुपये लगे रहा और अचानक दस मिनट टूटो था लोग डिस्करेज भी गए थे तो हूँ मेरे वक्त माँ जानन था फार्मर के लिए कौन पोजिशन है तो उसकी जन पिछले कंटेक्ट मान था हूँ जान दूर दराज है क्योंकि तेन भी आके हेरने बोते कि अगर जन पुराने फार्मर अगर तेना कल्टीवेट के सस्टेन कर रहा और तो ठीक है जी अस नौ दिन तो अस भी फील्ड मंगाते हैं
1: असें जखन पहले असें दस हज़ार किलो तेल बेचर थी तखन तो अस अपनी जै क्यूबड़ी के जै फसल बनती थी तस्कर अस कम से कम भी अठ गुना दस गुना ज्यादा कमाई करती थी हूँ अपनी रेट घट रहा था सारे दिन दो जी अस मोनी किच नहीं आती लेकिन फिर भी असं अपने किसान लाने तक रहा संदेश बड़ी बार पजाओ कि तुस तो पहले अपनी कैलकुलेशन करा कि तुम जमीनी में तुसन कितनी कुकड़ी बनचे तस्कर तुसन डबल ट्रबल हूँ अभी फ्यूड़ी करो तुम पैसो एजी रहा रो चाहे रेट घट रो बिकी ना बोलो ती क्यूकड़न के बड़ू ज्यादा रोड़ू है ऐसमा यारा बांदरा देना तो बांदरा तो क्यूकड़न बिल्कुल ना देने रहने यारा बेने के लिए तो जे तुम क्यूकड़ी बेहनी तो तेना तेना ग्लेवस उन्ने शुरू बेही गा दिन तो सिर पाती टेरे लागे जखन क्यूकड़ी के दाने लगने शुरू हो दिन उबरी तो डाल भी तेना तट्ठा भी तेना बोन खरो ग्लेव किड़ी सड़न पहला बाद अगर तुम पेरो दे भी अगर तेने बचा ले तो फिर जखन तस पर शिलों लगन शुरू हो तखन फिर बंदर अटैक करते हैं कितने भी तुसें पेर देन और कितने तुसें दिहाड़ी लियो नहीं अगर तैन दिहाड़ी करो हिसाब लाओगा तो तुसन क्युकड़मा रुपये भी बचत न बेच सके तैसे अपनी जमीनी में तो तैसे यार कहते भी बड़ू अच्छू कि अगर इसमें पेड़ नहीं कोई देनो कोई बंदर न खाए गोरू गाबा भी तैसमा गा न अगर घास लागो तो गोरू साड़ा गाबा साड़ा तेरा तैस न खाना थी कोई नुकसान न करन तो तैसे यार कहता बड़ू अच्छू है कि अगर तू शो 5,000 के रेंज में अगर दिन रुपये 4,000 ही अस तेती छो तेल बिकल थी अगली साल अगर 5,000 करे आस पास गाते 10 रुपये घट बोले या 10 ज्यादा बोले लेकिन हम 5,000 के रेंज में जोने अगर इस रेंज में तन करो तेल गाते तो कुकड़ ने कहता तकरीबन 4 गुना ज्यादा लवेंडरे में बाहरों किसान
0: तुम जै कुकड़ी केरी और बंदरा केरी कल जो है सिर्फ एक ही कुकड़ी केरी नहीं बल्कि अन्न जैसा मास्ता से भी केरी है आल थे मगर इसमें कौन चीज़ और है कि लोग ने इस चीज़ और पूरा विश्वास लौटते कि चाहे चोरी हजारें किलो गाय पनते तन गारंटी लौटती कि असन का अगर अस पैदा कर में लेते तो बिकनो बिकनो है या तन सर फूडू के अगर फूड पतो तो गारंटी है कि बिकना तो तना फार्मर काम करते फार्मर का चीज़ और अश्योरेंस जोड़ते कि नहीं जन्मी पैदा क्यों रसी मार्केट आए रेट घट वो ज्यादा बहुत ऐसे कौन अश्योरेंस दे
1: अस किसान ने जो मिले कि अस ऐसे मार्केटर है उसमें लग रहे बिल्कुल हैरा परेज है अस बॉम्बे जोर थी है तड़ी ऐसी एक मीटिंग थी जन ऐसे बायर हैं जन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जन आइले पर काम करते हैं बड़े आजरे नहीं तना बड़े पुराने हैं मनोहर तनर तो तैन से ऐसी मीटिंग बोल थी तने ही गारंटी दी तो रही है कि आज तो संकर नेम लेकिन तुशो तेल की क्वांटिटी बहुत घट है तू सासन ड्रामा के हिसाब से तेल दे या कुपी के हिसाब से या किले के हिसाब से नहीं अगर तुम का ड्रामे के हिसाब से तेल नहीं थे आज तो संकर नैन जी तैयार हम और ऐसी क्वालिटी भी तेने एरी की बड़ी अच्छी है तो तैस हिसाब से तीन जो अस तुसन कर नियतम लेकिन तुस असन ज्यादा क्वांटिटी में तेल दे अस नैन जी तैयार हम
0: अक चीज हम तुसन कर और ये जाननी नहीं चाहते बल्कि अक मेरा सुझाव है तुसन कि अस फार्मर से मिलते रहा तम दूर दराज इलाकन में क्योंकि हूं तो लवेंडर और किस बड़ा और किस थोड़ा जोर एरियो समझे कि अक दुई तहसील है कि जिसमें किस एरिए में लवेंडर लगी रहा हो अगर क्योंकि तुम बड़े जना बड़े व्यापारी हैं तन केरी मांग है कि तुस बल्के में प्रोडक्शन करा तो बल्के में प्रोडक्शन करने लिए तुस उनका ज्यादा कर ज्यादा जमीन कल्टीवेशन में लौटती हो रही तो अगर तुस एक अभियान चला थे तस्मा कौन है कि तुस पर्सनली मिल के जो कि तुस ने अप्रोच है तो तुस फार्मर्स जन तन ग्राउंड लेवल पर गई तो जोत कि ये ऐसी एरी पोजिशन है इन जन तुसें कि इस जो कि बांद्रा के कंपेरेटिवली या इवन मार्केट है ऐसी मार्केट इस रेट तक रहा है तो इंदाजो है बोते कि एक दिन साथ भेज सकते कि जै तुम्हें बल्कि प्रॉब्लम है तो अगर इंश तो उसका 100 क्वांटल है तो भेज सकते जी एक दिन साल 200 क्वांटल या 250 क्वांटल है जी क्या ऐसे ले कोई तुम्हें तरह पर इंडिविजुअल एफर्ट्स या जन तुम बायर सर लोकल बायर तन की तरफ पर कोई अप्रोच है
1: अरे इतने वाले टाइम में असन इनकम तो करनू पेनू है क्योंकि जखन स्टार्टिंग में मैं इनकम शुरू की थी 2010 में तखन जरा कोई ना तू जानते कि भाई लवेंडर कौन चीज़ है या इस कौन फायदा बनो है या इतने बड़े दूर पुजनी है गल असें भी बैन चलिया ट्रायल बेसिस पर असें दुई कनाल में रमी खेती शुरू की थी फिर आख दू दुई महीने जुड़ते जे ते 2000 छोड़न तकर तो संदाज लाद कि 6 साल में मसा 8 कि 9-10 महीने थी अस इस में जुड़ रहे आख 6 साल में फिर जखन मेरी मेरे इंट्रैक्शन है मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस बल्कि हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी प्रधानमंत्री मोदी जी से तो तेने जखन अरोमा मिशन लॉन्च की अरोमा मिशन इस चीज़ नौ दी तू तेने जो कि तुस थाला करो काम ज्यादा करा ताकि अस अपने किसानों तक फ्री ऑफ कॉस्ट से थाला पजाम तला पाती असी थाला भी लाई बहुत ज्यादा लेवल पर असी लाई थाला और लोगों फ्री ऑफ कॉस्ट लगी मैं तो बड़े लोग जन 23 साल में असं 550 में इस खेती में जोड़ो थी और फिर अगली 23 साल में असं 500 में इस खेती में जोड़ो
0: जोता ने कैंची या कहावत है कि गेहूं के गलेवे के फुलको बनने में सीधी ले गुरी कि पहले मैंने गेहूं के गलेव तो सुन पाथू क्या पी तक दे से आटू बनाने फुलके बनाने और हूं तो तसेरो केक भी लगो बनने बिस्कुट भी लगो उन हर बात चीज लेगी बनने तेन सरासी जता तुसी लवेंडर ही या नोर तो तुस सोच सिर्फ तेल बिकनो है पर हूं तो साथ जैसे बाय प्रोडक्ट्स बने रहा और साबुन बने रहा और अच्छी अच्छी क्वालिटेटिव चीजें बने रहा और जैसे तुझे इसे लोकल जन काफी स्टार्टअप जन तन फंक्शन के रहा और एना जन तुझे स्टार्टअप बनना तो मेरे ख्याल में मां या डिपार्टमेंट के तरफ तो एक बैकबोन है इस स्ट्रांग करने लिए तुम कौन फोर्स है
1: अरे ऐसे नहीं ऐसे जना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना या ऐसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जना तैना भी काफी इसमें कोशिश कर रहा हो रहे हैं और अगर जरे ना सेंटर मतलब इशीज है जैसे ट्रिपल आई एम भेजिए सी एस आर वाले एना भी क्योंकि बैंक और गाइडलाइन है तो तैना अगरों आसन जैसे मोदी जी जन तैना अगरों डॉक्टर जितेंद्र सिंह गंजोई सर तन और तैना अगरों ऐसे जना डायरेक्टर ट्रिपल आई एम रहे तैना भी काफी इसमें कोशिश कर रहा और इन किसान से मिलने लिए या अगरों स्टार्टअप जन तैना बधाने लिए तो तैस तैस क्योंकि इस चीज है कोशिश है अस ही कहते रहे क्यों क्योंकि आसन भी बंद और थोड़ी सपोर्ट मिलेगा जे तो ऐस ऐसी तैन के सपोर्ट ही सी असन काम अगरों खेल सकता हूँ बधाई सकता हूँ चाहे शो प्रोडक्ट न या चाहे असं किसान तक जो कि अभियान शुरू करने पेन है कि असं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में असं तेल लीजिए ताकि ये दिन बायरन तन की डिमांड पूरी हो।
0: अब चीज हम तुम और ही पूछने चाहते हैं कि जो कि पहले भी असन इस बारे में गल बहुत ही रह रही है मीडिया से हरतम कि जन अस डे टू डे यूज में इसे तेल लेते हैं दोगे लाने या किसी और ही कोई परफ्यूम है तस्मा के इसे लोकल प्लांट हैं जानकर कि फूलों के लिए तस्मा तेल लेते यूज होते हैं जैसे कि सोने क्रेरे वगैरह वगैरह कई हैं तो पहले तुमसे गल बोल थी क्या निके साइज बैठी अवेल भेज सकते हैं कि जैसे ही एज ए वेस्ट वहाँ तो रिसोर्स इशू कि चूंकि असर कि छिने लोर गए नहीं बटने और आसन का बिल्कुल इन टच है मगर असर कोई फायदा नहीं लोर उठे बटने का क्या अस कोई फर्स भेड़े हो तुम तरफ
1: अरे अस पढ़े जुड़ना तो अगर किस नहीं लेकिन अगर किरण हो तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ना थी ऐसे लिए अगर सरकार भी मदद करे नी निके यूनिट गए तो ठीक है नहीं तो निके यूनिट अस एपू भी कहीं है नहीं सकते क्योंकि असं जखन स्टार्टिंग थी तखन एजू डिपार्टमेंट भी नहीं है दी तरह यूनिट असन तो मैं अपन यूनिट बढ़ो 6-7 लाख करो एन तो लोन थ्रू चाहे असं बैंक लोन कटता चाहे जंजर भी तो अक किसान के लिए उम्मीद असं तखन खड़ी की थी कि नहीं भाई असं हूँ मशीन लग गई क्योंकि तेल पहला घूमो तू ट्रिपल आई मेरी अक मशीन इतनी थी ईडी मोबाइल डिस्टिलेशन यूनिट ते तेल के तो फिर वापस गाती जेमो और एक ही सारे आखन टाइम पर ना पूजी मशीन लोग फूड जाने तेन जाने शुरू हो जाए तो किसान लगे जो कि हूं ये शुरुआत है रीन हालन जखन ज्यादा बोलते तालिक में बोलना है तो तखन मेरी मैं सोचता समझता मैं कदम उठोरती हो कि हूँ अक मशीन अपनी गिनता हूँ ताकि लगे तो लोग के दिन मुश्किल तेना हाल बेच गए जखन मी लई साड़ी अपनी मशीन तैसे साले फिर अगरों ये मिशन जखन अरोगो मिशन शुरू हो फिर डिपार्टमेंट वाले फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांटिंग मटीरियल लगे देने तो तेने ये रू कि असं इधरों मटीरियल तो लाओ लेकिन घोड़िया नहीं तो असर तेल कड़ो फिर तेने मशीन अभी देनी शुरू की तो ऐसे ऐसी तेना अगरों इस बारे में भी तेना अगर चाहन तो तेना दे सकते हैं छोटे छोटे यूनिट ताकि अस अपने आसे पास जन भी अज जो तुम जो करेर है या अगर चीज़ अस तैसे भी तेल करदा ऐसे अस यूज कमी सकते हैं।
0: पार्थ भूषण जी तुसन से बड़ी लंबी चौड़ी गलबात भेज सकते कि जो कि बड़े आस्पेक्ट हैं जन से कि तुसन भी जान पहचान है और फार्मर तक असि ये बारे में जानकारी पजानी बिल्कुल जरूरी मगर असन का टाइम बिल्कुल थोड़ा जर होए ते तुसी से फार्मर जो हुन करंट कौन मैसेज दे ले
1: फार्मर जी अस ऐ मैसेज दे मिले कि इस साल चाहे तेल कड़न हो चाहे फूड़ू सुकाने तो सोची समझता अगर सुकाने तो तेल कड़ने वाली स्टेज बोझे तस्कर पहला थोड़ा के चारे में बोन पूरा पूरी डाली जाए तो फुल लोड़े आधी फुली दे बोए बाकी किस लोड़न तेना बंद दे तो तस स्टेज पर तेना सुकाने लिए कट्टन और कट्टना भी बिल्कुल बां बां छाते दे जन तेना फूड़ू दे तेरे लिए क्वालिटी सही बोनी है क्योंकि तेना सफाई करने में आसानी बोचे अगर तेने बोना कट्ट ले तो पाटला डेंडी ज्यादा बोल तेने सफाई करने बड़ी मुश्किल बोचे तो जैसे कि तेन करो रेट रेट न मिले और दुई अगर तेल कड़न तेल कड़ने लिए जरा थोड़ी देर पकने देने देना तो पकते बाहर भी जखन तेना कट्टन तेल कड़न जाए तो बह बह कट्टन ताकि तेल की क्वालिटी तो बड़ी सही बोए तो जब बाहर तो तेन की डिमांड जाए तो पूरी बोए अगर तेने थल कट्ट पाटला तेस में तो तेल की क्वालिटी सही ना बोए ताकि अगर वो जखन टेस्ट करते हैं तेना तेज नहीं जी ऐ तेल सही नहीं आती तो इस फेरे सोर जरा हेरी जायता कमान काम बस है
0: तुसी प्रोग्राम मेरे लिए टाइम दितो और फर्स्ट दर मुताबिक अच्छी जानकारी दीती प्रोग्राम में बात कल बात करने लिए तुशु धन्यवाद
1: तुशु धन्यवाद सर बहुत
2: नीरू जी असें गलबात सुनी ते एना जना भारत भूषण जी थी है एने काफी तफसील जानकारी इसे किसान लान जी दिती
3: जी जी
2: एने जो कि अगर तुसी जवंडर तेल करना है ते तुसी फूड़ू थोड़ा पकने देने ने और तला पत्ती थोड़ा बां बां असी कटना ने ते और अगर तुसी तेल नहीं करना फूड़ू सुकाने ने तो तेने तुसी थोड़ा जरा नजर ता फूलने कर थोड़ा पहला तेने तुसी केड़ता और तेने सुकाना ने तो तसर रावानी लानरी भी गल जोई और यानी अपनी हिस्ट्री भी सुनाई तुसी कि यानी के केई सने लवेंडर लोर थू पहला दुई ले के नालन पर शुरू की ओर थू तो और तला पत्ती यानी काफी इसमें नजो तो फायदो भी सर लो और
1: जी
2: काफी
1: जी
2: किसान लाभ होना 500,000 किसान जय शे बदला है मैं लवेंडरी साथ ही जोड़ रहे और लवेंडरी फसल जा ले लोरी तनी अपने उदाहरण मत आसे

0: की असें लुहांडे अगर गल करा ते लुहांडे असें लोहर लोड़े और लुहांडे लाने असें किश किसान जरा असम का ज्यादा जमीन है कुछ दूर जमीन है तो असम को ना कि गोरू प्योरू भी असना खान कोई जानवर असना
1: जी
0: खाए
1: जी
0: जन जरा असर दम कि कुछ दूर गाड़ नसन तो तड़ी अस
1: थोड़ा
0: लौटन
1: लेंसनो डर रहा थे
0: लंच
1: बाकी
0: लगन
1: नहीं।
0: जी
1: जी
0: जी
1: जी
0: तो तड़ी को ना कि कोई जानवर भी अस खाए ना कोई तुस गोरू भी असमा छिड़ी सकते तना भी अस ना खान तो असें को ना कि अस लगते जा जमीन असन जड़ी दूर है तो तड़ी पुजो है ना तो तड़ी अस लुंडर लाम पहले शुरुआत कर मगर अस
1: जी
0: फायदा
1: जी
0: होते तो जन रिडारन में तड़ी भी अस लुंडर लाम तो साथ ही अस और भी अपनी जमींदारी तभी कैरम तो साथ ही अस दोनों चाहते हम कि जन जरा फूड को कारोबार है जो इसे किसान ला के ले तो काफ़ी फायदेमंद है अस हरतम तो जन जरा अस गोटरा फूड लातम तो
1: जी
0: तन कर
1: जी
0: भी मार्केट के जाए तो काफ़ी है आज बदलाव में भी गोटरा फूड कर जाए डिमांड है काफ़ी है और अगर जन इसे किसान ला बड़े पैमाने पर करते हैं तो तन को ना कि ऐसे लंडर जाए तो जम्मू जो ही इन्हें गोटरा फूड जम्मू जो बेचते हैं तो तस्मा थोड़ा जरा असें एक्टिवेट रहने पे थे जम्मू मंडी में अपनो लिंक जाए बनाना और तलापति इट्ठा असें लो जी अगर असें फूड लोड़ा तो जल्द ज़्यादा मंडी में पुजरा लोड़न तो असें को ना कि असन रेट भी अच्छा मिलते अगर अस एकदम कि असें फूड आज लोड़ा अस काला बेचता हम ले दी तेना मार्केट में गान तो असें कौन बोते कि असन जाए नुकसान बोते ते तसे साथ ही अस अपने किसान गांव तो दोनों चाहते हम कि अज जन सी ते जाना भी इसे किसान लाएं सब्जी वगैरह लोरी ने तो तन कौन है कि तस्मा हेरू कि कोई बीमारी शुमारी तो नहीं चल रही लग रही अगर तन लगते कि कौन च कोई कीड़ो लगी रहा और पेड़ी लगी रहा उन तो तन कौन है कि स्प्रे वगैरह भी कर सकते हैं अगर तन लग कि कोई ज़्यादा असमा बीमारी लगी रहा हो रही तो असें कुने कि डिपार्टमेंट वाले से भी राबतो करना क्योंकि हर असें आत्म कि हर पंचायती में डिपार्टमेंट वाक में अनुजाए
1: बोते
0: मुलाजिम
1: बोते
0: है जी जी तो असें तसें संपर्क करना और तस रहता तो असं दवाई वगैरह देते या स्प्रे देते असें अपने उसमें छिड़काव करना तो तल पत्ती असें अपनी सब्जी जाए बीमैन कर जाए बचानी
1: बचानी बिल्कुल शशि जी होनी से किसान लाभे न इंतजार बोनो काले रे मौसम रो ता काले रो मौसम जाए ते बिल्कुल आ जरो जरो रानो ए जय आसन का जानकारी पूजरी ता टेम्परेचर जाए काल रो ज्यादा का ज्यादा 16 डिग्री और घट कर घट 10 डिग्री रान रो अनुमान है। ते हैरा शशि जी मौसम ता आजकल मेर जरो चली रहा और
0: जी जी
1: ठीक है दी सही शुकाम भी बोए रहा और उडलो जजर थोड़ी इसे
0: ठंड वार भी
1: शुकाड़ा
0: जरा
1: कर ले भी जरूरी है जय बारिश ता भी ये जीरा हो रही है। ते इसे किसान लाभेन जनन अपना कमा जनन दाना रोकम ता ना आस रोकी भी न सकुम क्योंकि किन्नरो टाइम है। ते चला बड़ी गल बोझे अगर मौसम इशू साथ दे तो ते अच्छी गल है। ते शशि जी गलबात सिजू करनी चाहते थे लेकिन इसे प्रोग्राम रोज है टाइम है ते बुई जोरो ते अपने किसान लाभे नन कर गिनतुम इजाजत।
0: जय
1: जय हिंद।
0: हिंद।

सामिन, अभी आपसे बात कर रहे थे प्रोग्राम किसान वाणी। हम आकाशवाणी भदरा से आपसे मुखातिब हैं FM 101 MHz पर। सामिन, कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे पहले हिंदी में, उसके फ़ौरन बाद 6:05 पर अंग्रेज़ी में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। रिले का ज़रा सा इंतज़ार कीजिए।

0: संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शाम 7:45 पर कश्मीरी में खबरें, रात 8 बजे वादी की आवाज़ प्रोग्राम आकाशवाणी श्रीनगर से रिले किया जाएगा। समय रात 8:30 पर आप हमारे स्टूडियो से समाप्त करेंगे चंद गदेशी नगमें।

रात 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे अंग्रेजी में खबरें और 9:15 पर उर्दू में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। समी रात 9:30 पर आप हमारे स्टूडियो से समाप्त करेंगे उर्दू मुशायरा। सामीन, ये था आपसे लेकर रात 10 बजे तक रिले पर नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:15 पर डोगरी में खबरें व तबसरा आकाशवाणी जम्मू से रिले किया जाएगा। रिले का जरा सा इंतजार कीजिए।

0: पहले खास खास खबरें करने में हैं कुणाल श्रीवत्स। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और श्रीनगर च रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स की बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर की गोल्फ का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने बारे उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री होरें अज श्रीनगर ब्हाई अड्डे पर अज करिए परतोए दे श्रद्धालुओं का स्वागत किया। मुख सचिव होरें आयुष ढांचे की निग्गर बनाने ते जम्मू कश्मीर च सेहत अफजा सैलसफा की बढ़ावा देने पर जोर दिता। फौज की व्हाइट नाइट कोर के जीओसी होरें राजौरी के गंभीर मुगला इलाके च जारी ऑपरेशन शेरूवाली की समीक्षा की। जमीनी हालात का भी जायजा लिया। ते मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई सारे हिस्सों च अज गड़की लिशकिए भारी बरखा ते ऐन गड़े की पेशगोई की है। हुन खबरें की तफसील कन्ने जगमोहन शर्मा।
1: शुक्रिया कुणाल। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें अज श्रीनगर च रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स के डायरेक्टरें दे बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता की। मीटिंग च गोल्फ कोर्स की कारकरदगी की समीक्षा की गई ते कन्ने उत्थे ढांचागत सुविधाएं च बेहतरी आनने ते होर दुई सेवाएं सुविधाएं च सुधार के उपाएं बारे भी गल्लबात की गई। बैठक च उत्थे गोल्फ खेडने लिए आने वाले खिडारियें ते सैलानियें गी बेहतर अनुभव देने गित्ते सुविधाएं दे दर्जे च बाधा करने बारे भी चर्चा हुई। एह्दे अलावा राष्ट्रीय ते अंतर्राष्ट्रीय सतह के मते मते खिडारियें गी बक्खी आकर्षित करने लई नीतियां तैयार करने पर भी जोर दिता गया तां जे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दी गोल्फ दे इक महत्वपूर्ण केंद्र दे रूपै च इक टकोह्दी पंछान बनी सकै। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें अज्ज श्रीनगर ब्हाई अड्डे पर अज्ज करिए परतोए दे श्रद्धालुएं दा स्वागत कीता। उंदे कन्नै केईं अधिकारियें दा इक विशेष शिष्टमंडल भी हाजियें दे स्वागत लेई गेदा हा। मुख्यमंत्री होरें अज्ज करिए परतोए दे लोकें कन्नै गल्लबात की जिसलै जे अधिकारियें उंदी यात्रा गित्ते बंदोबस्तें बारे भी पुच्छेआ पछाया। अज्ज यात्रियें उंदे लेई कीते गेदे प्रबंधें ते सुविधाएं पर संदोख प्रगट कीता ते आखेआ
2: जिस इन द हिस्ट्री ऑफ सऊदी अरबिया की पहली बार 2026 में इतना अच्छा हज हुआ जिसमें कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई। पहली बार से हमने सुना, बहुत बहुत अच्छे इंतजाम थे। सेकंड, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने भी बहुत अच्छे इंतजाम थे।
1: तो श्रीनगर हवाई अड्डे आसिया यात्रियों लिए एक सलाह जारी की गई है कि भारतीय हवाई फौज आसिया रनवे की मरम्मत ते रख रखाव के कमें के चलते हवाई अड्डे का रनवे 1 जुलाई को लेइए 30 सितंबर तगर हर संगार ते मंगलवार बंद रखा जाग, जिसले जे 1 अक्तूबर को 16 अक्तूबर तगर रनवे पूरी चाली बंद रहोग। अधिकारियों उआं ए भी आख्या जे ए कार्यक्रम फिलहाल अपने शुरुआती योजना आले मरहले च है ते इस बारे मुकदी मंजूरी की अजे बलगया जाता है। लोकें की सलाह दी जाती है जे अपनियां यात्रां वह उस हिसाबे तय करन ते कुसै भी बिजन तस्दीक जानकारी पर भरोसा नहीं करन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुंदे आसिया शुरू कीते गेदे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान दे पहले पंजे दिनें दौरान जम्मू पुलसै मती कामयाबी हासल कीती है। इस बारे एक प्रेस कांफ्रेंस की संबोधित करदे होई जम्मू दे एसएसपी जोगिंदर सिंह होरें आखिया जे नशाखोरी ते नशा तस्करी दे खिलाफ कार्रवाई करदे होई जम्मू जिले च पूरे केंद्र शासित प्रदेश दे जिलें जां सभनें शा मतियां 175 एफआईआर दर्ज कीतियां गईआं न, जिंदे च 71 मामले नशे दा कारोबार करने ते नशाखोरी मुतल्लक न। उनें जानकारी दित्ती जे पुलसै इस दौरान 16 करोड़ रुपए कोला मते मुल दी 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद कीती है। नशे दे कारोबार सरबंधी 22 संपत्तियां ढाईयां गईयां न ते 5 करोड़ 19 लाख रुपए दियां संपत्तियां कुरक भी कीतियां गईयां न। एसएसपी जम्मू होरें आख्या
3: 71 एफआईआर ऐसी हैं जिनको हमने उन लोगों के खिलाफ रजिस्टर किया है जो पेडलिंग का भी काम करते हैं, साथ साथ कंज्यूम भी करते हैं। इस दौरान 5 किलो प्लस हेरोइन जो है वो जिसकी मालियत अगर हम मार्केट में देखेंगे अराउंड 15-16 करोड़ की पड़ती है, वो रिकवर हुई है, जिसमें अराउंड 300 के करीब जो है ड्रग पेडलर्स ड्रग एडिक्ट पकड़े गए हैं। जो हम सीजर कर रहे हैं प्रॉपर्टीज का, जिसमें मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें हमें 125 ग्राम गोल्ड भी इस बार हम लोगों ने सीज किया है और 37 व्हीकल जो हैं वो हमने सीज किए हैं।
1: मुख सचिव अटल डुल्लू होरें अज जम्मू कश्मीर आयुष सोसायटी की शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता की, जिसे 2026-27 बरे लिए सोसायटी की सालाना योजना की मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय आयुष मिशन तहत मंजूर कार्य योजना च मुख तौरा पर जोर सेहत सैलसफा ते सेहत नीति तैयार करने के कन्नोकन्नी आयुष दियां सेवां सबने मेडिकल कॉलेजें ते जिला अस्पतालें च यकीनी तौरा पर उपलब्ध करवाने पर भी जोर दिता गया।
4: एह खबरां साढ़ी वैबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। एह्दे अलावा तुस एह खबरां आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन ते DTH पर भी सुनी सकदे हो।
1: एक खबर तुस आकाशवाणी जम्मू पर सुना दे ओ। बाकी दी खबरें कन्ने कुणाल श्रीवत्स।
0: राजौरी जिले के गंभीर मुगला इलाके च जारी ऑपरेशन शेरूवाली की प्रगति ते जमीनी हालात का जायजा लैने गितै फौज की वाइट नाइट कोर के GOC लैफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा ते आतंकवाद रोधी बल रोमियो फोर्स के GOC होरें अज उत्थों का दौरा लाया। इस दौरान उनेंगी ऑपरेशन शेरूवाली तहत OR दे कम्मे कारवाइएं तौर तरीके उत्थों की भूगोलिक स्थिति ते अपनाई जा रही कार्रवाई की नीति बारे जानकारी दी गई। ध्यान योग है कि अज कोला 11 रोज पहले आतंकवादियों की मौजूदगी बारे एक टकोदी सूह थोने मगरा फौज ते पुलिस की एक साझी टीम ने तुपाई अभियान शुरू किया हा, जिदे मगरा उत्थे जंगलें च छप्पे दे आतंकवादियों की बाहर कढ़ने गितै कार्रवाई जारी है ते सबूरा सुरक्षा बल दिन रात उत्थे डटे दे न। केंद्र च NDA सरकार दे 12 बरे पूरे होने दे सिलसिले च आकाशवाणी दा क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू अत्रू 4 जून वीरवारें 30 मिंटें का एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने जा रहा है, जिदा विषय है आतंकवाद खिलाफ लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर। इस कार्यक्रम च साढ़े चेचे परौने होंगन ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर विजय सागर धीमान, जेड़े इस विषय पर अपने विचार रखगन। कार्यक्रम दे मेजबान होंगन साढ़े न्यूज एंकर विजय बजाज। इस कार्यक्रम की एक निकी झलक
5: देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं और मैं इसकी जो टाइमलाइन है उसको चाहूंगा कि आप कहें 5 अगस्त 2019 को
6: जी,
5: जब 370 यहाँ से हटा
6: जी,
5: तो ये मोदी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इसके पहले मैं खुद श्रीनगर में 3 बार काउंटर इंसर्जेंसी ग्रेड के अंदर कमांडर रहा हूँ और एक बार मैं श्रीनगर में यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप ऑफ इंडिया पाकिस्तान, उसमें भी मैं रह चुका हूँ।
0: महकमा रायबाई आसिया जम्मू च खेत बचाओ अभियान तहत पुरखू रोड इलाके च एक जागरूकता कैंप लोआया गया, जेदे च लोकें गी रायबाई अली जिमी दे संरक्षण बारे जागरूक किया गया। विधायक श्याम लाल शर्मा इस मौके मुख परौने हे, जिन्हें लोकें गी रायबाई अली जिमीएं गी औने आली पीढ़ियों लिए बचाई रखने लिए प्रेरित किया। महकमे ने करसानें दी भलाई बेहतरी लई शुरू कीती गेदियें बख बख स्कीमें दे बारे च भी जानकारी दित्ती। महकमे दे किश अधिकारियें भी लोकें गी आख्या,
7: पूरे भारतवर्ष की जो खेतों की मिट्टी है वो दिन ब दिन उसकी सेहत खराब हो रही है। किसी समय में और आज भी हम मिट्टी को अपनी माँ समझते हैं, तो आज हालत ये है कि जो अंधा यूज हुआ है फर्टिलाइजर का या पेस्टिसाइड का उपज बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है कि इसकी जरूरत नहीं थी। किसी समय में जब हमारे प्रोडक्शन कम थी तो उस समय में जो हमारी खादें या हमारे पेस्टिसाइड लगाने की जरूरत थी, लेकिन समय के साथ ऐसा हुआ कि अंधी दौड़ में हमने बिना सोचे समझे बिना टेस्टिंग के इतनी ज्यादा फर्टिलाइजर हमारे खेतों में डाल दी है, अब उसका फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है।
0: मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने अगले 3-5 घंटे दौरान कश्मीर संभाग के कई हिस्से ते जम्मू खिते के किश इलाकें च बरखा पौने की पेशगोई की है। बख बख थारें पर किश तेज बरखा, एनगड़ा, अंधी झक्खड़ ते तेज बाहें के असार न, जिदे चलते बसनीकें गी सोगा सतर्क रौने की सलाह दी गई है। मौसम संबंधी ताज़ा जानकारी मुजब जम्मू कश्मीर च कल थमां 5 जून तकर बड़े पैमाने पर बरखा, अंधी झक्खड़ ते तेज बाहें दे चलने की उम्मीद है, जिसले कि 6 जून गी टामी टामी बरखा पौने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद हुंदे आसिया और मती जानकारी।
8: और इवनिंग से जो है थोड़ा फिर से क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड है और 4-5 जून के आसपास जो है थोड़ा फिर से ताजा बारिश है और हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग की भी पॉसिबिलिटी है। तो इस बीच थोड़ा गस्टी विंड्स भी फिर से चलने के चांसेस हैं और फिर आगे आने वाले दिनों में फ्रॉम 6 to 9 even 10 तक जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस। गस्टी विंड्स है, थोड़ा एहतियात करें, तो जब भी ऐसे थंडर स्टॉर्म या सीवियर लाइटनिंग के इंसिडेंट्स होते हैं तो घरों के अंदर रहें।
0: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला पुलिस उधमपुर आसिया आयोजित 3 रोजा वालीबॉल टूर्नामेंट च खेडे लई उत्साह ते समाजिक जागरूकता का शानदार संगम दिखने की लब्भा। इस आयोजन का मकसद नौजवानें गी खेडें ते शारीरिक गतिविधियों राएं एक तंदुरुस्त जीन जीने लई प्रेरित करना ते नशाखोरी दी कबैतू कोला छिंडा बनाई रखने लई जागरूक करना है। इस बारे होर मती जानकारी सांझी करदे होई जिला फुटबाल एसोसिएशन उधमपुर दे ट्रेजरर अमित शर्मा होरें दस्सिया,
9: ये रेंज पुलिस हेडक्वार्टर उधमपुर रियासी रेंज DIG उधमपुर रियासी रेंज श्री शिव कुमार शर्मा द्वारा करवाई जा रही है। इसका एक ही लक्ष्य है कि खेल एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमारे यूथ जो है खेल के माध्यम से नशे से दूर रहेंगे और समाज

0: समाज को भी नशे से दूर करेंगे। और
1: तो खीरेश खास खास खबरें खुरी पर थी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर च रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स की बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर की गोल्फ का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने बारे उपायों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री होरें श्रीनगर हवाई अड्डे पर अज करिए परतोए दे श्रद्धालुओं का स्वागत किया। मुख्य सचिव होरें आयुष ढांचे की निग्गर बनाने ते जम्मू कश्मीर च सेहत अफसर सैलसफा की बढ़ावा देने पर जोर दिता। फौज की व्हाइट नाइट कोर के जीओसी होरें राजौरी के गंभीर मुगला इलाके च जारी आपरेशन शेरू वाली की समीक्षा की। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई सारे हिस्सों च अज गड़की लिश्की भारी बरखा ते ऐन गड़े की पेशनगोई की है। एदे कन्ने गै खबरें दा ए बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गल गुआंढियें दी। पाकिस्तान सरकार एक पेठा ते अमरीका ते ईरान बश्कार मध्यस्थता करने दा दावा करदी है ते दुई पेठा पाकिस्तान अपने नजायज कब्जे आले जम्मू कश्मीर यानी POJK च उत्थुआं दे नागरिकें दी आवाज गी बेरहमी कन्नै कुचला करदा है। एह गल कुसै थमां छप्पी दी नहीं है जे जेड़ा मुल्क अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति ते मानवाधिकार दा राग अलापा करदा है, वह अपने के कब्जे आले इलाके च लोकतांत्रिक अधिकारें दा गला दबारदा है। पाकिस्तान च इक दे मगरा इक जेड़ा भी शासन आया उन्हें POJK दे लोकें दे बुनियादी हक हमेशा खुसे गए। इस खेतर दे कन्ने एक उपनिवेश जनेया व्यवहार करदे होई इत्थुआं दी जनता गी ओ दर्जा नहीं दिता जेड़ा पाकिस्तानी नागरिकें दा, तेने गी दुए दर्जे दे नागरिक बनाइए रखिया। पाकिस्तानी शासन दे अत्याचारे ते वादा खिलाफी खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करदे होई POJK दे निवासियें 9 जून गी पूरी चाली बंद रखने दा आह्वान कीते दा है। ये फैसला ऐसे समय च लैता गया जिसले पाकिस्तानी अधिकारियों दे कन्ने 9 थमां 10 घंटे तक चली दी लंबी गल्लबात भी बिजन कुसै ठोस नतीजे ते पुज्जे दे नाकाम होई गई। इस गल्लबात च सभनें थमां बड्डा ते जेड़ा विवादास्पद मुद्दा हा ओह हा POJK दी विधानसभा च पाकिस्तान स्थित शरणार्थियें दे आस्तै आरक्षित 12 सीटें दा। मुकामी लोकें दा इनें आरक्षित सीटें गी अपने लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गी जानी बूझिए कमजोर करने दी सोची समझी साजिश मन्या जा करता है। उंदा आखना है जे जेड़े लोग इस थारा पर नहीं रौंदे उंदे आस्तै इत्थुआं दी विधानसभा च प्रतिनिधित्व देना मुकामी लोकें दे अधिकारें दा सिद्धा सिद्धा हनन है, सिद्धी सिद्धी खिलाफवर्जी है। POJK च आंदोलन कोई चान चक नहीं हुआ करदे हैं। अक्तूबर 2025 च भी बड्डे ते व्यापक प्रदर्शनें दे बाद पाकिस्तानी अधिकारियों कन्ने एक समझौता हुआ हा, पर उस दे च ज्यादातर वायदे अज भी छड़े कागजें तकर गए सीमित हैं। इस्लामाबाद की लगातार धोखाधड़ी ते टाल मटोल आली नीति ने लोकें दे सबर दा बन त्रोड़ी दिता है। इस बारी दा रो रोसा ते गुस्सा पहले थमां मता डूंगा गहरा ते संगठित है। POJK दे लोकें दी मंग कुसै खास राजनीतिक एजेंडे थमां नहीं सगुआं जीवन दी बुनियादी जरूरतें ते न्याय दी भावना थमां पैदा होई दी है। ओ विधानसभा च शरणार्थियां आस्तै आरक्षित 12 सीटें गी खत्म करना चाहुंदे न। ओ मंगला बांध थमां पैदा होने आली पनबिजली दा सही ते सस्ता हिस्सा चाहुंदे न कि जे बन उंदी नदियां पर बने दा है, उंदी गै जमीन पर खड़ोते दा है, फ्ही भी उनेंगी बिजली आस्तै बड़ी बड़ी कीमत चुकानी पौंदी है। इसदे अलावा सस्ते आटे ते कनक दी मंग करा करदे न ते बेलगाम महंगाई पर काबू पाने दी गुहार लाड़दे न। ओह राजनीति ते माली स्वायत्ता चाहुंदे न। संसाधने दे बड़े मते ओर दे गलत इस्तेमाल पर रोक चाहुंदे न ते प्रशासन च जेड़ा भ्रष्टाचार है ओहदा ओह खात्मा चाहुंदे न। ए मंगा इस गल्ला दियां गवां जे POJK दाके थमां जिस चाली दी व्यवस्थागत उपेक्षा आर्थिक तौर पर होने आली लूट ते राजनीतिक दमन दा शिकार रहा है। जमीनी हालात बड़े गै तनावपूर्ण, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, पिंबर समेत पूरे POJK च लोकें दा गुस्सा शमाने गी छुआ करदा है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलें दी भारी तैनाती उत्थे कीती गई है ते मुकामी नेताएं पर हड़ताल वापस लैने दा दबाव बनाया जा रहा है, पर जनता दा ये आक्रोश हुण कुसै सरकारी दबा या लालच कन्ने शांत होने आला नहीं है। POJK दी जनता ने साफ कर दिता है जे ओ हुण चुप नहीं बैठक। उंदी मंग साफ सरल स्पष्ट ते न्यासंगत है। बरोबरी, स्वायता ते अपनी गै धरती दे संसाधने पर अपना अधिकार। गल गुआंढियें दे अज दे शुमारे च बस इन्ना गै। कल करगे कुसै होर विशे पर गल्लबात।

हम आकाशवाणी भद्रा से आपसे मुखातिब हैं एफ एम 101 मेगाहर्ट्ज पर। सामीन, शाम के 6:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम शाम गज़ल। प्रोग्राम के आगाज़ में समाप्त कीजिए मेहदी हसन की आवाज़ में प्रोग्राम की पहली गज़ल।

सामीन, अभी आप सुन रहे थे मेहदी हसन को। आइए आप सुनते हैं गुलाम अली की आवाज़ में एक और गज़ल।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर and farmer-centric policies. Participants are Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator is Sonu Sood.
2: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on

0: farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashvani series on completion of 12 years of NDA government.
1: Namaskar, thank you.
0: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, ना सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
2: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग। मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हार्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हार्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है। दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खुल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है, फिशरी में गांव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत

0: सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया। उसमें जब पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा। ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहां बेचेगा वो, एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है। तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया। और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइन सो ब्यूटिफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इवन इन द डिफिकल्ट ईयर्स ऑफ कोविड द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रोइंग। हाउ डू यू सी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द यू नो मेजर एरियाज वेयर द गवर्नमेंट यू feel has you know hit the bullseye and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
2: Yeah, you know, for over a decade, you know, government of India under Prime Minister Modi ji's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision of a plan of Viksit Bharat. Yes. So when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it, and that is why over the last 10 years, you have seen several schemes that have been launched, several projects. They are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part, and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable.
1: Yes.
2: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that India is, if India's economy is going to reach the third largest economy, that India should be Annadata for the entire world. Yes. See, that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld. उनको मदद किया गया है, उनको हाथ पकड़ के खड़े होने के लिए जो भी साधन की जरूरत है वो सारी चीजें भी देते हुए भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज बिहाइंड इट। सो इन दिस ड्रीम, यू नो, टू सी दैट द रूरल इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, यू हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इनटू अकाउंट ऑल द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग लाइक क्लाइमेट चेंज, then ensuring market access and challenges in market access, the setting up of warehouses, setting up of cold storages, and also running green trains. You know, produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay and to South, that this whole thing, that entire India being one market, so that our farmers get a better price, has been is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is, you know, looking at direct income support. For instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters, because somewhere or other you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, you know, that is also a big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so that, you know, it focuses on low productivity districts. Focus on that. Then also, the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta in pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal vagara vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming. So that the future is natural farming. We can have chemical-free agriculture. And towards that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
1: Yes. Mr. Singh, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो

0: स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की, अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की उसकी बात करें, तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सकें।
1: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है। तभी फायदा होगा जब इनपुट कॉस्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले दो दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर ये और पैसा। तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है। जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था।
0: जी,
1: तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई
0: तो
1: गई
0: 25 करोड़ से ज्यादा
1: जी,
0: सॉयल हेल्थ
1: लगभग
0: कार्ड।
1: सभी किसानों के करा
0: जी
1: दिया गया। उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है, ताकि इससे यह पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए।
0: जी
1: दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही। तो आखिर कहां से खाद की उपलब्धता कहां से आ गई, ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता पंप होता है या नहरों से जाता है वो सिंचाई के काम में आता है, लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने है भी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है, जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी। फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी, यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया, और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी। कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं, ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल
0: तो
1: जाता
0: रियल
1: है।
0: टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता,
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन में। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब तो सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता, किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना

0: लाई गई। प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को। उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य अगर आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य,
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश यह होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी एमएसपी का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपए मिलता है तो किसान 27 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। ये सरकार ने बहुत बेहतर,
1: बिल्कुल। सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रैटेजी and have been successful?
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. Right. And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to take care of the expenditures. Then after the produce is harvested, he needs a market and a good price that will, that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what that we revised, keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-NAM, and along with that, now the lot of attention is being given for storage facilities. Okay. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. Yes. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore, particularly to take into account this particular problem. Yes. Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
1: Yes.
2: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere.
1: Yes.
2: Because invariably when you hear stories of farmer in distress because the production there is, like for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. कमिंग टू यू मिस्टर सिंह, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में, इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है, और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं, डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही हैं?
0: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। ये सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय। जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न

0: ऊंचा हो। और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या शुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा। सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है। दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया। तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं। 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे आज पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट। अब समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पे मिलता है। किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है, और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई है, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25-28 हजार रुपया, या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए, एक साल में का, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़, और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25-30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है। आपने जो कहा ना कि इस सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि KCC आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और, जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी KCC का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, कैन यू टेल अस दैट दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज हैड एन इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन एनी एंड एवरी सेक्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑफकोर्स यू मेंशन द PM किसान सम्मान निधि योजना, द वेरी वर्ड सम्मान इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। देन द फसल बीमा योजना यू टॉक्ड अबाउट, किसान मानधन योजना इज गिविंग पेंशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड नियरली अबाउट 25 lakh farmers have enrolled. And also another very interesting and enlightening statistic is that 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak. And this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final produce. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget, particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy

0: is per drop more crop. That is for every drop that is being, you know, water that is, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments. They have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem. That is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, we had the vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: एब्सोल्युटली सो मिस्टर सिंह, जैसा इन्होंने कहा मिस्टर अय्यर ने कि एक परिकल्पना है कि हम जो विश्व है उसको भी एक्सपोर्ट करें. हम ऑलरेडी एक्सपोर्टर, मेजर एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर बन गए हैं. 2014 से देखें तो 37% बढ़े हैं हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, $51 बिलियन हो गए हैं. और इसमें जो प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स हैं उनका शेयर भी बढ़कर 20% को पार कर गया है. सो एक शिफ्ट है टुवर्ड्स हायर वैल्यू एडेड. सो एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है फूड प्रोसेसिंग की तरफ. फूड प्रोसेसिंग पर बहुत सरकार ने जो बल दिया है, PLI भी आया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए. इसके बारे में आप हमें थोड़ी बता सकते हैं, जो वैल्यू एडेड और फूड प्रोसेसिंग है इस पर बल दिया जाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है?
2: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रॉ फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है, अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी, और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने, सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से, हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है. इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज, टमाटर के तौर, टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है. लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूसर्स, जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं.
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1,185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक. और जो PLI, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशन को मंजूरी मिली है. और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशन के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है. सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
2: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी, कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था, और उस फंड का पिछले अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा.

0: समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो ये जितना आपने बताया मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं सब उसका पार्ट हैं। और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा। जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है। और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड अ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट। प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट, कोको, कैश्यू, सैंडलवुड इन कोस्टल रीजन्स एंड अगर ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड आमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन हिली एरियाज, दीज हैव बीन डिफाइंड एज द फोकस एरियाज। सो यू थिंक यू नो दिस काइंड ऑफ वेरी फोकस्ड अप्रोच दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग लुकिंग एट द वेरी वास्ट एंड वेरीड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड यूजिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी?
2: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes, you talked of the need for to go in for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. Because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important for to take care of quality, to take care of branding and standards of our produce. This is very, very important. And for that, you know, agriculture experts, industry and farmers will have to jointly work towards this goal, which is actually the thrust area. Because as the markets of world are opening, as the Prime Minister himself put it, and global demand is changing, so we need to see that how we are more export oriented in our production. That is very, very important, because we have a rich agroclimatic zones. That is why, you know, Prime Ministers particularly mentioned, you know, you mentioned cashew, cocoa, sandalwood, and this national mission on edible oil and pulses, and the national mission for natural farming are particularly to meet this objective.
1: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government and the way forward. Thank you.
2: Thank you very much.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: इन द स्पेशल सीरीज यू वर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट Empowering Farmers Through Welfare and Farmer-Centric Policies. The participants were Shekhar Iyer, Political Analyst, and S.P. Singh, Senior Journalist. The moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
5: के सीईओ डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि कल भी एक परवाज के जरिए से 145 हुजाज श्रीनगर पहुंच रहे हैं। इंतजामिया ने हुजाज की वापसी के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल किए हैं। वाजह है कि हज कमेटी के जरिए से इस साल 4,641 हुजाज ने फरीज हज अदा किया। हुजाज किराम की वापसी का यह सिलसिला 16 जून तक जारी रहेगा। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने श्रीनगर में आज कौमी आयुष मिशन के तहत जेएनके आयुष सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की एक मीटिंग के दौरान मिशन के सालाना मंसूबे का जायजा लेकर इसे मंजूर किया। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर को मुल्क का एक बेहतरीन वेलनेस टूरिज्म मकाम दिलाने के लिए हर तरह के इकदाम करने की जरूरत पर जोर दिया। जेएनके एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज के अहतमाम से आज आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में मारूफ कलमकार, ब्रॉडकास्टर, शायर और मुहक्किक डॉक्टर सतीश विमल के साथ मुलाकात की एक निशस्त मुनक्किद हुई। निशस्त की सदारत पद्मश्री अवार्ड याफ्ता कलमकार और अदीब प्रोफेसर शफी शोक ने की, जबकि इस मौके पर आकाशवाणी श्रीनगर के सर

0: ये वो ये है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे पास इस वक्त हैं, तो इनका एनकाउंटर करने के लिए इसके टीचर इसके लिए तैयार हो सकते हैं। अगर
1: भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जज साहबान को ओहदे का हलफ दिलाया। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30.7 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 37.7 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:20 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:38 पर होगा। इसके साथ ही एक खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
2: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, समाप्त करें तबसिरा।
3: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। खेत बचाओ अभियान कल यानी यकम जून से शुरू हो गया है, जो पूरा एक महीना चलेगा। इस दौरान खादों के मुतवाजन इस्तेमाल, मिट्टी की जरखेजी और पायदार काश्तकारी को फरोग देने के लिए पंचायती सतह पर कैंपों का एहतमाम किया जा रहा है। वजारत ज़राई तहकीक व तालीम के तहत कायम ज़राई तहकीक की हिंदुस्तानी काउंसिल ने मुल्कगीर खेत बचाओ अभियान के तहत नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं, जिसकी बुनियादी तवज्जो मिट्टी की सेहत, खादों के मुतवाजन इस्तेमाल और पायदार ज़राअत पर मरकूज है। किसानों और मुतलका शराकतदारों को गजाई अज्जा के साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में आगाह करने के लिए खेत बचाओ अभियान ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुल्क भर में एक मजबूत रसाई कायम की है। इस अभियान के तहत बेदारी कैंप और सेमिनारों के जरिए किसानों को बराए रास्त शामिल किया जाएगा। निचली सतह पर अवामी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए पंचायती सतह पर जन प्रतिनिधि सम्मेलन मुनअक्द किए जाएंगे। ये मुहिम मुल्क भर के सभी 6,64,000 देहात में एक साथ चलाई जा रही है। इस मुहिम में किसानों के ग्रुपों से भी इस्तेफादा किया गया, जिसके तहत FPOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स के जरिए किसानों को जोड़ा गया है। मुहिम की बड़े पैमाने पर तशहीर के लिए मुल्क भर में बैनर्स, पोस्टर्स और होर्डिंग समेत पब्लिसिटी मवाद की नुमाइश की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, डिजिटल रसाई के जरिए इस मुहिम के दायरे कार को किसानों तक पहुंचा दिया जाएगा। खेत बचाओ मुहिम 30 जून तक ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत के जरिए शुरू की गई मुल्कगीर अवामी तहरीक है। सरकारी स्कीमों के फवायद के तहत पंचायत से रियासती सतह तक तालमेल के जरिए किसानों को मिट्टी की जाँच, सॉयल हेल्थ कार्ड और ज़राअत से मुतलिक दीगर स्कीमों का बराए रास्त फायदा फराहम करना है। ज़राई अफसरान गाँव गाँव जा रहे हैं और मौसम, मिट्टी और मार्केट के मुताबिक किसानों की रहनुमाई कर रहे हैं। इस मुहिम की जरूरत इस वजह से भी महसूस की गई कि अनाज के मामले में मुल्क को हर लिहाज से खुद कफील बनाया जाए, ताकि इजाफी पैदावार को फरोख्त करके किसानों को ज्यादा से ज्यादा माली फवायद हासिल हो सकें। किसान मुल्क के इकतसादियात में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, लिहाजा खेत बचाओ अभियान मुल्क के इकतसादियात को बराए रास्त फरोग देने की पहल है, जिसके दूरस नतीजे निकलेंगे। तबसरा खत्म हुआ। शब खैर।
2: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियावेव के अलावा FM 103.5 MHz पर समय समाप्त करें प्रोग्राम वादी की आवाज इस वक्फे के बाद।
4: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
5: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। समिन खारजा पॉलिसी किसी भी मुल्क के कौमी मफादात, सलामती और बैन अलाक्वामी ताल्लुकात की अकासी होती है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी अपने कयाम से लेकर आज तक मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी तब्दीलियों के असरात से गुजरती रही है। मौजूदा दौर में आलमी सियासत तेजी से तब्दील हो रही है, नई मौशी और तजवीराती सफबंदियां सामने आ रही है, जबकि आलमी ताकतों के दरमियान मुसाबकत में इजाफा हो रहा है। ऐसे हालात में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए इम्तहान से गुजर रही है और बदलते हुए आलमी मंजरनामे के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के लिए इलाकाई सियासत हमेशा खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा रही है। जनूबी एशिया, मशरक वस्ता और वस्ती एशिया में होने वाली सियासी और सिक्योरिटी तब्दीलियां बरह रास्त पाकिस्तान के मफादात को मुतासर करती हैं। इसी वजह से इलाकाई इस्तेहकाम, सरहदी सलामती और इक्तसादी ताउन पाकिस्तान की खारजा तरजीहात में नुमाया हैसियत रखते हैं।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सामिन, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जो अपने वसी रकबे, कुदरती वसाइल, जोग्राफियाई अहमियत और सकाफती तनु की वजह से खास अहमियत रखता है। इसके बावजूद बलूचिस्तान कई दहाइयों से मुख्तलिफ सियासी, मुआशी, समाजी और सिक्योरिटी मसाइल का सामना कर रहा है। ये मसाइल न सिर्फ सूबे की तरक्की को मुतासर कर रहे हैं बल्कि कौमी यकजहती और रियासती इस्तेकाम के हवाले से भी अहम सवालात पैदा कर रहे हैं। मौजूदा हालात में बलूचिस्तान के मसाइल और कौमी यकजहती का ताल्लुक पाकिस्तान के अहम तरीन कौमी मबाहिस में शामिल है। बलूचिस्तान को कुदरती वसाइल से मालामाल समझा जाता है मगर सूबे की एक बड़ी आबादी अब भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तालीम, सेहत, साफ पानी, सड़कों और रोजगार के मौके की कमी ने आवाम में एहसास महरूमी को बढ़ा दिया है। जब किसी इलाके के आवाम तरक्की के समरात से खुद को दूर महसूस करें तो अदम इत्मीनान और बेचैनी पैदा होना फितरी अम्र बन जाता है। मुआशी पसमानदगी बलूचिस्तान के अहम मसाइल में से एक है। अगरचे सूबा मैदनियात, गैस और दीगर कुदरती वसाइल से भरपूर है लेकिन मकामी आबादी का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार है। महदूद सनती सरगर्मियों और मुआशी मौके की कमी के बायस नौजवान नस्ल को मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। तालीम का शोबा भी बलूचिस्तान में कई मुश्किलात का शिकार है। दूर दराज इलाकों में तालीमी इदारों की कमी, बुनियादी सहूलियात का फुकदान और शरह ख्वानदगी की नस्बतन कम सतह सूबे की इंसानी तरक्की को मुतासर कर रही है। तालीमी पसमानदगी के बायस नौजवान कौमी तरक्की के धारे में मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं हो पा रहे। सेहत के शोबे में भी सूरत हाल तश्वीशनाक दिखाई देती है। कई इलाकों में मयारी तबी सहूलियात और माहिर अमले की कमी मौजूद है जिसके बायस अवाम बुनियादी सतह की खिदमात हासिल करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये मसाइल अवामी जिंदगी के मयार पर बराहे रास्त असर डाल रहे हैं। बलूचिस्तान की जोग्राफियाई वसत भी इंतजामी और तरक्याती चैलेंजेस को बढ़ा रही है। दूर दराज इलाकों तक रसाई, बुनियादी ढांचे की कमजोरी और आबादी का फैलाव तरक्याती मंसूबों की रफ्तार को मुतासर कर रहा है। इसी वजह से बाज इलाकों में तरक्की का अमल सुस्त रवि का शिकार नजर आता है। सिक्योरिटी के मसाइल भी बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गहरे असरात मुरतब कर रहे हैं। बदअमनी, शिदत पसंद सरगर्मियां और बाज अलाइदगी पसंद रुझानात ने अमनो अमान की सूरत हाल को मुतासर किया है। इसके नतीजे में न सिर्फ अवामी जिंदगी मुतासर हो रही है बल्कि सरमायाकारी और तरक्याती सरगर्मियां भी दबाव का शिकार है। सियासी नुमाइंदगी और अवामी शमूलियत के हवाले से भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बाज हलकों में यह एहसास मौजूद है कि सूबे के मसाइल और मुतालबात को मतलूबा तवज्जो नहीं मिल रही। यही एहसास बाज औकात मरकज और सूबे के दरमियान फासले के तासुर को बढ़ा देता है। बलूचिस्तान के मसाइल कौमी यकजहती से बराह रास्त जुड़े हुए हैं। कौमी यकजहती उसी वक्त मजबूत होती है जब तमाम इकाइयां खुद को रियासती निजाम का मसावी और मौसर हिस्सा महसूस करें। अगर किसी इलाके में महरूमी, पसमानदगी या अदम इत्मीनान के एहसासात बढ़े तो इसके असरात कौमी सतह पर भी महसूस किए जाते हैं। मौशी और समाजी अदम तवाजुन कौमी हम आहंगी को मुतासर कर रहा है। बलूचिस्तान के कई इलाकों में अवाम तरक्की और मौके के हवाले से दीगर हिस्सों के मुकाबले में पीछे महसूस करते हैं। ये एहसास कौमी यकजहती के लिए एक अहम चैलेंज के तौर पर सामने आता है। सामिन, बलूचिस्तान के मसाइल और कौमी यकजहती एक दूसरे से गहरे तौर पर मुंसलिक हैं। सूबे में पाई जाने वाली मुआशी पसमानदगी, तरक्याती अदम तवाजुन, सिक्योरिटी चैलेंजेस और एहसास महरूमी कौमी सतह पर भी असरात मुरतब कर रहे हैं। मौजूदा हालात में बलूचिस्तान पाकिस्तान की कौमी सियासत, मईशत और समाजी हम आहंगी के एक अहम मौजू के तौर पर मौजूद है जहां मसाइल की पेचीदगी और कौमी यकजहती की जरूरत बेक वक्त नुमाया दिखाई देती है। सामीन, ये तो थी बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में समाप्त करते हैं एक और नगमा।

हम आकाशवाणी भद्रा से आपसे मुखातिब हैं FM 101 MHz पर। सामीन, रात के 8:30 हुए हैं। अब पेश की खिदमत है चंद गतिशी नगमे।

सामीन, कुछ ही देर बाद यानी 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे अंग्रेज़ी में खबरें और 9:15 पर उर्दू में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। लेकर ज़रा सा इंतज़ार कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है।

0: ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा मशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाले सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
4: 2-3 branches also.
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
5: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने सीबीएसई की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है। हुकूमत ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फिजा से जमीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपने आगाज के 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज्यादा सारेफीन का संगे मील पार कर लिया है। यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं। और खवातीन क्रिकेट में आज रात टोंटन में तीसरे और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सीबीएसई की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम सिस्टम खिदमात की खरीद से मुतालिक मामलात की जांच के लिए एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी की सरबराही सलाहियत साजी कमीशन की चेयरपर्सन राधा चौहान करेंगी। कमेटी से अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अमले और तरबियत के महकमे को पेश करने को कहा गया है। तलबा को फराहम करदा स्कैंड कॉपियों में पाए गए मामलात के वेरिफिकेशन का अमल और 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच जारी है। ये सहूलत सिर्फ उन्हीं तलबा को दस्तियाब है जिन्होंने जांच किए गए अपने जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल की हैं। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: सरपंचन अनासिर की जानिब से लगातार साइबर हमलों की वजह से रुकावट के बाद सीबीएसई पोर्टल जल्द ही लाइव कर दिया गया है। ताहम सीबीएसई ने यकीन दहानी कराई है कि वो तलबा की हर तरह से मदद को यकीनी बनाने के लिए लगातार चौकसी बरत रहा है। सीबीएसई ने मजीद कहा है कि तलबा के फीडबैक की बुनियाद पर प्लेटफॉर्म को मजीद बेहतर किया गया है और सेशन टाइम में भी इजाफा किया गया है ताकि कामकाज को ज्यादा आसान तर्ज पर और बिला रुकावट तरीके से अंजाम दिया जा सके। सीबीएसई ने कहा है कि 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच से मुतालिक उसका पोर्टल फिलहाल 8,000 से ज्यादा सारिफिन की मदद कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में सीबीएसई ने बताया है कि 16,000 से ज्यादा तलबा अब तक कामयाबी से अपने मंदरजात पेश कर चुके हैं। सीबीएसई का पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा और ऑफलाइन दरख्वास्तें या मुद्दत गुजरने के बाद दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: इस दौरान सीनियर आईएएस अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई का नया चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। जनाब सीताराम वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी की खिदमात अंजाम दे रहे थे। उनकी तकरूरी राहुल सिंह की जगह हुई है जिनका बतौर एडिशनल सेक्रेटरी ज़िरात और किसानों की बहबूद के महकमे में तबादला कर दिया गया है। हुकूमत ने वरुण भारद्वाज को भी सीबीएसई में सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। वो आला तालीम के महकमे में डायरेक्टर के फ़राइज अंजाम दे रहे थे। तकरीरों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने इन तकरूरात को मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम बाख्तियार बनने का ताकतवर वसीला है जो लोगों को खुद कफील, बाखबर और बासलाहियत बनाती है। सदर जमहूरिया आज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप स्कीम के कबायली मुस्तफदीन से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हकीकी मानी में तरक्की तभी मुमकिन है जब माशरे के सभी तबकात समाजी, इकतसादी और तालीमी तरक्की करें।
2: जुबा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातियों समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीमों ने कबाइलियों की जिंदगी में यकसर तब्दीली लाई है और उनके लिए आला तालीम और नए मौके तक रसाई मुमकिन हो पाई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि भारत में हुनर की कोई कमी नहीं है और उन्होंने उसे फरोग देने के लिए उसकी निशानदेही करने, परवान चढ़ाने और सही मकाम अता करने पर जोर दिया।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के तहत भारत में खातिरख्वाह तब्दीली लाई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में खसूसी फ़ीचर पेश कर रहा है। आज ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में हम बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान भारत में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के सिमत में नुमाया तब्दीली हुई है, जो हुकूमत की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। इन कोशिशों का मकसद ख़वातीन को सेहत, तालीम, रोज़गार के मौके, माली शमूलियत और क़्यादत के शोबों तक रसाई को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो 2015 में शुरू की गई थी, ने लाखों ख़वातीन को अपना कारोबार शुरू करने और इसे वसअत देने के लिए बग़ैर ज़मानत के कर्ज़ हासिल करने के काबिल बनाया है। इस स्कीम के तहत रवा माली साल मार्च तक 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज मुस्तफिदीन को फराहम किए गए हैं, जिनमें से 17 लाख करोड़ रुपए ख़वातीन को दिए गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमनिया जैसे अहम प्रोग्रामों ने मुश्तरका तौर पर ख़वातीन की बैंककारी, बचत और कारोबारी प्लेटफार्म तक रसाई को मजबूत बनाया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 33 करोड़ अकाउंट्स ख़वातीन के नाम हैं। दीपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि भारत और नेपाल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में किसी तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं है। वजारत खारजा में तर्जमान रणधीर जायसवाल ने नेपाल के वजीर आजम की भारत नेपाल सरहद से मुतालिक रायजनी और उसके बाद नेपाल की वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान के जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरहद से मुतालिक मामलात के सभी पहलुओं से निमटने के लिए कायम शुदा बाहमी तरीक़ेकार मौजूद है। जनाब जायसवाल ने कहा कि हालांकि भारत नेपाल सरहद के तकरीबन 98% हिस्से की वाजह तौर पर हदबंदी हो चुकी है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर काम होना है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन मुश्तरका बयान में गैर ज़रूरी तस्करे को भी मुस्तरद कर दिया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट हिस्से हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के सिलसिले में जिनकी खुद कोई हैसियत न हो, उन्हें कोई बात कहने से गुरेज करना चाहिए। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिगेज़ कल से भारत के 4 रोज़ा दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनके हमरा खारजी उमूर, इक्तसादी व मालियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, मवासिलात व इत्तलात और नकलो हमल के महकमों के वज़रा भी होंगे। जनाब जायसवाल ने कहा कि मोहतरमा रोड्रिगेज़ अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दोतरफा बातचीत करेंगी। इस बातचीत में तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल, अद्वियात और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों में इश्तराक के इम्कान तलाश करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मरकज़ ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक जाब्तों में तरमीमात को नोटिफाई कर दिया है। ये तरमीमात 180 दिन तक भारत आ रहे गैर मुल्की अफराद को मुल्क में अपने क़याम में तौसी की ख्वाहिश की सूरत में उन अफराद के वीज़े की मुदत ख़त्म होने से पहले रजिस्टर करने को मुमकिन बनाती हैं। वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तरमीमी जाब्तों 2026 को नोटिफाई किया है, जिसमें इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक जवाबित 2025 के तहत रजिस्ट्रेशन की मुद्दत और अपील मैकेनिज्म में अहम तब्दीलियां मुतारिफ कराई गई हैं। जाब्तों में पहली मरतबा ऑनलाइन अपील निज़ाम को जोड़ा गया है। किसी ऑर्डर से मुतासरा कोई शख्स अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के कमिश्नर के पास ऑनलाइन अपील दाखिल कर सकता है। ऑर्डर मौसूल होने के 30 दिन के अंदर अपील दाखिल करना लाजमी होगा। कमिश्नर को 60 दिन के अंदर मुतल्लिका फरीकों को सुनना और मामले को हल करना होगा। भारत ने फिजा से जमीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO और भारतीय फिजाइया की जानिब से सभी अहम निज़ाम की सलाहियत को कायम रखते हुए ये आजमाइशी तजुर्बा किया गया। वजारत दिफा ने कहा कि इन मिसाइल को पहले से तयशुदा निशाने की जानिब दागा गया। चांदीपुर में मरबूत टेस्ट रेंज पर नसबशुदा मुख्तलिफ आलात की जानिब से परवाज से मुतालिक डेटा में इस बात की तस्दीक की गई है कि इस आजमाइशी तजुर्बे के सभी मकासद हासिल कर लिए गए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय फिजाइया, दिफा से मुतालिक सरकारी कंपनियों, शराकत दारों और सनतकारों को इस उसूलियाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि इस कामयाब आजमाइशी तजुर्बे से अंदरून मुल्क तैयार करदा दिफाई टेक्नोलॉजियों की बढ़ती सलाहियत का इजहार होता है और जदीद हथियार निज़ाम के सिलसिले में आत्मनिर्भरता की जानिब ये अहम कदम है। प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव्स OTT ने नवंबर 2024 में अपने आगाज के बाद से 2 साल से भी कम वक्त के अंदर 1 करोड़ रजिस्टर्ड सारिफिन से तजावुज़ कर लिया है। इत्तिलात व नशरियात की वजारत ने कहा है कि इस संगी मील से अंदरून मुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियार किए जाने की अक्कासी होती है जो नाजरीन को काबिल भरोसा और मुख्तलिफ तरह का मवाद फराहम करता है। 1,40,00,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स के साथ अब वेव्स OTT कंटेंट के सिलसिले में शराकत दारी को वसअत देने, इलाकाई और तालीमी मवाद को मुस्तहकम करने और मार्च 2027 2 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स के निशाने को हासिल करने के पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर 24,000 से ज़्यादा कंटेंट टाइटल्स, 15,000 घंटे से ज़्यादा कंटेंट, 140 से ज़्यादा लाइव TV चैनल्स और 200 से ज़्यादा रेडियो खिदमात दस्तियाब हैं। यकसां अदायगी के निज़ाम UPI ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ मालियत के माशी लेन देन का इंदराज किया है। मालियाती खिदमात के महकमे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में डिजिटल अदायगियों को अपनाने पर शहरियों का शुक्रिया अदा किया है। रूस की जानिब से यूक्रेन की राजधानी कीव और दीगर यूक्रेनी शहरों पर रात भर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम अज कम 21 शहरियों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों में शहरी बुनियादी ढांचे और तवानाई के मराकज को निशाना बनाया गया। जनाब जेलेंस्की ने अमरीका से मजीद पेट्रियॉट फिजाई दिफाई मिजाइलें फराहम करने की दरख्वास्त की। इस दौरान रूस की वजारत दिफा ने कहा कि ये हमले यूक्रेन की जानिब से किए गए हमलों के जवाब में किए गए हैं। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया कि सभी तयशुदा ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। आलमी मौसमियाती महकमे WMO ने सख्त इंतबाह जारी किया है कि एल नीनो का मौसमी निज़ाम तश्कील पा रहा है और तवक्को है कि ये इस साल दुनिया भर में शदीद मौसमी हालात पैदा करेगा। मौसमियाती इदारे के मुताबिक इस बात का 80% इम्कान है कि एल नीनो का मौसमी निज़ाम इस साल जून और अगस्त के दरमियान पैदा होगा और नवंबर तक बरकरार रहेगा। साइंसदानों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली इसके असरात को मजीद शदीद बना देगी। हुकूमत ने फैसला किया है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI को मरहलेवार तरीके से ख़त्म करके उसकी जगह प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI का जाम निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। ये फैसला मुल्क के अफरात ज़र और कीमतों से मुतालिक आदाद व शुमार के निज़ाम को जदीद बनाने और उसे आलमी बेहतरीन तरीक़ों से हम आहंग करने के लिए किया गया है। ख्वातीन क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी सीरीज़ का तीसरा और आखिरी T20 बैन अवी मैच आज रात इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। भारत ने चेम्सफोर्ड में खेला गया पहला मैच 38 रन से जीतकर और इंग्लैंड ने ब्रिस्टल में खेला गया दूसरा मैच 26 रन से जीतकर सीरीज़ को बराबरी पर ला खड़ा किया है। और आखिर में ख़ास ख़ास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है। हुकूमत ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फिजा से ज़मीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने अपने आगाज के 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा सारिफिन का संगे मील पार कर लिया है। यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं और ख्वातीन क्रिकेट में आज रात टोंटोन में तीसरे और आखिरी टी20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
4: हम आकाशवाणी भद्रा से आपसे मुखातिब हैं FM 101 MHz पर। समय रात के 9:30 हुए हैं। अब पेशे खिदमत है उर्दू मुशायरा।
5: ऑल इंडिया रेडियो भद्रवा की वसादत से एक अदबी प्रोग्राम, एक शेरी मजलिस का इनेकाद हुआ चाहता है। आज के इस शेरी मजलिस में जो वादिये चिनाब के मोतबर शौरा शामिल महफिल हैं, उनके इसमें गरामी हैं। मोहतरम जनाब हसीफ रज़ा जो डोडा से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहतरम जनाब जाफिर ताबिश किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहतरम जनाब आसिफ अताउल्ला डोडा से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहतरम जनाब तौसीफ ताबिश भद्रवा से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं खाकसार नाजिम शेरी नशिस्त साजिद सरमदी। वादिय चिनाब दहाइयों से इल्म व अदब का गहवारा रहा है और इस वादिय चिनाब ने मुल्की सतह के कदावर शौरा को जन्म दिया है, जिनमें मोहतरम जनाब मरहूम रसा जावदानी, मरहूम जहाँबाज किश्तवाड़ी, मोहतरम जनाब बशीर बद्रवाही, मरहूम तालिब भलेसवी, मरहूम गोनी गोरगानी, मरहूम शौकत फरीदी जैसे कदावर शौरा शामिल हैं। इस रिवायत को हमारी नई पूद उसी वलवले उसी नहज पर आगे ले जा रही है। आइए शेरी नशिस्त का आगाज़ जवां साल शायर जिनके कलाम बालिग है, मेरी मुराद है मोहतरम जनाब हसीब रज़ा, जिनकी नज़र बड़ी गहरी है, तख़य्युल वसी है और एहसासात उफ़ुक़ को छूने वाले हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने कलाम से नवाजे। मोहतरम जनाब हसीब रज़ा।
6: बहुत शुक्रिया सदर मजलिस की इजाज़त से।
7: इरशाद।
6: हम गुमा के हैं वो यकीन के हैं, हम गुमा के हैं वो यकीन के हैं, हम कहीं के हैं वो कहीं के हैं।
7: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
6: हम गुमा के हैं वो यकीन के हैं, हम कहीं के हैं।

0: वो कहीं के हैं, मसाला और कोई है ही नहीं,
1: मसाला
0: और
1: कोई
0: है
1: है ही
0: ही नहीं,
1: नहीं,
0: मसाले सब तेरी नहीं के हैं।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह
2: वाह वाह,
0: बहुत
2: अच्छा
0: शुक्रिया।
2: अच्छा है, बहुत अच्छा।
0: शहरे गिरिया से आ पाए हैं,
1: हाँ
0: शहरे गिरिया से आ पाए हैं, हम भी पैदाइशी वहीं के हैं।
1: क्या बात,
2: अरे
1: क्या
2: वाह
1: बात
2: क्या
1: है,
2: बात,
1: बहुत
2: वाह
1: अच्छा,
0: शहरे
1: वाह
0: गिरिया से आ पाए
1: वाह
0: हैं,
1: वाह,
0: हम भी पैदाइशी वहीं
1: वहीं
0: के
1: के हैं।
0: हैं। हम के हो सकते थे जो रश के फलक, हम के हो सकते थे जो रश के फलक, क्या सितम है कि हम जमी के हैं।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत
2: वाह
1: अच्छे,
2: वाह वाह, फिर
1: हम के
2: पढ़िए।
0: हो सकते थे जो रश के फलक, क्या सितम है कि हम जमी के
1: जमीन के,
0: हैं।
1: आहा,
0: ये जो नाले सुनाई देते हैं,
2: आहा।
0: ये जो नाले सुनाई देते हैं, या मकां के हैं या
1: या
0: मकी
1: मकी
0: के
1: के हैं,
0: हैं।
2: क्या
0: क्या
2: क्या
0: बात,
1: क्या
0: क्या
1: बात है,
0: कहना,
1: बहुत
2: क्या
1: अच्छे,
2: कहना। ये जो
1: बहुत
0: नाले
1: अच्छा,
0: सुनाई देते हैं, या मकां के हैं या मकी के
1: मकी के
0: हैं,
1: हैं,
0: और हाले रफ्ता हुए जो नक्श मेरे,
2: हाल
0: हाले
2: रफ्ता,
0: रफ्ता हुए जो नक्श मेरे, मुझ पे एहसान नुक्ताची के हैं।
1: आहा, बहुत अच्छे,
0: हाले रफ्ता हुए
1: वाह,
0: जो नक्श मेरे, मुझ
1: मुझ
0: पे
1: पे एहसान,
0: एहसान नुक्ताची के हैं। और अच्छे लगते हैं उनको सुर्ख गुलाब,
2: अच्छा,
0: अच्छे लगते हैं उनको सुर्ख गुलाब, और हम शाखे यास्मी के हैं।
1: क्या बात है, बहुत
0: अरे
1: अच्छे,
0: अच्छे
1: क्या
0: लगते
1: बात,
0: हैं उनको सुर्ख गुलाब, और हम शाखे यास्मी के हैं।
2: वाह वाह वाह वाह,
0: और एक और गज़ल से चंद अशआर।
1: इरशाद इरशाद,
0: ख्वाब टूटे हैं ये सीना है हुआ चीर तभी,
2: ख्वाब टूटे हैं,
0: ख्वाब टूटे हैं ये सीना है हुआ चीर तभी, चश्म खूंबार है अब मानदे कश्मीर तभी,
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: जहन ही अपने मुकफ्फल जो हुए रखे हैं, जहन ही अपने मुकफ्फल जो हुए रखे
2: रखे
0: हैं,
2: हैं,
0: हमको दिखती नहीं पाऊं मैं ये
1: ये
0: जंजीर
1: जंजीर,
0: तभी।
2: वाह वाह वाह,
1: बहुत अच्छे, बहुत
0: और
1: अच्छे,
0: कोई ताबीर करे ख्वाब में देखा कल शब,
1: आहा,
0: कोई
1: कोई ताबीर
0: ताबीर करे
1: करे
0: ख्वाब
1: ख्वाब
0: में
1: में
0: देखा
1: देखा
0: कल
1: कल
0: शब,
1: शब,
0: मैं के यारों में था मुझ पे चली शमशीर
1: शमशीर तभी,
0: तभी।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फिर बढ़ो हंसी,
0: कोई
1: वाह वाह वाह,
0: ताबीर करे ख्वाब में देखा कल शब,
2: वाह
0: मैं के यारों में था मुझ पे चली शमशीर
1: शमशीर तभी,
0: तभी।
1: आहा,
2: वाह वाह
0: और
2: वाह,
0: इनको तारीकी पसंद है मगर इतनी भी नहीं, इनको तारीकी
1: नहीं,
0: पसंद है मगर इतनी भी नहीं, मेरे आंगन में उतरते नहीं शबगीर तभी।
2: वाह वाह
0: और
2: शबगीर,
0: चाशनी आती है अशआर में ऐसा करते,
2: चाशनी
0: चाशनी
2: आती है,
0: आती है अशआर में ऐसा करते, बस तुम्हें सोचता हूं मैं दमे तहरीर तभी।
1: क्या
0: वाह वाह
1: बात है, क्या
0: वाह, क्या
1: बात,
2: बात है, क्या बात है,
0: शेर है कि असलहा पर हैं जड़े दस्ते हुकुमरां के निशान,
1: क्या
0: असलहा पर
2: असलहा,
0: हैं जड़े दस्ते
1: दस्ते
0: हुकुमरां के
1: हुकुमरां के
0: निशान,
1: निशान,
0: सो मेरे कत्ल की होती नहीं तशहीर तभी।
1: क्या बात,
2: वाह वाह वाह वाह,
1: बहुत अच्छे,
0: और उसका हथियार उठा और मेरा दस्ते दुआ,
1: आहा,
0: उसका हथियार
1: हथियार
0: उठा
1: उठा
0: और
1: और
0: मेरा
1: मेरा
0: दस्ते
1: दस्ते दुआ,
0: दुआ, काम दुश्मन की ना आई कोई तदबीर
1: तदबीर,
0: तभी।
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: कहना,
1: है, क्या
0: क्या
1: बात है,
2: कहना, क्या
0: और
2: बात,
0: आखिरी शेर है कि कीमती चीजें सभी अपनी दिखाने जो लगे, कीमती चीजें सभी अपनी दिखाने जो लगे, मैंने बटवे से निकाली तेरी तस्वीर
1: तस्वीर तभी,
0: तभी।
1: बहुत अच्छे,
2: हाँ हाँ
1: बहुत
2: फिर पढ़िए,
1: अच्छे,
2: फिर
1: बहुत
2: पढ़िए।
1: अच्छे,
0: कीमती चीजें सभी अपनी दिखाने जो लगे,
2: हाँ,
0: मैंने बटवे से निकाली तेरी तस्वीर तभी।
1: बहुत
0: वाह
1: अच्छे,
0: वाह बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया,
1: अच्छे,
0: क्या
1: वाह
0: बात,
1: वाह,
0: बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया।
1: अच्छे,
2: तो ये थे बहुत जिनाब हसी बरहज़ा। अब जिस जवासाल शायर को मैं दावती सुखन देना चाहूँगा, उनके कलाम में सोजे दरों भी है और तो लज्जत वसल की शादकामी भी, ज़बां की बारीकियों से पूरी तरह आगाह है, मेरी मुराद है आसिफ अताउल्लाह। उनसे मोहतरमाना गुजारिश है कि वो अपने हसी कलाम से सामईन को नवाजें। मोहतरम जनाब आसिफ अताउल्लाह।
3: बहुत शुक्रिया।

0: सदर महफिल की इजाज़त से
1: इरशाद
0: अलग अलग
1: इरशाद।
0: गज़लों से चंद अशार। कोई रस्में जुनून न की मैंने,
1: हाँ
0: हाँ, कोई रस्में
1: रस्मी
0: जुनून
1: जुनून
0: न
1: न
0: की
1: की मैंने।
0: मैंने, शबे हिजरा में चू न की मैंने।
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: बात
1: कहने,
0: है,
1: क्या
0: क्या
1: बात कहने,
0: कहने,
1: क्या बात,
0: बहुत अच्छे। कोई रस्में जुनून न की मैंने,
1: क्या कहने।
0: शबे
1: शबे
0: हिजरा
1: हिजरा
0: में
1: में
0: चू
1: जुनून
0: न
1: न
0: की
1: की मैंने।
0: मैंने,
1: आहा,
0: बात करते ही सोच कर देखा,
1: बात करते ही सोच कर देखा,
0: बात करते ही सोच कर देखा, सोच कर
1: सोच कर
0: बात क्यों
1: बात
0: न
1: क्यों
0: की।
1: न की। क्या
0: ना क्या
1: बात है, फिर
0: कहने यार,
1: पढ़िए, फिर
0: क्या
1: पढ़िए
0: बात,
1: ने, क्या
0: बात
1: कहने।
0: करते ही सोच कर देखा,
1: हाँ सोच
0: सोच
1: कर
0: कर बात
1: बात
0: क्यों
1: क्यों
0: न
1: न
0: की
1: की मैंने।
0: मैंने,
1: क्या बात है,
0: हाँ,
1: क्या बात
0: कोई
1: है,
0: रस्में जुनू न की मैंने, शबे हिजरा में चू न
1: चू न
0: की
1: की मैं।
0: मैंने।
1: वाह वाह
0: क्या
1: वाह
0: बात,
1: कहने,
0: मतलब
1: वाह।
0: अराय मतलब के मेरे दिल में कोई कयाम करे,
1: हाँ
0: मेरे दिल में कोई कयाम करे,
1: हाँ
0: हाँ मगर कौन ऐसा काम करे।
1: आहा आहा
0: मेरे
1: अच्छा।
0: दिल में कोई कयाम करे,
1: हाँ मगर
0: हाँ मगर कौन ऐसा काम
1: काम करे,
0: करे,
1: आहा।
0: मैं उसी आदमी से बोलूंगा,
1: क्या
0: मैं
1: कहने,
0: उसी आदमी से
1: से बोलूंगा।
0: बोलूंगा जो मेरी चुप का एहतराम करे।
1: क्या
0: वाह वाह
1: अच्छे,
0: वाह
1: क्या
0: वाह,
1: बात,
0: बहुत
1: क्या
0: अच्छे
1: बात,
0: बहुत
1: बहुत वाह
0: अच्छे।
1: वाह, क्या
0: मैं
1: अच्छे,
0: उसी आदमी से बोलूंगा
1: जो मेरी चुप का एहतराम करे।
0: जो
1: आहा
0: मेरी चुप का एहतराम करे। एक मतलब और दो शेर और देखेंगे। हम ऐसे इश्क में फरहाद के मुकल्लिद हैं,
1: अच्छा।
0: हम ऐसे इश्क में फरहाद के
1: फरहाद के
0: मुकल्लिद
1: मुकल्लिद।
0: हैं, जदीद होके भी अजदाद के मुकल्लिद
1: मुकल्लिद,
0: हैं।
1: आहा
0: क्या बात,
1: आहा,
0: हम ऐसे इश्क में फरहाद
1: फरहाद
0: के
1: के
0: मुकल्लिद
1: मुकल्लिद
0: हैं,
1: हैं,
0: जदीद
1: हो
0: होके
1: के
0: भी
1: भी
0: अजदाद
1: अजदाद के
0: के
1: मुकल्लिद
0: मुकल्लिद
1: हैं।
0: है, तेरे ख्याल के आते ही आने लगते हैं, तेरे ख्याल के आते ही आने लगते हैं, ये मेरे अश्क तेरी याद के मुकल्लिद
1: मुकल्लिद
0: हैं।
1: हैं,
0: क्या
1: क्या
0: कहने
1: बात,
0: यार,
1: क्या बात,
0: तेरे ख्याल
1: बहुत
0: के
1: अच्छे,
0: आते
1: ही
0: ही आने
1: आने
0: लगते
1: लगते। हाय हाय
0: हैं,
1: हाय, हाँ क्या
0: क्या
1: तकलीद है,
0: कहने, ये मेरे अश्क तेरी याद के मुकल्लिद हैं।
1: क्या कहने।
0: पहन रखा है उन्होंने भी सब्ज पैराहन, पहन रखा है उन्होंने भी सब्ज पैराहन,
1: आहा
0: शजर भी एक परिजात
1: परिजात
0: के
1: के
0: मुकल्लिद
1: मुकल्लिद
0: हैं।
1: हैं,
0: क्या कहने
1: वाह
0: यार,
1: वाह, क्या
0: पहन
1: कहने, क्या
0: रखा है
1: कहने, क्या
0: उन्होंने
1: कहने।
0: भी सब्ज पैराहन, शजर भी एक परिजात के मुकल्लिद हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: हाँ, एक आखिरी गजल से चंद अशार। मुसाफिर तेरी किस्मत में तो घर रखा हुआ है,
1: हाँ
0: मुसाफिर तेरी किस्मत में तो घर
1: घर
0: रखा
1: रखा
0: हुआ
1: हुआ
0: है,
1: है,
0: तो फिर किस शय ने तुझको दर बदर रखा
1: रखा
0: हुआ
1: हुआ
0: है।
1: है,
0: वाह
1: बहुत
0: वाह,
1: अच्छे, बहुत अच्छे।
0: मुसाफिर तेरी किस्मत में तो घर रखा हुआ है, तो फिर किस शय ने तुझको दर बदर रखा
1: रखा
0: हुआ
1: हुआ है।
0: है, जला देती वगर ना रब्त को हसरत की गर्मी।
1: क्या कहने यार,
0: जला देती वगर ना रब्त को
1: हसरत
0: हसरत
1: की
0: की
1: गर्मी।
0: गर्मी,
1: वाह वाह वाह,
0: ये बर्तन हमने धीमी आंच पर रखा
1: रखा
0: हुआ
1: हुआ है,
0: है। क्या
1: बहुत अच्छे,
0: कहने, ये
1: ये
0: बर्तन
1: बर्तन, आहा
0: जला देती वगर ना रब्त को हसरत की
1: क्या
0: गर्मी,
1: कहने, बहुत अच्छे आसिफ
0: ये
1: भाई।
0: बर्तन हमने धीमी आंच पर रखा हुआ है, भला कैसे था मुमकिन वो मुझे रख लेता दिल में,
1: हाँ हाँ हाँ
0: भला कैसे था मुमकिन वो मुझे रख लेता दिल
1: दिल
0: में,
1: में
0: मेरे जैसों को उसने काम पर
1: काम पे
0: रखा
1: रखा
0: हुआ
1: हुआ है,
0: है।
1: क्या
0: क्या
1: बात,
0: कहने
1: बहुत
0: यार,
1: अच्छे, क्या
0: क्या कहने यार,
1: कहने
0: भला कैसे था मुमकिन वो
1: यार,
0: मुझे रख लेता दिल में, मेरे जैसों को उसने काम पर
1: काम पे
0: रखा
1: रखा
0: हुआ
1: हुआ है,
0: है, कहूँ तो सब ही सब जैसा रखा है रब ने मुझ में, कहूँ तो सब ही सब जैसा रखा है रब ने मुझ में,
1: आहा
0: मगर जो शेर गोई का हुनर रखा हुआ है।
1: बहुत
0: क्या
1: अच्छे,
0: कहने यार,
1: बहुत अच्छे,
0: कहूँ तो सब ही सब जैसा रखा है रब ने मुझ में,
1: क्या कहने, वाह,
0: मगर जो
1: तो
0: शेर
1: शेर
0: गोई
1: कोई
0: का
1: का,
0: हुनर रखा हुआ
1: वाह वाह
0: है,
1: वाह, बहुत अच्छा।
0: वगरना जिस्म की मिट्टी खिसक जाती किसी दिन,
1: आहा
0: वगरना
1: वगरना
0: जिस्म
1: जिस्म
0: की
1: की
0: मिट्टी
1: मिट्टी
0: खिसक
1: खिसक
0: जाती
1: जाती
0: किसी
1: किसी
0: दिन,
1: दिन,
0: मेरे अंदर कहीं पर एक शजर रखा
1: क्या
0: हुआ
1: कहने
0: है,
1: यार, वाह वाह वाह
0: वगरना
1: वाह वाह, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, वाह वाह वाह,
0: वगरना जिस्म की मिट्टी खिसक
1: खिसक
0: जाती
1: जाती
0: किसी
1: किसी
0: दिन,
1: दिन,
0: मेरे अंदर कहीं पर एक शजर रखा
1: रखा हुआ
0: हुआ
1: है, बहुत
0: है,
1: अच्छे यार,
0: मुसाफिर तेरी किस्मत में तो
1: किस्मत
0: घर
1: घर
0: रखा
1: रखा
0: हुआ
1: हुआ है,
0: है,
1: आहा
0: तो फिर किस शय ने तुझको दर बदर रखा हुआ है। एक गजल की और जहमत, एक गजल से चंद अशार।
1: पढ़िए।
0: जो मेरी उदासी को खड़ा देख रहा है,
1: आहा
0: जो मेरी
1: आहा
0: उदासी को खड़ा
1: खड़ा
0: देख
1: देख
0: रहा
1: रहा है,
0: है,

0: क्या उसको खबर है कि खुदा देख रहा है,
1: हाँ बहुत अच्छे।
0: जो
1: हाँ
0: मेरी उदासी को खड़ा देख रहा है, क्या उसको खबर है कि खुदा देख रहा है,
1: हाँ
0: खलवत ने यूं हवास को जिंदा किया कि दिल,
1: खलवत ने यूं हवास को जिंदा
0: जिंदा
1: किया
0: किया कि
1: कि दिल।
0: दिल, खलवत ने यूं हवास को जिंदा किया कि दिल, खामोशी सुन रहा है खला देख रहा है।
1: क्या बात है,
0: हाँ हाँ
1: बहुत
0: क्या कहने
1: अच्छे,
0: हैं
1: बहुत
0: यार, क्या बात,
1: अच्छे,
0: क्या
1: बहुत
0: कहने, खलवत
1: अच्छे।
0: ने यूं हवास
1: हवास
0: को
1: को जिंदा
0: जिंदा किया कि दिल, खामोशी सुन रहा है खला देख रहा है, अब मैं भी उसकी सम्त पलटने का नहीं हूँ, अब मैं भी उसकी सम्त पलटने
1: पलटने का
0: का
1: नहीं
0: नहीं
1: हूं,
0: हूँ, और वो भी मुझे जाता हुआ
1: देख
0: देख
1: रहा
0: रहा
1: हूं।
0: है।
1: बहुत
0: क्या क्या बात,
1: अच्छे,
0: क्या बात
1: बहुत
0: कहने हैं,
1: अच्छे,
0: अब मैं भी उसकी सम्त पलटने का नहीं हूँ, और वो भी
1: नहीं
0: मुझे
1: थे,
0: जाता हुआ देख
1: देख
0: रहा
1: रहा।
0: है,
1: आहा
0: जो
1: आहा
0: मेरी उदासी को खड़ा
1: खड़ा
0: देख रहा है, क्या उसको खबर है कि खुदा देख रहा है। बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया,
1: अच्छे,
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छे, क्या
0: बहुत
1: कहने।
0: अच्छे।
2: अब जिस हसीं या नाजुक ख्याल शायर को दावती सुखन देना चाहूँगा, आपके कलाम में मस्त हवाओं का रक्स भी है और ज़ाफ़रानी खुशबू भी। किश्तवाड़ से ज़ाफ़रानी खुशबू लिए नई कदरों से पूरी तरह वाकिफ, मेरी मुराद है जाफिर ताबिश, उनसे मौदबाना गुजारिश है कि अपने कलाम से सामईन को नवाजें। मोहतरम जनाब जाफर ताबिश।
3: बहुत शुक्रिया साहिब सदर की इजाज़त से। गज़ल के इसलिए भी सरे बाजार नहीं बैठेंगे,
2: अच्छा,
1: इसलिए भी सरे बाजार नहीं बैठेंगे।
3: इसलिए भी सरे बाजार नहीं बैठेंगे, हम मुहाफिज हैं सो बेकार नहीं बैठेंगे।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: मैंने उन सबको कहानी से अलग करना है,
1: आहा
3: मैंने
2: अच्छा,
3: उन सबको
1: कहानी
3: कहानी से
1: से अलग
3: अलग
1: करना
3: करना
1: है।
3: है, तेरे कदमों में जो किरदार नहीं
1: नहीं बैठ।
3: बैठेंगे।
1: वाह वाह वाह
3: हाँ,
1: वाह,
3: मैंने उन
1: बहुत
3: सबको
1: अच्छे,
3: कहानी से अलग
1: अलग
3: करना
1: करना
3: है, तेरे
1: तेरे
3: कदमों में जो किरदार
1: नहीं
3: नहीं
1: बैठेंगे।
3: बैठेंगे।
1: ठीक, बहुत
3: और शेर है
1: अच्छे।
3: कि इश्क में मात हुई है तो कोई बात नहीं,
1: आहा
3: इश्क में मात
0: मात
3: हुई
0: हुई
3: है
0: है
3: तो
0: तो
3: कोई
0: कोई
3: बात
0: बात
3: नहीं,
0: नहीं,
3: हम भले शख्स हैं बेकार नहीं
1: नहीं बैठेंगे।
3: बैठेंगे।
1: बहुत अच्छे,
3: इश्क
1: वाह
3: में
1: वाह
3: मात
1: वाह,
3: हुई है तो कोई बात
1: वाह
3: नहीं,
1: वाह वाह,
3: हम भले शख्स हैं बेकार नहीं बैठेंगे, और किसकी ख्वाहिश है कि इस दर पे न बैठे, लेकिन
1: आहा,
3: अच्छा
1: किसकी
3: किसकी ख्वाहिश
1: ख्वाहिश है
3: है
1: कि
3: कि
1: इस
3: इस
1: दर
3: दर
1: पे
3: पे
1: न
3: न
1: बैठे,
3: बैठे, लेकिन
1: लेकिन हाँ
3: आप कहते हैं तो सरकार
1: नहीं
3: नहीं बैठेंगे।
1: बैठेंगे।
3: इसके अलावा
1: वाह वाह
3: एक
1: वाह,
3: और गजल से चंद अशआर के,
1: इरशाद।
3: वफा की सख्त राहों से गुजर जाने की जल्दी है,
2: अच्छा,
3: वफा की सख्त राहों से गुजर
1: गुजर
3: जाने
1: जाने
3: की
1: की जल्दी
3: जल्दी
1: है,
3: है, सो अब गम को रगे
1: रगे
3: जां
1: जामे
3: में उतर
1: उतर
3: जाने की
1: जाने की
3: जल्दी
1: जल्दी है।
3: है।
1: बहुत अच्छे
3: बहुत
1: यार,
3: अच्छे। वफा की सख्त राहों से गुजर जाने की
1: जल्दी
3: जल्दी है, सो अब गम को रगे जां में उतर जाने की जल्दी
1: है। हाय
3: है,
1: हाय,
3: और मेरा भी इस मोहब्बत से भरोसा उठने वाला है।
1: ठीक,
3: मेरा भी इस मोहब्बत से भरोसा
1: भरोसा
3: उठने
1: उठने
3: वाला
1: वाला
3: है,
1: है,
3: उसे भी अपने वादे से मुकर
1: मुकर
3: जाने की
1: जाने की
3: जल्दी
1: जल्दी।
3: है।
1: बहुत अच्छे यार,
3: वाह
1: बहुत
3: वाह,
1: अच्छे, क्या
3: मेरा भी
1: बात,
3: इस मोहब्बत से भरोसा
1: भरोसा
3: उठने
1: उठने
3: वाला
1: वाला
3: है,
1: है,
3: उसे भी अपने वादे से मुकर जाने की जल्दी है। और ये देखिए कि
1: अच्छा,
3: जरा ठहरो दमे आखिर,
1: तो
3: हमारी बात तो सुन लो।
1: आहा,
3: जरा
1: जरा
3: ठहरो
1: ठहरो
3: दमे
1: दमे
3: आखिर,
1: आखिर,
3: हमारी
1: हमारी
3: बात
1: बात
3: तो
1: तो
3: सुन
1: सुन
3: लो।
1: लो,
3: करारे जां तुम्हें आखिर किधर जाने
1: अरे
3: की
1: की जल्दी
3: जल्दी
1: है।
3: है।
1: बहुत अच्छे, बहुत
3: करारे
1: अच्छा,
3: जां, क्या
1: बहुत
3: बात
1: अच्छा
2: मोहम्मद,
1: है, वाह वाह,
3: जरा
1: बढ़िया।
3: ठहरो, जरा
1: करारे
3: ठहरो,
1: जहाँ आए,
3: जरा ठहरो दमे आखिर, हमारी
1: हमारी
3: बात
1: बात
3: तो
1: तो
3: सुन
1: सुन,
3: लो।
1: क्या अंदाज
3: करारे
1: से शेर का
3: जां,
1: है जाफर, बहुत
3: बहुत
1: अच्छा है, फिर
3: मोहब्बत,
1: पढ़ो
3: हाँ
1: यार।
3: बहुत मोहब्बत, जरा ठहरो दमे आखिर, हमारी बात तो सुन
1: बात तो
3: लो।
1: सुन,
3: करारे जां तुम्हें आखिर किधर
1: किधर
3: जाने
1: जाने
3: की
1: की,
3: जल्दी
1: बहुत अच्छे
3: है।
1: यार,
3: बहुत मोहब्बत, यहां दामन बचाता फिर रहा है गुल हवाओं से,
1: आहा,
3: यहां दामन बचाता फिर रहा है गुल
1: गुल
3: हवाओं
1: हवाओं
3: से,
1: से,
3: वहां नाजुक से गुंचे को निखर जाने की जल्दी
1: क्या
3: है।
1: कहने
3: वाह
1: हैं,
3: वाह
1: वाह
3: वाह,
1: वाह वाह वाह,
3: यहां
1: बहुत
3: दामन,
1: अच्छे,
3: यहां
1: क्या
3: दामन
1: बारीक शेर, वाह
3: बचाता
1: वाह
3: फिर
1: वाह,
3: रहा है गुल
1: गुल
3: हवाओं
1: हवाओं से,
3: से,
1: आहा,
3: वहां नाजुक से गुंचे को
1: हाय हाय,
3: निखर
1: निखर
3: जाने की
1: जाने की
3: जल्दी
1: जल्दी,
3: है।
1: बहुत अच्छे,
3: और भला आखिर मैं अपने गांव कब लौटूंगा फिर ताबिश, अच्छा
1: आहा,
3: भला आखिर
1: मैं
3: मैं
1: अपने
3: अपने
1: गांव,
3: गांव कब लौटूंगा फिर ताबिश,
1: मेरे
3: मेरे
1: गांव
3: गांव के लोगों को शहर जाने की
1: जाने,
3: जल्दी
1: बहुत
3: है।
1: अच्छे, बहुत
3: वाह
1: अच्छे,
3: क्या
1: अच्छी
3: बात,

0: गजल है
1: बहुत
0: यार,
1: जबरदस्त,
0: बहुत
1: फिर
0: अच्छी
1: बढ़िया।
0: गजल।
1: भला आखिर, बहुत मोहब्बत, भला आखिर मैं अपने गांव कब लौटूंगा फिर ताबिश,
0: बहुत अच्छी
1: मेरे
0: यार,
1: गांव के लोगों को शहर
0: शहर
1: जाने की
0: जाने की
1: जल्दी
0: जल्दी
1: है।
0: है।
1: एक गजल से चंद
0: आहा
1: अशआर फिज़ अहमद तमाम के, बेचैन हो रहे थे नज़ारे
0: नज़ारे
1: ज़मीन
0: जमीन पर।
1: पर,
0: अच्छा
1: बेचैन हो रहे थे नज़ारे ज़मीन पर,
0: मैं गिर
1: मैं गिर पड़ा था दर्द के मारे
0: मारे
1: ज़मीन
0: जमीन पर।
1: पर।
0: आहा आहा
1: बेचैन हो रहे थे नज़ारे
0: नज़ारे
1: ज़मीन
0: जमीन
1: पर, मैं गिर पड़ा था दर्द के मारे
0: मारे जमीन
1: ज़मीन
0: पर।
1: पर। हिजरत का कर्ब,
0: आ
1: वस्ल की लज़्ज़त, तुम्हारा गम।
0: क्या मिसरा
1: हाँ,
0: यार,
1: हिजरत का कर्ब, वस्ल
0: वस्ल
1: की
0: की
1: लज़्ज़त, तुम्हारा
0: तुम्हारा
1: गम।
0: गम
1: मौजूद एक साथ हैं सारे
0: सारे
1: ज़मीन
0: जमीन पर।
1: पर।
0: बहुत
1: हिजरत
0: अच्छे
1: का कर्ब,
0: क्या
1: वस्ल की लज़्ज़त, तुम्हारा गम। मौजूद एक
0: एक
1: साथ
0: साथ
1: हैं
0: हैं।
1: सारे ज़मीन पर। बहुत शुक्रिया,
0: बहुत अच्छे
1: बहुत
0: जवाब,
1: बहुत
0: बहुत
1: शुक्रिया,
0: अच्छे,
1: बहुत खूब। तो ये थे मोहतरम जनाब जाफर ताबिश, इससे कबल कि मैं मीरे मजलिस को दावत सुखन दूँ, चंद अशार गज़ल के चंद अशार पेश करने की जसारत करता हूँ।
0: इशाद
1: जी
0: इशाद।
1: बिस्मिल्लाह। अंधेरी एक डगर है और मैं हूँ,
0: आहा
1: अंधेरी एक डगर है और
0: और
1: मैं
0: मैं
1: हूँ,
0: हूँ,
1: बहुत मुश्किल सफ़र है
0: और
1: और
0: मैं हूँ,
1: मैं
0: क्या
1: क्या
0: कहने,
1: कहने सर,
0: वाह,
1: बहुत मुश्किल सफ़र है और
0: और
1: मैं
0: मैं हूँ।
1: हूँ। उधर उनकी जफाएं तौबा तौबा,
0: आहा
1: आहा,
0: उधर उनकी
1: उधर
0: जफाएं
1: उनकी जफाएं तौबा
0: तौबा
1: तौबा,
0: तौबा,
1: इधर मेरा जिगर
0: जिगर है
1: है
0: और मैं हूँ,
1: और
0: क्या
1: मैं
0: कहने,
1: हूँ। क्या
0: बहुत
1: कहने
0: अच्छे,
1: सर, इधर मेरा जिगर
0: बहुत
1: है
0: अच्छे,
1: और मैं हूँ।
0: आहा
1: नाने के बहाने खूब तेरे,
0: आहा नाने
1: नाने
0: के
1: के
0: बहाने
1: बहाने खूब
0: खूब,
1: तेरे, मगर लेकिन अगर है
0: और
1: और
0: मैं
1: मैं
0: हूँ, मैं
1: हूँ।
0: क्या कहने
1: क्या
0: सजाद
1: कहने
0: साहब, वाह
1: मगर
0: वाह वाह,
1: लेकिन अगर है
0: और
1: और
0: मैं
1: मैं हूँ।
0: हूँ।
1: और ये बसता है उजड़ता और बसता,
0: हाय हाय
1: ये
0: क्या कहने,
1: बसता है
0: उजड़ता
1: उजड़ता
0: और
1: और
0: बसता,
1: बसता, ये दिल दिल्ली नगर है
0: और मैं
1: और
0: हूँ,
1: मैं
0: क्या
1: हूँ।
0: कहने, क्या
1: ये
0: कहने,
1: दिल दिल्ली
0: दिल्ली
1: नगर
0: नगर
1: है और मैं हूँ। और ये शेर के अंधेरे को डराता जा रहा है,
0: वाह, अंधेरे
1: अंधेरे
0: को
1: को
0: डराता जा रहा
1: डराता जा रहा है, दिया एक बाम
0: बाम
1: पर
0: पर है
1: है
0: और मैं
1: और
0: हूँ।
1: मैं हूँ।
0: बहुत
1: बहुत
0: अच्छे,
1: जी है सर, क्या कहने,
0: बहुत अच्छे,
1: दिया एक बाम
0: बाम
1: पर
0: पर
1: है
0: है और
1: और
0: मैं
1: मैं
0: हूँ।
1: हूँ। और रुबाई चंद गज़लें और नज़में,
0: आहा
1: रुबाई
0: रुबाई चंद
1: चंद
0: गजलें
1: गज़लें और
0: और
1: नज़में,
0: नज़में,
1: यही रखते सफ़र है
0: और मैं हूँ,
1: और
0: क्या
1: मैं
0: कहने,
1: हूँ।
0: क्या कहने,
1: यही
0: वाजीवा
1: रखते
0: वाजीवा,
1: सफ़र है और
0: और
1: मैं
0: मैं हूँ।
1: हूँ।
0: आहा
1: और मैं बाजी इश्क की जीता नहारा, मैं
0: आहा
1: बाजी इश्क की जीता नहारा, वो अपनी बात पर है
0: और मैं
1: और मैं
0: हूँ, क्या
1: हूँ।
0: बात, क्या कहने,
1: और चले आओ नहीं है ताब दिल में,
0: आहा
1: चले आओ नहीं
0: नहीं
1: है
0: है
1: ताब
0: ताब
1: दिल
0: दिल
1: में,
0: में,
1: ये दुनिया मुख्तसर है
0: और मैं हूँ,
1: और मैं
0: बहुत
1: हूँ।
0: अच्छे,
1: ये
0: बहुत
1: दुनिया
0: अच्छे, मुख्तस,
1: मुख्तसर
0: दुनिया
1: है
0: मुख्तसर है, और मैं हूँ,
1: और
0: आहा
1: मैं हूँ। और ये मतला कि है बारिश पत्थरों की फिर भी साजिद,
0: आहा
1: है बारिश पत्थरों
0: पत्थरों
1: की
0: की फिर भी
1: फिर भी साजिद,
0: साजिद
1: मेरे कांधे पे सर
0: सर
1: है
0: है और मैं
1: और
0: हूँ,
1: मैं
0: मैं हूँ,
1: हूँ।
0: क्या
1: क्या
0: बात,
1: कहने,
0: क्या
1: मेरे
0: बात,
1: कांधे पे सर
0: बहुत
1: है
0: बहुत अच्छे,
1: और मैं
0: बहुत
1: हूँ।
0: बहुत अच्छे, बहुत अंदर से
1: एक गजल के
0: जी
1: चंद अशार
0: इशाद
1: के साथ
0: इशाद
1: ही
0: जी
1: अपनी जगह लेता
0: इशाद।
1: हूं। अपने ही वास्ते जो जिया कुछ नहीं किया,
0: क्या बात है,
1: आहा,
0: क्या बात
1: अपने
0: है,
1: ही वास्ते जो जिया
0: कुछ नहीं
1: कुछ
0: किया,
1: नहीं
0: कुछ नहीं
1: किया,
0: किया,
1: तू किसी का हो न सका,
0: कुछ नहीं
1: कुछ
0: किया,
1: नहीं
0: कुछ,
1: किया।
0: आहा
1: और मारा धर्म के नाम पर वो कहता रहा था, मारा
0: मारा
1: धर्म के नाम
0: नाम पर
1: पर
0: वो कहता रहा
1: वो
0: था,
1: कहता रहा था, मैंने कभी भी कुछ ना कहा कुछ
0: कुछ
1: नहीं
0: नहीं किया,
1: किया,
0: बहुत
1: आहा,
0: अच्छे,
1: मैंने
0: बहुत अच्छे,
1: कभी भी
0: कुछ
1: कुछ ना
0: नहीं कहा,
1: कहा
0: कुछ
1: कुछ
0: नहीं
1: नहीं
0: किया।
1: किया, और किला फतह किया या हिमालय को सर किया,
0: आहा किला
1: किला फतह
0: फतह
1: किया
0: किया
1: या हिमालय को सर
0: सर
1: किया,
0: किया, आहा
1: तूने अगर ना इश्क किया
0: कुछ
1: कुछ
0: नहीं
1: नहीं
0: किया,
1: किया।
0: बहुत
1: बहुत क्या
0: अच्छे,
1: बात है,
0: बहुत
1: बहुत
0: अच्छे,
1: अच्छा,
0: फिर
1: बहुत
0: पढ़ो,
1: अच्छे। कला
0: वाह
1: फतह किया या
0: वाह,
1: हिमालय को सर
0: सर किया,
1: किया,
0: आहा
1: तूने अगर ना इश्क
0: किया
1: किया
0: कुछ
1: कुछ
0: नहीं
1: कुछ
0: किया,
1: नहीं
0: अच्छा
1: किया,
0: अच्छे, आहा
1: और
0: बहुत
1: छोटी सी
0: अच्छे,
1: जिंदगी में किसी का न हो सका,
0: हाय हाय, छोटी
1: छोटी
0: सी
1: सी
0: जिंदगी
1: जिंदगी
0: में
1: में किसी
0: किसी
1: का न
0: का
1: हो
0: ना हो सका,
1: सका, ले दे के सिर्फ काम चला कुछ
0: कुछ
1: नहीं
0: नहीं
1: किया,
0: किया,
1: ले
0: आहा
1: दे के सिर्फ काम
0: काम
1: चला
0: चला कुछ,
1: कुछ
0: बहुत
1: नहीं
0: अच्छे,
1: किया। और बरसों से धर्म वालों ने बोई हैं नफरतें,
0: आहा
1: बरसों से धर्म वालों ने बोई है नफरतें, इमसाल भी तो इसके सिवा कुछ नहीं किया। इमसाल भी तो इसके सिवा कुछ नहीं किया, और बदगुमानियां ही तूने पाली उम्र भर। बदगुमानियां ही तूने पाली उम्र भर, मैंने तो कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं किया।
2: क्या बात है।
1: और साजिद ने ये किया वो किया क्या नहीं किया, साजिद ने ये किया वो किया क्या नहीं किया, मुफलिस का घर भला न किया
2: कुछ
1: नहीं किया।
2: बहुत बहुत।
1: तो अब मैं मेरे मजलिस को दावत सुखन देना चाहूँगा। और जो अब जिस नौजवान शायर जो आज की सदारत फरमा रहे हैं, वो मुल्क और गैर मुल्की मुशायरों में शिरकत कर चुके हैं, कलाम में गहराई, ज़माने की बदलती कदरों का इदराक रखते हैं। आपका लहजा वजदान के महीन तारों को छू लेता है। मेरी मुराद है ताबिश बद्र भाई से कि वो अपने हसी कलाम से नवाजें। मोहतरम जनाब तौसीफ ताबिश।
3: बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतलब देखिए कि जब सुना उसने कि प्यासा मर गया, जब सुना उसने कि प्यासा मर गया, शर्म से बस्ती का चश्मा मर गया। जब सुना उसने कि प्यासा मर गया,
1: अच्छा,
3: शर्म से बस्ती का चश्मा मर गया, तेरे आते जी उठा था एक शख्स,
1: अच्छा,
3: तेरे आते
1: जी
3: उठा था एक शख्स, तेरे जाते ही दोबारा मर गया।
2: क्या बात।
3: बहुत शुक्रिया। तेरे आते जी उठा था एक शख्स, तेरे जाते ही दोबारा मर गया, इस तरह रोके हुए था सांस मैं,
1: इस तरह
3: रोके हुए था सांस मैं, देखने वालों ने समझा मर गया। इस तरह रोके हुए था सांस मैं, देखने वालों ने समझा
2: मर गया।
3: इसलिए पहचानता कोई नहीं,
1: इसलिए
3: पहचानता कोई नहीं, कम जिया हूं और ज्यादा मर गया। इसलिए पहचानता कोई नहीं, कम जिया हूं और ज्यादा मर गया, जिसकी खुशबू थी हमारे शहर में, जिसकी खुशबू थी हमारे शहर में, गांव का वो फूल वाला मर गया। जिसकी खुशबू थी हमारे शहर में, गांव का वो फूल वाला मर गया।
2: क्या कहने।
3: तेरे हिस्से का अभी जिंदा हूं मैं, तेरे हिस्से का अभी जिंदा हूं मैं, अपने हिस्से का तो पूरा मर गया।
2: क्या कहने।
3: तेरे हिस्से का अभी जिंदा हूं मैं, अपने हिस्से का तो पूरा मर गया, अब मुझे पिंजरे में रखा जाएगा।
1: अच्छा।
3: अब मुझे पिंजरे में रखा जाएगा, मेरे हाथों एक परिंदा मर गया।
2: क्या कहने।
3: अब मुझे पिंजरे में रखा जाएगा,
2: मेरे हाथों
3: एक परिंदा मर गया। एक और गजल का मतला देखिए कि मैं तेरी आंख में ये क्या तलाश करता हूँ, मैं तेरी आंख में ये क्या तलाश करता हूँ, भंवर के बीच किनारा तलाश करता हूँ, मैं तेरी आंख में ये क्या तलाश करता हूँ, भंवर के बीच किनारा तलाश करता हूँ, इसीलिए तो कभी ढूंढ ही नहीं पाया।
1: अच्छा।
3: इसीलिए तो कभी ढूंढ ही नहीं पाया, हर एक शख्स में खुद सा तलाश करता हूँ, इसीलिए तो कभी ढूंढ ही नहीं पाया, हर एक शख्स में खुद सा तलाश करता हूँ, जो मेरी आंख से ओझल कभी नहीं होता, जो मेरी आंख से ओझल कभी नहीं होता, उसे मैं सबसे ज्यादा तलाश करता हूँ।
1: क्या बात है। फिर बड़े से
3: जो मेरी आंख से ओझल कभी नहीं होता, उसे मैं सबसे ज्यादा तलाश करता हूँ।
2: क्या कहने,
3: बिछड़ने लगता है कोई जरा जरा करके, बिछड़ने लगता है कोई जरा जरा करके, फिर उसको सारे का सारा तलाश करता हूँ।
2: क्या बात, क्या बात।
3: तलाश करते हुए भूल जाता हूँ खुद को।
1: अच्छा,
3: तलाश करते हुए भूल जाता हूँ खुद को, कभी कभी तुझे इतना तलाश करता हूँ, कभी कभी तुझे इतना तलाश करता हूँ, और यहीं कहीं कभी बैठा हुआ था मैं ताबिश, यहीं कहीं कभी बैठा हुआ था मैं ताबिश, सो तय किया कि दोबारा तलाश करता हूँ, यहीं कहीं कभी बैठा हुआ था मैं ताबिश, सो तय किया कि दोबारा तलाश करता हूँ। बहुत शुक्रिया।
2: क्या कहने,
1: तो ये थे मोहतरम जनाब तौसीफ ताबिश। इसी के साथ आज की ये शेरी नशिस्त इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहती है। मैं एक बार फिर गोश गुजार कराना चाहूँगा कि आज की इस शेरी नशिस्त में जो शुरा शामिल महफिल थे उनके इसमें ग्रामी हैं मोहतरम जनाब तौसीफ ताबिश, मोहतरम जनाब आसिफ अतौला, मोहतरम जनाब जाफ़िर ताबिश, मोहतरम जनाब हसीब रज़ा और खाकसार साजिद सरमदी। शुक्रिया।

सामीन, अभी आप समाप्त कर रहे थे उर्दू मुशायरा। हम आकाशवाणी भद्रा से आपसे मुखातिब हैं FM 101 MHz पर। सामी, रात के 10 बजने वाले हैं। अब हमारी मजलिस यहीं पर इख्ताम पजीर होती है। कल सुबह ठीक 7:55 पर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। शब्बा खैर, जय हिंद।